नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की पांचवी तिथि, तदनुसार दिनांक 27 सितंबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: इस समय सुबह 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 138वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति जारी रखने पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में डॉ. जयशंकर ने कहा कि युद्ध का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा और विकास प्रभावित होती है। रूस यूक्रेन संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। डॉ. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संघर्ष समाप्त करने का आह्वान दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों के हमलों को भी अस्वीकार बताया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया। उन्होंने कांग्रेस पर झूठे दावों के आधार पर देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। श्री नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाने के लिए गलत प्रचार का सहारा लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, उड़ीसा और तेलंगाना में भी आज बारिश की आशंका है। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा रुक दी गई है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम ठीक होने के बाद ही यात्रा फिर शुरू होगी। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर आज भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मैच 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीम के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला भी खेली जाएगी। एशियाई खेलों में स्क्वाश में अनाहत सिंह और अभय सिंह का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से होगा। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, NC सोजन, पारुल चौधरी और शैली सिंह मुकाबला करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम सिंगापुर से खेलेगी। बैडमिंटन में PV सिंधु और भारतीय मिक्स जोड़ी पदक से 1 जीत दूर है। तीरंदाजी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन और तलवारबाजी में भी आज भारत को पदक की उम्मीद है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने जियो, यही सफलता का मार्ग है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

की जानकारी। इस झरोका के तुरंत बाद आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड का भाग 24। संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 12। कलाकार गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली। 7:00 भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और दिन में 2:00 आप सुनेगा त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 पर चित्रलोक। सुबह 9:30 पर आज के फनकार जो केंद्रित है पार्श्व गायक महेंद्र कपूर पर और आलेख और स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। और रात 9:30 पर सुनिए आज के फनकार जो केंद्रित है कार्यक्रम यश चोपड़ा पर, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10:00 पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज में आप सुनेंगे गायिका पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग 2। संपादन सहयोग अम्बालिका सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। दस बजकर 45 पर आरंभिक उद्घोषणा मन की बात। 11:00 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 होगा सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे सुनवाए जाएंगे। 3:00 मनचाहे गीत। 3:30 पर कार्यक्रम नाट्य तरंग में सुनिए मुक्ति एक चिड़िया की, लेखक अजीत पुष्कर, निर्देशक मधु श्रीवास्तव। 4:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2। संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 5:00 छाया गीत का पुनः प्रसारण। 5:30 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7:00 जयमाला के अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा महावीर चक्र, हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा, आलेख और स्वर संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति तेजश्री कामले। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज में आप सुनेंगे बांसुरी श्रीधर केंकर से। और रात 8:00 हवा महल में सुनिएगा नाटिका तुम बड़े वो हो जी, लेखन निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। 10:00 छाया गीत में आप सुनिएगा आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात, 11:00 कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत देवानंद हेमंत कुमार और महेंद्र कपूर पर आधारित आप सुनेंगे ये कार्यक्रम। 10:00 प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस के लंका कांड का भाग 324।

उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर बिना फल वाला बाण मारा। बाण लगते ही राम राम हे रघुनाथ कहते हुए हनुमान पृथ्वी पर आ गिरे। हे राम हे रघुनाथ की ध्वनि सुनकर भरत दौड़कर उनके पास आ पहुंचे। हतप्रभ होकर वो हनुमान से सब कुछ जान लेना चाहते हैं, किंतु उनकी मूर्छा न टूटते देख उदास हो उन्हें छाती से लगा लेते हैं। वो श्री राम के प्रति अपने प्रेम और समर्पण की दुहाई देते हुए कहते हैं, यदि श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो और श्री रघुनाथ मुझ पर प्रसन्न हो तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। कोसलपति श्री रामचंद्र की जय कहते हुए हनुमान उठ बैठते हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण की कुशल की भरत की जिज्ञासा के उत्तर में हनुमान उन्हें सारी कथा संक्षेप में सुना देते हैं।

सुमेरु पर्वत को हाथों में लिए अयोध्या नगरी के ऊपर से जाते हुए हनुमान का विशाल रूप देखकर भरत ने अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है।

0: संगीत सरिता में प्रस्तुत इस श्रृंखला की आज आप सुनेंगे अंतिम कड़ी। इसके अंतर्गत आज सुनिए उपशास्त्रीय संगीत की कुछ रचनाएं। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। वैसे मैं ठुमरी गाता नहीं हूं, मगर लोग बेहद फरमाइश करने लगे तो ये ख्याल नुमा ठुमरी बनाई है। लीजिए राग मिश्र बरवा पीलू में पहले झूला सुनिए,

क्षुधित पाषाण फिल्म में उस्ताद आमिर खान साहब ने खमाज में ठुमरी गाई है, वह बंदिश मैं आपको गाकर सुना रहा हूं और इस बंदिश के साथ श्रोताओं से इजाजत ले रहा हूं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपने उपशास्त्रीय संगीत की रचनाएं सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर इनकी संगति की पुरुषोत्तम वालावलकर ने, तबले पर साथ दिया ओमकार गुलवाड़ी ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

आइए सुनिए भूले बिसरे गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज सबसे पहले नमन कर रहे हैं हम अभिनेत्री संध्या को। संध्या यानी वो अभिनेत्री जो नजर आई थी दो आंखें बारह हाथ फिल्म के इस गाने में। इसके अलावा झनक झनक पायल बाजे, नवरंग और अमर भूपाली जैसी फिल्मों में

भरत व्यास के बोल थे वसंत देसाई की तर्ज थी फिल्म का नाम, दो आंखें बारह हाथ, लता मंगेशकर की आवाज थी। संध्या की याद का दिन आज है और आज का दिन तो भाई कई कलाकारों को याद करने का दिन है और उनमें से एक हैं महेंद्र कपूर।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: बुल मिश्र गीत कार्यक्रम का अगला गीत ये रहा। फिल्म का नाम है तराना।
1: बहुत दिन हुए
0: अनुराधा फिल्म का ये गीत है। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, संगीत पंडित रविशंकर का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: विविध भारती से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में अब आंचल फिल्म का गीत आ रहा है। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें हैं, कवि प्रदीप के बोल, संगीत सी रामचंद्र का है।

0: आप सुन रहे थे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

अभी आपने सुना फिल्म वक्त का गाना, युगल स्वर थे आशा भोसले महेंद्र कपूर के, गीतकार थे साहिर लुधियानवी, धुन बनाई रवि ने। आइए हम है राही प्यार के कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं।

अभी आपने सुना फिल्म मोहब्बत जिंदगी है का गाना, जिसे युगल स्वरों में गाया महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने। गीत के बोल SH बिहारी के, धुन OP नैयर की। श्रोताओं, आज हम महान पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को याद कर रहे हैं। महेंद्र कपूर सिर्फ एक आवाज नहीं, हिंदी फिल्म संगीत के उस स्वर्णिम दौर की पहचान थे जिसमें सुर में मिठास भी थी, जिनके सुर में मिठास भी थी और आवाज में बुलंदी भी थी। आइए सुनते हैं ये अगला गाना।

अभी आपने सुना घूंघट फिल्म का गाना सुरों से सजाया आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने, बोल शकील बदायूनी के और संगीत रवि का। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

0: अभी आपने सुना फिल्म गुमराह का गीत, युगल स्वर थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर के, शब्दकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत में पिरोया रवि ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। आइए सुनते हैं अगला गाना।
2: कली कब तक छुपेगी एक भंवरे की निगाहों से, चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से, बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी।

क्षमा झिलमिलाती है नशीली शाम के पर्दे में, सुबह मुस्कुराती है वो शोला हो के चिंगारी मच

जीतते किसी से, जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लेकिन ताड़ने वाले जा, अरे जा जा जा रे जा।

अभी आपने सुना सेहरा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रामलाल का। इसी के साथ ही हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी को मेरा नमस्कार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मौजूदा संघर्षों के बीच सभी पक्ष संयम बरतें, तनाव कम करें और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने इस दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध अब भी अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान को दोहराया। उन्होंने वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर हमलों को अस्वीकार्य बताया। आतंकवाद

0: पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत को आतंकवाद से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बताया और आतंकवाद के वित्त पोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
1: आतंकवाद शांति के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। अगर इसे किसी देश का समर्थन हासिल हो और इसका मकसद सीमा पार हमले करना हो तो ये वैश्विक व्यवस्था के लिए सीधी चुनौती बन जाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। आतंकवाद के प्रति कड़ी नीति में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। खासकर इसके वित्तीय पहलुओं का पर्दाफाश किया जाना चाहिए और उन्हें रोका जाना चाहिए।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के सामने खाद्य, ईंधन, उर्वरक और वित्त से संबंधित बड़ी चुनौतियां हैं। उन्होंने बताया कि भारत 78 देशों में करीब 600 विकास परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हर देश को अपनी जरूरतों के अनुसार AI विकसित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
2: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रूस सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पक्ष में है। रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और NewsOn AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में भी इसे प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: तमिलनाडु देश के प्रमुख सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME राज्यों में से एक है। राज्यों में कारोबारी एक ही पोर्टल से अलग अलग विभागों से जरूरी मंजूरियां ले सकते हैं। MSME के विकास के लिए राज्य में अलग मंत्रालय भी है। MSME क्षेत्र देश की GDP में करीब 31% का योगदान देता है और कृषि के बाद रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। कोयम्बटूर में विनिर्माण, कपड़ा और इंजीनियरिंग से जुड़े 80,000 से अधिक पंजीकृत MSME है। कोयम्बटूर के लीड बैंक के जिला प्रबंधक कार्तिकेन ने आकाशवाणी को बताया कि मुद्रा योजना शुरू होने के बाद जिले के उद्यमियों ने कारोबार और उत्पादन बढ़ाने में काफी रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना की 4 श्रेणियों में मिलने वाले ऋण से उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने और वित्तीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिली है। तमिलनाडु में कुल 7,59,847 सूक्ष्म, 1,01,861 लघु और 2,818 मध्यम उद्योग पंजीकृत हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
2: ये समाचार हमारे NewsOn AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है? हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए आज सभी सार्वजनिक

0: क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रविवार को सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम लिंक शाखाओं और बैंकों तथा एटीएम के लिए नकदी हेतु करेंसी चेष्टों की पूरी तरह से चालू रखने की स्वीकृति दी है। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज केरलम जाएंगे। इस दौरान वे कोल्लम में अमृतानंदमयी मठ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का दोपहर में बालारामपुरम में श्री उत्तराडोम थिरुनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर का निर्णय आयोग ने सर्वसम्मति से लिया है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस वर्ष विश्व पर्यटन दिवस का विषय है पर्यटन को नए रूप में विकसित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में तकनीक की भूमिका पर जोर देती है। एक रिपोर्ट।
2: भारत का पर्यटन क्षेत्र देश की आर्थिक तरक्की, रोजगार और लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। देश की GDP में पर्यटन का 5% से अधिक योगदान है। साल 2025 में भारत में घरेलू पर्यटकों की संख्या 428 करोड़ से अधिक हो गई है, जबकि विदेशी पर्यटकों की संख्या 2 करोड़ 50 लाख से अधिक हो गई है। भारत ने डिजिटल पर्यटन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ई वीजा और इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। भारत ने 2014 में ई वीजा की शुरुआत की थी, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए भारत आना आसान हो गया है। इस समय 172 देशों के नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध है। नई दिल्ली में आज होने वाले मुख्य कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन पहलों का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण आज चार धाम यात्रा स्थगित रहेगी। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के सभी जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। पिछले 24 घंटों में उधम सिंह नगर और नैनीताल में सबसे अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के बीच प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी भी हुई है। इस बीच मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य में आपदा प्रबंधन तंत्र सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों, नदी नालों तथा जल भराव वाले इलाकों पर निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा से कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 15 लोगों की मौत की खबर है।
4: गुरुवार से शुरू हुई मूसलाधार बारिश राजधानी लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, श्रावस्ती और इटावा समेत राज्य के कई हिस्सों में जारी है। 63 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, जिससे जगह जगह जलभराव हो गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में राज्य में सामान्य से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। भारी बारिश के कारण तापमान में भी भारी गिरावट आई है और फसलों, विशेष तौर पर गन्ना, धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उड़ीसा के कई हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनती जा रही है। नदियां उफान पर हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी धन्यवाद जागृति। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दोपहर 2 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी और तीसरा मुकाबला 3 अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इसके बाद दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला भी खेली जाएगी। और जागृति, अगर बात करें जापान में जारी एशियाई खेलों में, तो भारतीय

0: पुरुष और महिला तीरंदाजी टीमों ने इस प्रतियोगिता में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों की तिकड़ी साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम और कुशल दलाल ने भूटान को करीबी अंतर से हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिलाओं की टीम चिकिता तनिपार्थी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रतिका प्रदीप ने कजाकिस्तान को हराकर दक्षिण कोरिया के खिलाफ सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिलाओं के शॉर्ट बोर्ड स्पर्धा में भी शुगर शांति गायन और कमाली प्रकाश दोनों तीसरे दौर में पहुंच गई हैं। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 30 पदक जीते हैं।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले में कल एक विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और 35 घायल हो गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने हमले की जिम्मेदारी ली है। और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने निर्वाचन आयोग की बैठक को प्रमुखता दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। दैनिक भास्कर ने डिफेंस रिफॉर्म शीर्षक से लिखा है, रक्षा सौदों की मंजूरी में लगने वाले समय को घटाने की तैयारी में सरकार, छोटे रक्षा सौदों को कैबिनेट से छूट पर विचार। दैनिक जागरण ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के बयान को प्रमुखता दी है। पाकिस्तान आतंकवाद का सीरियल प्रैक्टिशनर, कहा पश्चिम एशिया में व्यापारिक जहाजों और नाविकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। जापान एशियाई खेलों में भारत के प्रदर्शन पर हिंदुस्तान ने गर्व शीर्षक से शब्द दिए हैं। कबड्डी में भारत को दोहरा स्वर्ण, निशानेबाज और एथलीट भी चमके। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, कबड्डी में भारत का सोने पर सुहागा। राजस्थान पत्रिका ने विश्व पर्यटन दिवस पर विशेष खबर दी है, नींद, खामोशी, नो फोन और गांव की धीमी जिंदगी बनी लोगों की नई मंजिल। पहले दुनिया देखने निकले थे, अब दुनिया से दूर होने, मन की शांति के लिए करते हैं यात्रा। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य के नजरिए से एक शोध प्रकाशित किया है, चाय के साथ रोज 100 ग्राम नमकीन बना सकती है बीमार। पैकेज चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे फ्लेवर्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड मीट में कैलोरी ज्यादा है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी युद्धग्रस्त देशों से मौजूदा संघर्षों के दौरान तनाव कम करने और ऊर्जा तथा व्यापारिक मार्गों से सुरक्षित आवागमन जारी रखने का आह्वान किया। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का पुरजोर समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज खुले रहेंगे। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, खराब मौसम के बीच चार धाम यात्रा स्थगित। और भारत वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज दोपहर तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पर्यटन यानी दुनिया को करीब से देखना। पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों और नए लोगों से जुड़ने का माध्यम है। जब हम किसी अनजान शहर की गलियों में घूमते हैं, किसी ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं या प्रकृति के बीच कुछ पल बिताते हैं, तो हमारी दुनिया और थोड़ी बड़ी हो जाती है। कभी कोई सफर हमें पहाड़ों तक ले जाता है, कभी समुद्र के किनारे और कभी इतिहास की उन इमारतों तक जो सदियों पुरानी कहानी कहती हैं। पर्यटन हमें अपने देश की विविधता से परिचित कराता है। भाषा बदलती है, खानपान बदलता है, पहनावा बदलता है, लेकिन हर जगह इंसान और उसकी मेहमान नवाजी हमें उससे जोड़ती है और इसीलिए पर्यटन या

आज पर्यटन का मतलब केवल घूमना नहीं बल्कि उन जगहों की सुंदरता और विरासत को सुरक्षित रखना भी है। यात्रा करते समय प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना और स्थानीय संस्कृति को समझना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस खूबसूरत दुनिया को देखने निकलते हैं उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही खूबसूरत छोड़ना है हमें। ये पर्यटन यानी घूमना हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, बल्कि हमारी सोच और अनुभवों की दुनिया को भी

विस्तृत करता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में तो पर्यटन का संसार और भी अद्भुत है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक, राजस्थान के किलों से लेकर पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियों तक, हर प्रदेश अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसलिए पर्यटन केवल यात्रा भर नहीं बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को अपने भीतर सहेजना भी है।

घूमना फिरना जितना आनंद देता है उतनी ही जिम्मेदारी भी हमसे मांगता है। विश्व में जिस खूबसूरती को हम देखने जाते हैं वहां कूड़ा फैला देना यात्रा नहीं हो सकती। जिन ऐतिहासिक इमारतों को देखने हम जाते हैं उनकी दीवारों पर अपना नाम लिख देना उस विरासत का घोर अपमान है। जिस नदी, झील या समुद्र के किनारे हम सुकून ढूंढने जाते हैं उसे गंदा करना, कूड़ा करकट फेंक देना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। आज जरूरत ऐसे पर्यटन की है जिसमें हम घूमने के साथ साथ प्रकृति, संस्कृति और विरासत का सम्मान भी करें। हर जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर जगह की अपनी बोली है, अपना संगीत है, अपना स्वाद है और अपनी परंपरा है। यही विविधता पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और समझने का माध्यम भी बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार किसी यात्रा से लौटने के बाद हमें महसूस होता है कि हमने केवल कोई जगह नहीं देखी बल्कि अपने भीतर भी कुछ नया खोजा है।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर। दास्तान बेमिसाल संगीत की।
3: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अभी आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 चैनल विविध भारती। चित्रलोक कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आप सभी का चित्रलोक कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गाना।

अभी आपने सुना जिंदगी मिलेगी ना दोबारा फिल्म का गाना, स्वर मोहित चौहान के और एलिसा मेंडोसा के। गीत के बोल लिखे जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का। और श्रोता, हम आपको बता दें कि आज हम फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, फिल्मकार यश चोपड़ा को जन्म जयंती पर उन्हें याद कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई और उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। फिल्म फेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। आइए सुनते हैं चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आपने सुना फिल्म तुझमें रब दिखता है का गाना। आवाज़ थी रूप कुमार राठौर की, गीत लिखा जयदीप साहनी ने और संगीत दिया सलीम ने। अब समय हो चला है एक अंतराल का,

0: अभी आपने सुना फिल्म अग्निपथ का गाना, अब उदित नारायण और सुनिधि चौहान के स्वरों में शब्दों में पिरोया अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अजय अतुल का।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

श्रोताओं, आज विदुषी शोभा गुटरू को हम याद कर रहे हैं। आज उनकी याद का दिन है। भारतीय शास्त्रीय शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी। उन्होंने गायन की ठुमरी शैली को विश्व भर में ख्याति दिलाई। शोभा गुटरू को ठुमरी की रानी कहा जाता था। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आपने सुना हैप्पी न्यू ईयर फिल्म का गाना, स्वर श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत दिया विशाल शेखर ने।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज विश्व पर्यटन दिवस है। हर वर्ष 27 सितंबर को ये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। पर्यटन हमें अलग अलग देशों, संस्कृतियों, परंपराओं और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से जानने का अवसर देता है और साथ ही स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जहां कहीं भी ऐसे स्थलों पर घूमने जाएं, पर्यटन स्थलों पर, तो वहां की स्वच्छता को बनाए रखना ये हमारी ही जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने सुना अजब प्रेम की गजब कहानी का गाना। इसे स्वर दिया अतीफ असलम और अलीशा चिनाय ने, बोल आशीष पंडित के और संगीत प्रीतम का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का गाना आपने सुना, जिसे गाया चिन्मयी श्रीपदा और गोपी सुंदर ने, गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं चितलो कार्यक्रम का अगला गाना।

अभी आपने सुना इतनी सी खुशी गाना फिल्म बर्फी का गाना है, आवाज़ श्रेया घोषाल और निखिल पाल के, गीतकार सदानंद किरकिरे, संगीत प्रीतम का। समय हो चला

अभी आपने सुना 5 घंटे में 5 करोड़ फिल्म का गाना, गायक लियोनार्ड विक्टर और सुजैन, गीतकार प्रवीण दबास। दोस्तों आज बता दें कि आज विश्व मंदिर दिवस है, वर्ल्ड डीफ डे। हर वर्ष सितंबर के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है इन लोगों के अधिकारों और उनकी उपलब्धियों और समाज में समान भागीदारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सुनने में कठिनाई किसी भी व्यक्ति की प्रतिभा या क्षमता को कम नहीं करती और उनको तकनीकी सुविधाएं और सांकेतिक भाषा के समान अवसर मिलने चाहिए। इसी के साथ ही आज विश्व नदी दिवस भी है, तो नदी की स्वच्छता और उसके संरक्षण के लिए हम सभी को बहुत ध्यान देना चाहिए। नदियां बहती रहेंगी तो तभी जीवन की धारा भी निरंतर बहती रहेगी। हम सब मिलकर अपनी नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने का मिलकर प्रयास करें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म आशिकी 2 से और जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने और पलक मुछाल ने, और बोल लिखे इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है मिथुन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक।

0: मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में कभी...

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत और आज के फनकार हैं अपने समय के जाने माने पार्श्व गायक महेंद्र कपूर।

अपने चाहने वालों का भरपूर प्यार पाया पार्श्व गायक महेंद्र कपूर ने। महेंद्र कपूर ने अपने गीतों के जरिए जो जगह बनाई है वो उनका सुरीला करिश्मा ही कहा जाएगा।

9 जनवरी 1934 को अमृतसर पंजाब में जन्मे महेंद्र कपूर ने लगभग 50 साल तक हिंदी सिने संगीत आकाश पर राज किया, और आज जबकि वो हमारे बीच नहीं है, तब भी उनके गीत उनके हर चाहने वाले के दिल की वादियों में गूंज रहे हैं।

मोहम्मद रफी को अपना आदर्श मानने वाले महेंद्र कपूर ने तय कर लिया था कि उन्हें सिंगर ही बनना है और इसीलिए वो अमृतसर से मुंबई आ गए। यहां उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक में पूरी योग्यता हासिल करने के लिए अलग अलग गुणीजनों से इसकी शिक्षा प्राप्त की, जैसे पंडित हुसैनलाल, पंडित जगन्नाथ बुआ, उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा। और इसी का नतीजा था कि महेंद्र कपूर ने अपनी एक अलग सिंगिंग स्टाइल बना ली। बस फिर क्या था, महेंद्र कपूर की मेहनत रंग लाई। उन्होंने उस साल के मेट्रो मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कॉम्पिटिशन को जीत लिया।

महेंद्र कपूर ने जो सिंगिंग कंपटीशन जीता उसे उस दौर के जाने माने निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने भी सुना था, जो कि उस समय अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म नवरंग के निर्माण की योजना बना रहे थे। वी शांताराम को महेंद्र कपूर की आवाज में एक अलग खनक, एक अलग सी मिठास और एक अलग सा सुरीलापन सुनाई दिया और उन्होंने अपने संगीतकार सी रामचंद्र से बात की। उन्होंने भी महेंद्र कपूर को सुना, तब दोनों ने निर्णय लिया कि महेंद्र कपूर होंगे फिल्म नवरंग के पार्श्व गायक।

नवरंग फिल्म भी हिट हुई और इसका संगीत भी। उसके बाद महेंद्र कपूर को बी आर चोपड़ा की फिल्म में गाने का मौका मिला। फिल्म थी धूल का फूल।

बी आर चोपड़ा की फिल्मों का दर्शकों को हमेशा इंतजार रहता था। उनकी फिल्मों का विषय भी सामाजिक सरोकारों से जुड़ा होता था और संगीत भी लोकप्रिय होता था। महेंद्र कपूर की एंट्री बी आर कैंप में होने के बाद उनकी वहां जगह हमेशा के लिए तय हो गई, पक्की हो गई। फिर तो उन्होंने बी आर बैनर की सभी फिल्मों में गीत गाए और सभी हिट भी रहे। गुमराह।

महेंद्र कपूर को उपकार के गीत मेरे देश की धरती के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में गुमराह का गीत चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, 1968 में हमराज का गीत नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, और 1975 में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, इसके लिए महेंद्र कपूर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। गायक महेंद्र कपूर ने अपना पूरा जीवन सिने संगीत को समर्पित किया और अपने चाहने वालों के दिलों में वो जगह बना ली जो तब तक बनी रहेगी जब तक संगीत की दुनिया में स्वर लहरियां गूंजती रहेंगी।

0: ये था पार्श्व गायक महेंद्र कपूर को समर्पित आज के फनकार कार्यक्रम। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
2: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेश।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: Sound, camera, action!
1: La la la la, la la la, la la la la la, la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया, इतने जी बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी तब।
3: हाँ हाँ।
2: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
3: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
2: जी,
3: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था
2: जी, बिल्कुल।
3: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे

0: कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब, तो ये है वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया जी, करते थे जी। जागीरदार जी बोले, साहब जी ये इतनी छोटी, आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी
1: जी,
0: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
1: अच्छा।
0: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं। तो बोले गाओगी कहाँ, तो मैंने शुरू किया। वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था, हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना
1: जी,
0: था
1: जी।
0: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया, अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले ए जागीरदार, सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल।
0: तो मौसिन को पूछा, अब सीखती है? मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था।
1: हाँ,
0: उनके लिए इतना कहना ही
1: बहुत
0: काफी
1: बड़ी
0: था।
1: बात।
0: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में, इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है।
1: कम है जी,
0: है ना
1: जी, जी।
0: उनके साथ तो ये था मेरा। नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी।
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे, वो
1: अच्छा।
0: दिलीप साहब के साथ खेलते थे टेनिस।
1: हाँ।
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने, हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, इस बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई,
1: जी।
0: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और करते करते 10 बज गए,
1: रात की।
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले, मंदाकिनी जी बोले, बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
1: अरे
0: तो
1: जी।
0: अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त बिल्कुल आखिर आखिर में, सुनहरा संसार का उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी, इतना ही था बस।
1: जी।
0: तो अबू साहब ने कहा, नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट
1: जी, जी।
0: तो उत्तम भैया ने बहुत वो तो

सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है

0: ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को
0: जी
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है। और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं मंदाकिनी जी 12 साल की थी? तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूं, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तो उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहां तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आरडी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूं।
0: जी, जी।
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है, तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज दी।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई।
0: थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी।
1: कोशिश करूंगी, गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचम दा ने सिखाया पता जी, है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी,
1: शर्मिला जी कैसे बोलती हैं
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे हाँ आगे क्या है डैडी
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया मुझे वो चाहिए बहुत यादें आपने ताजा की आज
0: जी, जी, जी।
1: मैं इसी बात पे आऊंगी कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना जैसे मैं
0: जी
1: मुझे खुद को भी इस बात अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी
0: अच्छा
1: इस गाने को लता जी गाने वाली थी
0: अच्छा
1: जी मुझे तो वो पंचम दा तो कोशिश

0: वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं। तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया कोई भी
1: जी,
0: गाना
1: अरे
0: अच्छा, पर तेरा दादा तुझे
1: देगा,
0: तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
1: अरे
0: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए है, प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा,
1: बिल्कुल।
0: एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे। दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे
1: अच्छा।
0: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो। उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचम दा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी
0: बहुत ज्यादा,
1: जी
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे, वो
1: कि आप
0: गाएगी,
1: गालेंगे।
0: हाँ बोले वो गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी, गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी,
1: जी
0: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसका जो, इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट
1: सूट
0: होती,
1: करती है।
0: इस करके ये गाना
1: क्या
0: मुझे मिला।
1: बात है। तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का। बताइए,
0: प्लीज
1: तेरा
0: प्लीज,
1: मुझसे है पहले का
0: बिल्कुल
1: नाता कोई,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी
1: लीजिए।
0: जी

0: वाला है, उसी को बुलाना तू आ जा। हाँ, ये जो वो बोलते थे ना मंदाकिनी, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही हूं,
1: जी जी
0: देखिए
1: जी
0: मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ, यू नो कि तारा रा रा, ये हुआ खुले गले का, फिर कहा ना भुलाना तो ये रा, और सॉफ्ट उसी को बुलाना तो आ जा
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात है,
0: ये मैंने
1: ये
0: उनसे
1: आधारकार
0: सीखा,
1: जी, ये पंचम धाम में ही ये गुण
0: ये
1: थे
0: उतार चढ़ाव
1: जी
0: डायनामिक समझे से
1: जी
0: कहते,
1: जी जी
0: कहां कितना आपको जोर देना
1: देना
0: है,
1: है,
0: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
1: वाह
0: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
1: वाह
0: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते थे।
1: जी, मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार
0: हाँ
1: मिला, स्नेह
0: बहुत
1: मिला, उस
0: बहुत
1: छत्र छाया में आपने
0: बिल्कुल,
1: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है,
0: ये मेरा
1: जो
0: भाग्य ही है।
1: नसीब नहीं
0: हाँ हाँ
1: मिलता है, अच्छे
0: बिल्कुल,
1: अच्छों को नहीं मिला है।
0: नहीं
1: अभी
0: मिल,
1: भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है
0: ना ना
1: जिनको
0: ना
1: हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले
0: ना
1: सके,
0: ना
1: सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हा,
0: थी
1: हा, हा,
0: है ना, बांग्लादेश वॉर के ऊपर वो
1: जी.
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: वाह.
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही.
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ, बिल्कुल जी.
0: है। तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी।
1: जी बिल्कुल.
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी कोल्हापुरी।
1: कोल्हापुरी ने जी.
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना नागरा, वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी जी
0: तो वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा.
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी
1: ने.
0: कि मैं बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
1: अरे
0: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: नहीं। मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात.
0: मेरे लिए काफी
1: जी जी
0: है। इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है आप,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है.
0: प्लीज मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट, पुश
1: जी
0: बैक,
1: जी
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचमदास से
1: जी
0: सी।
1: जी
0: डा डा रा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही
0: डा रा,
1: गाते
0: हाँ
1: थे
0: बिल्कुल,
1: जी।
0: डा रा।

0: बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा,
1: ओहो,
0: तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात एम चंद्रा की फिल्म
1: धर्म कर्म भी था,
0: धर्म
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मुकेश अंकल के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा, जिसमें आपने पुष्पा पाखधरी के साथ
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी, वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तो नाम, ये मेरा चॉइस रहा है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है। ये अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
0: जी,
1: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत ही अलग गेम है,
0: विधा है।
1: बिल्कुल मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है, लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है क्या गाती है, कर दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया। तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए, तरम पम। उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
0: जी
1: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
0: अरे
1: पर उनका बड़प्पन देखिए। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ, मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बापीदा की पहली फिल्म थी
0: जी,
1: नन्हा शिकारी।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना

0: ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता है, ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस कि अब तो गदा पड़ी, लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे, इवन रिकॉर्डिंग्स में, वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए
1: क्या बात है।
0: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता भी,
0: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब गाना जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरमपम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
1: अरे
0: राज बच्चा तरमपम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरमपम तरमपम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं तुम्हारे अंतरे में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
1: बिल्कुल
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल इसको इसको स्वीकार कर लेना,
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है
1: जी,
0: ना
1: जी,
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी जी।
1: जी, जी
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी,
0: क्यों, मैं समझती हूँ हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे।

0: एक दिन बिक
1: क्या
0: जाएगा,
1: बात है,
0: एक दिन बिक जाएगा
1: माटी
0: माटी के
1: के
0: मोल,
1: मोल
0: ये
1: में।
0: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे लिए ये
1: बिल्कुल
0: गाना
1: बिल्कुल, ये
0: बजाइएगा
1: गाना हम बजाएंगे और हमारे
0: जी
1: श्रोता सुनना भी चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं
0: जी
1: ये गीत।
0: ना।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना चाहता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मां
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल

0: अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूं, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी।
1: जी
0: मैं जहां जाती हूं मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग। वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी
1: और
0: जी।
1: उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती
0: और
1: हैं।
0: नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो,
1: जी
0: मैं
1: जी
0: क्या थी उनके
1: जी
0: आगे और क्या हूं,
1: बिल्कुल
0: इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, ए के नडियाड वाला फिल्म्स, आ गले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम
1: जी
0: किया,
1: जी
0: इतनी मतलब
1: बड़ी बात है और
0: मैं
1: ताउम्र
0: हाँ।
1: याद रहने वाली बात
0: और
1: है
0: ये
1: वो।
0: आखिरी गीत, इतनी शक्ति हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी। कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया,
1: बिल्कुल।
0: मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने। फिर बहुत बदकिस्मत, इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म, पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूं। देखिए मैंने सबकी जो जिंद करियर्स की जो शुरुआत हुई है काफी, जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी,
1: उनके शुरुआती दौर
0: ना
1: में।
0: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस
1: इसमें से
0: यस
1: आप हमारे लिए
0: तो ये हमने सोचा
1: लकी
0: ही नहीं
1: हैं।
0: था
1: जी जी
0: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
1: बिल्कुल
0: गया,
1: बिल्कुल। और
0: इतनी।
1: पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके
0: हाँ
1: साथ गाना
0: मैं
1: आपको मिला।
0: बिल्कुल, और मैं मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस, पर मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
1: वो वही थी
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
1: जी, वो
0: थी,
1: पुष्पा जी की
0: है
1: ही
0: ना।
1: आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क है,
1: जी मेरा ही
0: कीजिएगा
1: सवाल
0: जरूर,
1: है।
0: तब मैं आपको
1: जी मेरा
0: बताऊंगी
1: ही
0: कि
1: सवाल
0: क्या
1: है।
0: फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था, और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए।
0: बस वो गाना
1: जी जी
0: वो बंद
1: जी
0: हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोले पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने, तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं।
0: हम कितने भाग्यशाली हैं, प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा
1: जी
0: तो हम सोचे, हम हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा
1: जी
0: लिया। मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं
0: जी
1: तो ये गाना नंबर 1 पर होता है।
0: देखिए
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से। और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हर
0: ना।
1: उद्घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी, कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो
1: हाँ वो
0: पहचान, वो
1: स्थान।
0: स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल।
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चलें तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बहुत
0: बाप
1: बहुत
0: रे,
1: बिल्कुल।
0: तो
1: तो चलिए
0: इतनी
1: ये गीत हम सुनते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: तो देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यही खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: The best of entertainment, information, education, अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक कितना ब्लॉक करूँ यार
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता हर बार नया नंबर आ जाता है
4: तो क्या करूँ
5: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा
5: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई DND ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
6: तुझे कॉलेज का टाइम याद है
7: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए कितनी बातें भूल गया हूँ सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है
6: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है कहाँ से

0: सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के सितंबर माह में फिर से एक बार आपको मिलने का अवसर मिल रहा है। मैं देश के सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मन की बात में हम देशवासियों के सकारात्मक प्रयासों को मंच देते हैं, देश की उपलब्धियों की बात करते हैं। भारत की ऐसी ही एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि को एक दिन बाद 10 साल होने जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सर्जिकल स्ट्राइक की। 10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था। आतंकवादी हमलों के कारण भारत ने लंबे समय तक जो दर्द झेला था, सर्जिकल स्ट्राइक उस कष्ट के खिलाफ हमारी निर्णायक प्रतिक्रिया थी। बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। साथियों, आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। एक समय था जब भारत में सीरियल ब्लास्ट होना बहुत सामान्य बात हो गई थी। सितंबर के इस महीने में यानी 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सीरियल ब्लास्ट में अनेक निर्दोष लोग मारे गए थे। इसके कुछ सप्ताह बाद ही मुंबई में 26/11 का इतना बड़ा हमला हुआ था। साथियों, पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी, लेकिन उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। समय बीतने का इंतजार किया जाता था। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं। साथियों, इस साल 9/11 के आतंकी हमले को भी 25 वर्ष हुए हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में PM बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इन दिनों देश की एक बहुत बड़ी तस्वीर तैयार हो रही है। इस तस्वीर में आप भी हैं, आपका परिवार भी है, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग भी हैं। मैं बात कर रहा हूं भारत की जनगणना की। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से अधिक परिवारों की जानकारी दर्ज की जा चुकी है। इन दिनों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के दुर्गम और बर्फीले इलाकों में भी ये काम चल रहा है। वहां से कई प्रेरक अनुभव हमारे सामने आए हैं। उत्तराखंड में जनगणना की शुरुआत चमोली के माणा गांव से हुई। माणा को देश का पहला गांव कहा जाता है। माणा में सबसे पहले 83 साल की पूर्णिमा रावत जी से इसकी शुरुआत हुई। उत्तरकाशी के बगोरी गांव में होमस्टे चलाने वाले हरदेव सिंह राणा जी ने डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज की।

साथियों, जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है। साथियों, इसके लिए आपको जनगणना के ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होता है। ये पोर्टल है sec.census.gov.in। इस पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिए, अपना स्थान दर्ज कीजिए, अपने परिवार से जुड़ी जानकारी भरिए और उसे सबमिट कर दीजिए। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना है। जानकारी सबमिट करने के बाद आपको एक विशेष आईडी मिलेगी। जब गणना कर्मी आपके घर आए तो आप उन्हें ये आईडी बता सकते हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि होने के बाद वो जनगणना का हिस्सा बन जाएगी। साथियों, अब तक मोबाइल से 2,60,00,000 से ज्यादा लोग जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी भर चुके हैं, स्वगणना कर चुके हैं। आपका भी इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा, लेकिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी सही जानकारी, आपके परिवार की सही जानकारी देश के भविष्य की सही तस्वीर तैयार करने में मदद करती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 27 सितंबर की ये तारीख एक विशेष कारण से और भी विशेष हो गई है। आज एक ऐसे महानुभाव की 100वीं जन्म जयंती है जिन्होंने संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। मैं बात कर रहा हूं विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी की। 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला। जब मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में शामिल हो रहा था तब भी मुझे बार बार अशोक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक था। साथियों, अशोक जी के बारे में ऐसी कितनी ही बातें हैं जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती। राम मंदिर आंदोलन के साथ ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव और विषमता के खिलाफ भी एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उनका जन्म एक बेहद समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सिविल सेवा अधिकारी थे। उनके भाई बहनों में भी अधिकांश लोग बड़े बड़े पदों पर रहे। वे खुद भी IIT BHU से ग्रेजुएट थे, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने समाज और संस्कृति के लिए अपना जीवन समर्पित किया। यही महान लोगों की पहचान होती है। आज मैं उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके करोड़ों प्रशंसकों की ओर से उन्हें नमन करता हूं। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत हमने स्वाभिमान के एक महापर्व के साथ की थी। ये पर्व था सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। आज से 1000 साल पहले 1026 में मोहम्मद गजनी ने पहली बार सोमनाथ मंदिर को विध्वंस किया था। लेकिन जो लोग सोमनाथ को तोड़कर भारत की पहचान मिटाने आए थे, आज उनका कोई वजूद भी नहीं है और सोमनाथ मंदिर पूरी भव्यता के साथ विशाल समुद्र के किनारे भारत को अमरता का आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए हमने पूरे गर्व के साथ इस साल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। साथियों, ये चर्चा में आज मन की बात में फिर से क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक खास वजह है। 1000

1926 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था। यानी मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था। साथियों, आप उस कालखंड के बारे में सोचिए जब इतना बड़ा आक्रमण हुआ हो, सोमनाथ मंदिर जैसा आस्था का इतना बड़ा केंद्र खंडित किया गया हो और कई जगहों पर भी हमले हुए हो, तो किसी भी समाज या शासन का मनोबल टूट सकता था। लेकिन राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा। साथियों, मोढेरा सूर्य मंदिर पर भी बाद के कालखंड में हमले रुके नहीं। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर वास्तुकला के इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया था। लेकिन साथियों, हम भारत के लोग सूर्य की उपासना केवल वास्तु और मंदिरों के जरिए ही नहीं करते। हमारी सूर्य उपासना, उसका एक अर्थ ये भी होता है, प्रकाश, ऊर्जा, विज्ञान और निरंतरता की प्रेरणा। इसलिए मोढेरा भी आज न केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम, सोलर विलेज बन चुका है। मोढेरा आज पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलता है और उसने देश के सामने सस्टेनेबिलिटी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मोढेरा में पर्यटकों के लिए कई आकर्षण और सुविधाओं की शुरुआत भी हुई है। जनवरी में मकर संक्रांति के बाद वहां मोढेरा नृत्य महोत्सव का आयोजन भी होता है। इसमें भारत के सांस्कृतिक और शास्त्रीय नृत्यों की अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैं चाहूंगा आप सब भी एक बार मोढेरा अवश्य जाएं और भारत की इस गौरवशाली विरासत के दर्शन करें। साथियों, अतीत से हमारा जुड़ाव आज भी बहुत जीवंत है। इसके पीछे उन लोगों का समर्पण और परिश्रम है जो इसे और गहरा बना रहे हैं। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के मनप्पारई में ऐसा ही एक अनूठा प्रयास हो रहा है। एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ तमिल स्टडीज से जुड़े ए सेल्वा राजू जी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। एक लेक्चर के दौरान उन्हें अपने एक स्टूडेंट से कुछ प्राचीन प्रतिमाओं की जानकारी मिली थी। इस विषय पर चर्चा के बाद उन्होंने फील्ड विजिट का प्लान बनाया। इस विजिट के दौरान उन्हें अलग अलग जगहों पर कई प्रतिमाएं मिली और प्राचीन मंदिर मिले। अतीत से जुड़ने का एक रोचक प्रयास है। इस प्रकार हम अपनी विरासत को और बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। ये हमें अपने इतिहास को करीब से देखने और समझने का अवसर देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े अनेक प्रयासों को देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरक और उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियो, ऐसी रील्स बार बार हमारा ध्यान खींचती है। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है। मुंबई में कुछ युवा समुद्र तटों को साफ रखने की पहल कर रहे हैं। हर हफ्ते किसी न किसी बीच पर सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे हैं, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहां दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने

और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया, यही तो जनभागीदारी है। बापू के प्रति हमारी सबसे सुंदर श्रद्धांजलि भी स्वच्छता ही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम केवल पेड़ पौधों या जीव जंतु को ही नहीं बचाते, हम उस पूरी जीवन व्यवस्था को मजबूत करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे कुछ प्रयास इस भावना को बहुत सुंदर तरीके से सामने ला रहे हैं। साथियों, असम में सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक समय था जब यहाँ हाथियों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ता गया, जिसे हाथियों ने इस इलाके से दूरी बना ली। 3 साल पहले इस जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया और अब इसके अद्भुत परिणाम सामने आए हैं। हाथी यहाँ फिर लौट आए हैं। जिस इलाके में बरसों से उनकी चहल पहल नहीं थी, आज वहाँ फिर हाथियों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साथियों, असम में ही एक और सुंदर प्रयास हुआ है। ये प्रयास एक बहुत छोटे से जीव पिग्मी हॉक को बचाने का है। एक समय इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा था, तब केवल 6 पिग्मी हॉक के साथ एक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्हें फिर जंगलों में बसाया गया, उनके रहने के लिए ग्रासलैंड्स को भी संवारा गया। आज इस प्रोग्राम की वजह से पिग्मी हॉक की संख्या 190 से ज्यादा हो चुकी है। साथियों, प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ उसे सहजने तक सीमित नहीं है। कई बार हम प्रकृति को संभालते हैं तो वही प्रकृति हमारे जीवन का सहारा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में कुछ महिलाएं इसी रिश्ते की प्रेरक मिसाल पेश कर रही हैं। जारखाली की ये महिलाएं मैंग्रोव के जंगल तैयार कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर वो महिलाएं हैं जिनके पति की टाइगर अटैक में जान चली गई थी। पति को खोने के बाद उन्हें सुंदरबन से ही आजीविका का सहारा मिला। उनके द्वारा लगाए गए मैंग्रोव आज गांवों के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन रहे हैं और इन्हें लगाकर इन महिलाओं की कमाई भी हो रही है। साथियों, हम पर्यावरण को सहेजें, प्रकृति के संतुलन का सम्मान करें और उसकी विविधता को सुरक्षित रखें। हमारा हर ऐसा प्रयास भविष्य की पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं। यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है।

आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, लाल किले से मैंने इस बार स्पोर्ट्स के लिए टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। भारत लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करता रहे, इसके लिए गांवों और कस्बों तक पहुंचकर स्पोर्टिंग टैलेंट को खोजना जरूरी है। वहीं कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसी काम के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। उनका एक ही पैशन होता है, टैलेंट को खोजना और उन्हें तराशना। हमारे पंजाब में यही काम राजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके नाम में सीनियर भी जुड़ा हुआ है। वे 1980 के ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा थे। 1982 के वर्ल्ड कप में छाए रहे थे। 2001 में भारत ने पहली बार मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। वहीं 2003 में देश ने सीनियर एशिया कप टाइटल पर कब्जा किया था। इन दोनों ही टूर्नामेंट में वे कोच की भूमिका में थे। अब वे राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी के जरिए अपने पैशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके प्रयासों से गांवों में नई हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिछाई जा रही है। राजेंद्र जी का फोकस एकदम क्लियर है, ऐसे गांवों में बच्चों की पहचान करना जहां बेहतरीन कोचिंग की सुविधाएं कम है। ऐसे प्रयासों से कई खिलाड़ी भारत के जूनियर और सीनियर लेवल पर अपनी जगह बना रहे हैं। राजेंद्र सिंह जी के इस समर्पण की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। मेरे प्यारे देशवासियों, आंवला हम सभी के लिए बहुत जाना पहचाना है। ज्यादातर घरों में इससे बने आचार और मुरब्बे का प्रयोग होता है। बहुत से लोग आंवले का जूस पसंद करते हैं और सर्दियों में च्यवनप्राश हमारी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो पीढ़ियों से आंवले के गुणों के बारे में बताते आए हैं। साथियों, यही आंवला आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं का माध्यम बन रहा है। प्रतापगढ़ और आंवले का रिश्ता बहुत पुराना है। पीढ़ियों से यहाँ के किसान आंवले की खेती कर रहे हैं। आंवले ने प्रतापगढ़ को एक मजबूत पहचान दी है और अब यही पुरानी पहचान यहाँ के किसानों और महिलाओं के लिए नए अवसर लेकर आ रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP के माध्यम से यहाँ आंवले से जुड़े स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिला है। आज प्रतापगढ़ में आंवला प्रोसेसिंग से जुड़ी करीब 100 यूनिट काम कर रही है और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं भी बड़ी भूमिका निभा रही है। ऐसा ही एक समूह है देवगढ़ कमासी गांव का, सावित्री फुले सेल्फ हेल्प ग्रुप। इससे जुड़ी महिलाएं आंवले से कैंडी, मुरब्बा और जूस बना रही हैं। ODOP के तहत नए बाजारों तक पहुंच बढ़ने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह एक गांव में विंध्यवासिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इस ग्रुप की महिलाएं आंवले का अचार, डाइजेस्टिव पाउडर ऐसी कई चीजें तैयार कर रही है। इन महिलाओं को प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी मिली, लोन की सुविधा मिली, स्थानीय व्यापार मेले से जुड़ने का अवसर भी मिला और देखते ही देखते उनकी आय काफी बढ़ गई। साथियों, हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है, तो कहीं कोई अनोखा हुनर है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की ये पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक

सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे और दुनिया के बाजारों तक भी पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की भी प्रेरणा देता है। आने वाले त्योहारों में भी हमें वोकल फॉर लोकल वाले मंत्र को तो कभी भी भूलना नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सितंबर का ये महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक कार्य के लिए एक साथ आती है। कुपोषण से मुकाबला करने के लिए इस साल कई सराहनीय पहल की गई है। छत्तीसगढ़ ने हर घर मुनगा घर घर मुनगा ये अभियान शुरू किया है। इसमें लोगों को पौष्टिक मुनगा यानी मोरिंगा को अपने खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुजरात ने भी वांगी स्पर्धा यानी मिलेट से बने व्यंजनों का कंपटीशन शुरू किया है। इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके हैं। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। वहां टीचर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों के माता पिता जागरूकता अभियान से जुड़ रहे हैं। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है। मुझे आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े उन सभी लोगों पर भी गर्व है जो इस तरह की पहल का हिस्सा रहे हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र अब पोषण ट्रैकर से डिजिटली जुड़ गए हैं। करीब 9 करोड़ लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है। साथियों, हम सब ने इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गणेश उत्सव मनाया है। देश भर में पूरे भक्तिभाव से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। यह पावन अवसर पूरे वातावरण को उमंग और उल्लास से भर देता है। साथियों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश ज्ञान, बुद्धि और शुभ कार्यों के आरंभ के प्रतीक है। उनके प्रति अगाध श्रद्धा सिर्फ भारत में ही नहीं है। जैसे श्रीमान पंथोन थिरखानोन जी, उन्हीं की बात ले लीजिए। वे वैसे तो थाईलैंड के हैं। यहाँ भगवान श्री गणेश की पूजा फ्रा फिका नेत के रूप में की जाती है। और जब वे 19 वर्ष के थे तब उनके पिता ने उन्हें भगवान श्री गणेश की एक फोटो भेंट की थी। यहीं से उनमें अद्भुत भक्ति जागृत हुई। वे भगवान श्री गणेश से जुड़ी परंपराओं के अध्ययन में 4 दशक से भी अधिक समय बिता चुके हैं। उन्होंने भारत और नेपाल सहित एशिया के कई देशों की यात्रा की है। महाराष्ट्र से उनका विशेष लगाव रहा है। अष्ट विनायक परंपरा के बारे में जानने के बाद वे कई बार यहाँ आ चुके हैं। उनके प्रयासों से थाईलैंड के श्रद्धालुओं के बीच भी अष्ट विनायक यात्रा लोकप्रिय हो चुकी है। वर्ष 2002 में उन्होंने उत्तरी थाईलैंड के चियांग माई में गणेश हिमाल म्यूजियम की स्थापना की। आज इसमें 10,000 से अधिक गणेश प्रतिमाएं हैं। म्यूजियम में उन भक्तों के लिए अष्ट विनायक की प्रतिमाएं भी मौजूद हैं जो भारत नहीं आ सकते। यहाँ हर रविवार सुबह करीब 10 बजे गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणपति से जुड़े विशेष अवसरों पर भी अनुष्ठान होते हैं। यह बताता है कि भारत की आस्था, कला और सांस्कृतिक परंपराएं दूसरे देशों में भी कैसे लोकप्रिय हो रही है। मेरी

0: कामना है गणपति बप्पा का आशीर्वाद सभी पर हमेशा बना रहे। साथियों, मन की बात के हर एपिसोड के बाद मुझे अनेक विषयों पर आपके संदेश मिलते रहते हैं। आप इसी तरह प्रेरणा से भरी गाथाएं भेजते रहिए। जब आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों की सराहना करते हैं तो उनका उत्साह और बढ़ जाता है। मन की बात के माध्यम से उनके बारे में जानकर देश के दूसरे हिस्सों के लोग भी प्रेरित होते हैं। ये यात्रा इसी तरह आपके सहयोग से निरंतर आगे बढ़ती रहे। आने वाले त्योहारों को आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ पूरे आनंद और उल्लास से मनाएं। मैं आप सभी को एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे?
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: साथियों, चित्रपट संगीत में अभी आपने सुना लता मंगेशकर, उदित नारायण और गुरुदास मान की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा ये गीत। संगीत था मदन मोहन का और फिल्म का नाम था वीर ज़ारा।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा

0: है, ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लच्छा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।
3: आइए सुने अगला गीत गायक और संगीतकार A.R. रहमान की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और फिल्म का नाम है स्वदेश।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
3: आइए सुने अगला गीत बी पराग की आवाज में। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने, संगीत है ओरको का और फिल्म का नाम है केसरी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन को उन्होंने जो दिशा और ऊर्जा दी, अयोध्या में भव्य मंदिर उसी का निर्माण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था, बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बापू द्वारा दिए गए जीवन के कई मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुट रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के लाखों युवाओं ने हाल ही में मादक पदार्थों के सेवन और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संकल्प लिया। उन्होंने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा की है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। नशा मुक्त युवा अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है। पोषण माह में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग और संस्थाएं इस नेक काम के लिए एक साथ आते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आज ग्राहकों की सुविधा के लिए खुले हैं। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्माता निर्देशक, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है, जिन्होंने यशराज फिल्म्स की स्थापना की और बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों को एक नई दिशा दी। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित यश चोपड़ा। और उनके साथ ही हम याद करेंगे पार्श्व गायक, हिंदी फिल्मों में 5 दशकों से अधिक समय तक काम करने वाले, जिन्हें मुख्य रूप से उनके देशभक्ति गीतों के लिए भी याद किया जाता है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री, महान गायक महेंद्र कपूर को। तो कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी, फिल्म का नाम है चांदनी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, बलबीर, जोगिंदर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार हैं हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कर।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरी का, फिल्म का नाम है डर।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: आइए सुने अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवाइफ।

0: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कतील शिफाई, संगीत है उत्तम जगदीश का और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि

0: कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कॉम।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत पोस्ट करते हैं और उनमें से आपको शब्द ढूंढने होते हैं और गाने चुनने होते हैं और साथ में आपकी अपनी टिप्पणियां साझा करनी होती हैं। और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणी आ रही है, तो एक बार इबारत हम दोहरा देते हैं जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या जरा सा झूम ले, जरा सा घूम ले। कहाँ घूमे? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। नहीं नहीं, वहां चले जहाँ मिलता है सुकून। कहाँ? जहाँ तुम कहो। ये कहाँ आ गए हम और फिर तुम कहो। चलो सजना जहाँ तक घटा चले। फिर ऐसी वादियों में चलेंगे जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हो और कोई धीमी सी नदी हमारे साथ साथ चलती हो। कहाँ कहीं रुकेंगे? हाँ, जहाँ नदी का पानी इतना साफ हो कि उसमें आसमान भी अपना चेहरा देखे। और अगर शाम हो गई तो चांदनी को साथ लेकर किसी पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इतना घूमना किसके नाम? पर्यटन के नाम? या ये सफर तो बस दिल के नाम है। और अगर रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो मुस्कुराकर कहेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली उस दुनिया की तलाश में, जहाँ सफर भी कहानी हो और मंजिल भी। फिल्मी हो गए हो आज तो। क्या करें, यश जी की फिल्मों ने ही तो सिखाया है कि पहाड़ों के बीच भी मोहब्बत की एक पूरी कहानी बस सकती है। तो फिर अगला पड़ाव जहाँ तुम हो वहीं से सफर शुरू। तो चलो तुम, हम और ये वादियां कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच। लेकिन वादा करो नदी के पानी को साफ सुथरा रखेंगे। एक कागज की कश्ती तिराएंगे और खुद भी एक कश्ती में बैठ चलेंगे नदी के उस पार, जहां ऊंचे पर्वत के दायरे होंगे। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज के शब्द कौन से हैं और गाने कौन से हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप गाने सुझाते रहिए और वो गाने हम अपनी प्लेलिस्ट में डालते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। वैसे आज की जो इबारत है उसमें एक एक शब्द पर एक एक गाना है, तो ढूंढिए वो गाने भी, जरा गाने भी तो लिख डालिए। आपने पर्यटन के बारे में लिखा है, घूमने के बारे में, वादियों के बारे में, ये तो लिखते रहना है, लेकिन गानों के बारे में भी लिखना है। अब जरा बूझिए कि पहला वाला गाना कौन सा हो सकता है। अब आपने तो बूझ ही लिया है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी डाला है कि आज यश चोपड़ा का जन्मदिन है, तो लगता है आज की इबारत में यश जी को याद किया जाएगा। और एक शायद आप भूल रहे हैं, आज तो महेंद्र कपूर की याद का दिन भी है और आज पर्यटन दिवस है, नदी के दिन को याद किया जा रहा है। तो भाई बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए इन मिली जुली बातों के साथ हम सफर पर चलते हैं, सुरीला सफर। तो बताइए कौन सा वाला गाना होगा और इस गाने में कौन है कलाकार, हीरो हीरोइन का नाम बूझिए फटाफट। फिल्म कभी कभी, गाना कौन सा, पहचान लिया कि नहीं? लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, गीतकार कौन बताइए।

कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें साहिल लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो हीरोइन श्रोताओं ने ये जवाब भी दिया है सही। और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं, ये पर्वतों के दायरे, ये कहाँ आ गए हम, नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी का सफर, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहाँ तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये पर्वतों के दायरे, और अनगिनत गानों के बोल लिख रहे हैं श्रोता। हम इनमें से जिनकी जिन मतलब जिन गानों की संख्या ज़्यादा होगी वो गाना हम आपको सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा जी बी आर चोपड़ा के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने भाई बी आर के साथ फिल्म निर्देशक का काम शुरू किया। तो ज़रा अब हमें बताइए कि यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये एक पहेली है आपको बूझनी है। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन हमने बता दिया है, आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफर की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफर का साथी हमारे मनोभावों को समझता है तब जगह चाहे कोई भी हो सफर सुहाना ही हो जाता है।

एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नजारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिंदी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियां, खूबसूरत कुदरत के नजारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं। और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नजारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारें नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें। यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहां देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लू मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो सजना, बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने। और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरे गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें। बोरीवली, मुंबई, सागर किनारे, दिल ये पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं। विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली, मुंबई, समंदर किनारे, सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम, उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? और हाँ, चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही, तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी, घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और। हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

वक्त फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था, वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया, सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं, आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे, डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यहीं लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहाँ की यादें साझा कीजिए और वहाँ के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई, बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं, और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुरीला सफर में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था, अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे। अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताज़ा करिए। और अगर आप सफ़र पे गए हैं और किसी पहाड़ पर, किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफ़र कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नजारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, जिसके बाद वहां भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं, या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर। ये बहुत जरूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें, और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहां जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए अब चलते हैं वहीं जहां पर इबारत में वादा किया गया था, और किसी ने कहा था चलो सजना जहां तक घटा चले। तो कहां तक घटा है और कहां तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए, विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए। बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहनें यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूं। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहें पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटी को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़े हैं तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमी आसमां सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित किया है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए। और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म

के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना? और हाँ, जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो, कौन है हीरोइन? ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से, सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर

निदेशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसे

है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप जरा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए, क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। अब हमें जरा ये भी बताइए कि आपके शहर या गाँव के आस पास कौन सी जगह है जहाँ लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहाँ पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहाँ कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं, ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको बूझना है फिल्म का नाम और आवाज किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला

जंगल है, वहाँ लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहाँ सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहाँ पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सपरिवार। हमने शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया हमारी आंखों के सामने, वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहाँ पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहाँ की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज़?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा ज़रा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियां, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें। पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है। सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम पूछिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूँ, यहाँ के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहाँ की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

एक श्रोता ने संवाद लिखा है, चिनार सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किस फिल्म का डायलॉग है जरा ये बताइए। और कोई संवाद आपको याद हो तो आप लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो सुरक्षित रहता है फेसबुक पेज पर, हम पढ़ सकते हैं बाद में भी।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना था, आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे। भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफ़र का ये सफ़र चलता रहता, लेकिन क्या करें, जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद है, कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सके या आपसे और कोई सवाल पूछ सके, तो बस आज का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

त्रिवेणी के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। हर वर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। पर्यटन यानी दुनिया को करीब से देखना। पर्यटन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि नए अनुभवों, नई संस्कृतियों और नए लोगों से जुड़ने का माध्यम है। जब हम किसी अनजान शहर की गलियों में घूमते हैं, किसी ऐतिहासिक धरोहर को देखते हैं या प्रकृति के बीच कुछ पल बिताते हैं, तो हमारी दुनिया और थोड़ी बड़ी हो जाती है। कभी कोई सफर हमें पहाड़ों तक ले जाता है, कभी समुद्र के किनारे और कभी इतिहास की उन इमारतों तक जो सदियों पुरानी कहानी कहती हैं।

पर्यटन हमें अपने देश की विविधता से परिचित कराता है। भाषा बदलती है, खानपान बदलता है, पहनावा बदलता है, लेकिन हर जगह इंसान और उसकी मेहमान नवाजी हमें उससे जोड़ती है और इसीलिए पर्यटन यानी घूमना फिरना हमारी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है।

आज पर्यटन का मतलब केवल घूमना नहीं बल्कि उन जगहों की सुंदरता और विरासत को सुरक्षित रखना भी है। यात्रा करते समय प्रकृति को नुकसान न पहुंचाना, ऐतिहासिक धरोहरों का सम्मान करना और स्थानीय संस्कृति को समझना, ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम जिस खूबसूरत

मियां को देखने निकलते हैं, उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही खूबसूरत छोड़ना है हमें। ये पर्यटन यानी घूमना हमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, बल्कि हमारी सोच और अनुभवों की दुनिया को भी विस्तृत करता है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में तो पर्यटन का संसार और भी अद्भुत है। कश्मीर की वादियों से लेकर कन्याकुमारी के समुद्र तक, राजस्थान के किलों से लेकर पूर्वोत्तर की हरी भरी पहाड़ियों तक, हर प्रदेश अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए है। इसलिए पर्यटन केवल यात्रा भर नहीं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को अपने भीतर सहेजना भी है।

घूमना फिरना जितना आनंद देता है उतनी ही जिम्मेदारी भी हमसे मांगता है। विश्व में जिस खूबसूरती को हम देखने जाते हैं वहां कूड़ा फैला देना यात्रा नहीं हो सकती। जिन ऐतिहासिक इमारतों को देखने हम जाते हैं उनकी दीवारों पर अपना नाम लिख देना उस विरासत का घोर अपमान है। जिस नदी, झील या समुद्र के किनारे हम सुकून ढूंढने जाते हैं उसे गंदा करना, कूड़ा करकट फेंक देना, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना है। आज जरूरत ऐसे पर्यटन की है जिसमें हम घूमने के साथ साथ प्रकृति, संस्कृति और विरासत का सम्मान भी करें। हर जगह अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर जगह की अपनी बोली है, अपना संगीत है, अपना स्वाद है और अपनी परंपरा है। यही विविधता पर्यटन को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने और समझने का माध्यम भी बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार किसी यात्रा से लौटने के बाद हमें महसूस होता है कि हमने केवल कोई जगह नहीं देखी बल्कि अपने भीतर भी कुछ नया खोजा है।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। आगे भी आतंकवादी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारत

0: भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्री सिंघल ने अपना पूरा जीवन संस्कृति, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया।
1: 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं। मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैंने न केवल उनके उस जीवन को करीब से देखा बल्कि मुझे उनके साथ इस मिशन से जुड़ने का भी अवसर मिला।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस साल की शुरुआत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के साथ की। श्री मोदी ने बताया कि सोमनाथ मंदिर के साथ गुजरात के मोढ़ेरा में सूर्य मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया गया था।
1: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था, उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ। यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1,000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे। राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया। इसी जीवटता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा।
0: श्री मोदी ने लोगों से मोढ़ेरा की गौरवशाली विरासत को देखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती की चर्चा करते हुए कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में नशा मुक्त युवा अभियान हाल ही में शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त युवाओं और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा।
1: युवाओं ने नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। इसमें माय भारत के वॉलंटियर शामिल हैं और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। नशा मुक्ति का संदेश, हमारे युवा खुद इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर का महीना कुपोषण से लड़ाई को समर्पित है।
1: इस पहल के जरिए सस्ते और पौष्टिक स्थानीय खानपान को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। ये मिजो समाज के तलो मडयाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास बेहद सराहनीय है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने पूरी श्रद्धा और उत्साह से गणेश उत्सव मनाया गया। थाईलैंड के पंथौन थीरखानोन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान गणेश के लिए अपार श्रद्धा विदेश में भी है। वहां भगवान गणेश की पूजा का फ्रा फिकानेत के रूप में की जाती है। ये

0: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में देश की पहली एलएनजी चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने अनेक प्रकार की नई सुविधाएं रेलवे में लाए, रेलवे को आधुनिक किया और अब जेएनपीटी मुंबई से वडोदरा तक पहली लॉन्ग होल डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक ट्रायल पूरा हो गया है। देश में माल की आवाजाही के लिए टैक्स कम है, मगर उस वक्त डबल डेकर मालगाड़ी की कल्पना सफल हो जाए तो हमारी वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत भविष्य के लिए अपनी युद्ध क्षमता विकसित कर रहा है। आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश को केवल तकनीक आयात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा तकनीक को विकसित करने का भी प्रयास कर रहा है।
2: पिछले 12 वर्षों में हमारे डिफेंस सेक्टर की न केवल क्षमता बढ़ी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने को लेकर हमारे अप्रोच में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब हमारा ध्यान वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज हम आत्मनिर्भर और फ्यूचर ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की दिशा में भी तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं।
0: थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिए उत्पादन में आत्मनिर्भरता काफी नहीं होगी, बल्कि लंबे संघर्ष की स्थिति में अपनी सैन्य क्षमता बनाए रखना और अनुकूलन क्षमता भी महत्वपूर्ण है। एक रक्षा सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि युद्ध का स्वरूप, तकनीक और अवधि तेजी से बदल रही है, जिसके लिए क्षमता विकास और आत्मनिर्भरता भी तेजी से विकसित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे सरकार का स्टार्टअप अभियान रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रहा है और प्रमुख तकनीकी क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया, जिसने एक जीवंत उद्यमिता संस्कृति की नींव रखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी भागीदारी के लिए नए रास्ते खोले। पिछले दशक में स्टार्टअप्स की संख्या 350 से बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है, जिससे 25 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। बेंगलुरु को भी इस स्टार्टअप इकोसिस्टम से फायदा पहुंचा है। यहां 17,000 से अधिक स्टार्टअप्स का केंद्र है, जो वैश्विक बाजार के लिए उत्पादों का डिजाइन और इंजीनियरिंग कर रहा है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म या सी कैंप भारत का प्रमुख रिसर्च और इनोवेशन हब है और सबसे बड़े लाइफ साइंसेस इंक्यूबेशन में से एक है। इन एक्सेल के सह संस्थापक और निदेशक नीतीश कुमार जहांगीर आकाशवाणी से बात करते हुए सी कैंप और भारत सरकार से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए बताया है।
4: इन एक्सेल में हमारा जो विजन है इस टू मेक श्योर की जो नई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करके कि आप जो PHCs हैं और जो लास्ट माइल हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम नवजात शिशु की जो डेथ रेट है उसको रिड्यूस करें, AI के थ्रू, अदर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कैसे ये गैप को कम से कम करें, मैटरनल मोर्टेलिटी है जो मदर्स की डेथ रेट है और उसको हम कैसे कम करें, ICU में हम और कैसे इम्प्रूवमेंट लाए। इन एक्सेल को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सपोर्ट मिला है।
3: स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न एक सहायक इकोसिस्टम बनाने में मदद कर रहे हैं, जिससे स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न देश अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सके और एक वैश्विक इनोवेशन हब के रूप में उभर सके। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में लगातार हो रही बारिश से आज चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की आशंका है। वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अब पर्यटन रोजगार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और विकास का एक सशक्त आधार भी बन रहा है। श्री शेखावत ने कहा कि देश की समृद्ध विरासत

संस्कृति और प्राकृतिक विविधता देश के लाखों युवाओं के लिए नए अवसरों का स्रोत बननी चाहिए। एशियाई खेलों में आज अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। दोनों खिलाड़ी अपने अपने फाइनल मुकाबले में मलेशियाई खिलाड़ी से हार गए। मुक्केबाज अंकुश पंघाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित किया। वहीं तीरंदाजी में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने रिकर्व और कंपाउंड दोनों स्पर्धाओं के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों की ऊंची कूद में श्रीशंकर मुरली और डेविड फाइनल में पहुंच गए हैं। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में विद्या रामराज और अनु राघवन ने फाइनल में प्रवेश किया। पुरुषों के 400 मीटर बाधा दौड़ में संतोष कुमार भी फाइनल में पहुंच गए हैं। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 32 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। तिरुवनंतपुरम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला जा रहा है। वेस्टइंडीज ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल 2 दिन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। कृषि विभाग आगामी रबी मौसम के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं और तैयारियों पर विचार विमर्श करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में केंद्र और राज्य समन्वय को मजबूत करने और कृषि उत्पादन, उत्पादकता, स्थिरता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्यनीति विकसित करने पर भी वे विचार विमर्श करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज एक दिन के आधिकारिक दौरे पर केरल पहुंचे। वे कोल्लम के अमृतापुरी में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन समारोह में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माता अमृतानंदमयी का पूरा जीवन मानवता के प्रति प्रेम और सेवा के संदेश से परिपूर्ण रहा है। उपराष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ मिलकर नेपाल में बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए माता अमृतानंदमयी मठ की ओर से भारत में नेपाल के राजदूत सुरेंद्र थापा को 2 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में श्री लावरोव ने कहा कि रूस भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्य बनाए जाने का समर्थन करता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने विश्व को भारत की आतंकवाद रोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादी हमलों का वह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त अभियान के लिए लोगों से मिलकर काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने लोगों से जनगणना में शामिल होने और स्वगणना सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के साबरमती में देश की पहली LNG चालित रेलगाड़ी को रवाना किया। उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और एशियाई खेलों में अभय सिंह और अनाहत सिंह ने स्क्वाश सिंगल्स में रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आए दिन बहार की।

0: साथियों, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर को इस गीत में, जिसे लिखा था SH बिहारी ने। संगीत था ओपी नैयर का और फिल्म का नाम था कहीं दिन कहीं रात।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, आइए अब सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है आई दिन बहार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है अनमोल मोती।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत

0: सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शिवान रिजवी, संगीत है ओपी नैयर का और फिल्म का नाम है दिल और मोहब्बत।

साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, संगीत है रवि का, इस गीत में आवाज है महेंद्र कपूर की और फिल्म का नाम है हमराज।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है भरोसा।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमिला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर, पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर, अमर तामकर, दिलीप वर्मा, राजू तामकर, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना मोना हनी यश सौम्या और मम्मी पापा, नागपुर महाराष्ट्र से

नायक भामरे, गणेश भामरे और पार्थ भामरे। गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह, रुपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, नीरज और जश्न। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा, लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देवबर्मन, फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दश

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचेतुम, सोनू और मोनू, दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम, पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुजतबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबेदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालेगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत। मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यों रे प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी?
5: अब क्या है
4: रमेश बाबू? आप लोगन के बहुत हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन जन्म के दुश्मनी निकारे सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
5: तू मेरे घाव क्यों खुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
4: अरे आपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
5: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
4: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होते बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती। बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ाए रही है।
5: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
4: मुझे इतना टेम कहाँ जो गप्पे मारूं, चलती हूँ। राम राम।
5: अपना खून? इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी मैंने ये जुआ खेल डाला।

0: फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
1: ललिता, इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
0: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
1: इसमें तुम्हारा क्या कसूर? भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
0: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
1: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
0: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती। उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
1: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी ना माने तो अभागा।
0: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
1: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
0: बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ।
1: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
2: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
1: ये बिहारी बाबू का घर है।
2: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइड ठीक नहीं दिखती।
1: आपको किसकी शादी करनी है?
2: अपनी?
1: हा?
2: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए।
1: ठीक है ठीक है।
2: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
1: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता, देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
2: शगुन नहीं, बांकेलाल, बांकेलाल। मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
0: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं? तब तो बात बन गई।
2: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
1: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
2: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
1: क्या आपकी माँ बीमार है?
2: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पाप फटक सकती है। हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
0: हाँ सो तो है। बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
2: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो।
1: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। खाते पीते घर के हैं बाके बाबू।
2: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला? पर माँ कहती है शादी कर ले।
0: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या करना पड़ेगा?
2: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहना कर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो बहला दूंगा। हाँ, बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस। बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं।
1: अरे, अरे उसकी चिंता न करिए, उतना

0: जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
1: अभी कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
0: ललिता एक फोटो तो दे दो।
1: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
0: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
2: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
3: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है समय का सही उपयोग करना चाहिए।
2: कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं।
3: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
2: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
3: यही सही समय है।
2: कैसा समय?
3: उम्र के दौर का

0: का सही उपयोग करना चाहिए।
1: कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं।
0: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
1: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
0: यही सही समय है।
1: कैसा समय?
0: उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
1: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था। शायद बी ग्रुप है।
0: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
1: कभी होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
0: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
2: प्यारी, चाय दे जा।
0: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
1: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
0: आखिर क्यों?
1: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है। आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
2: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
1: प्यारी तो चुप रहे। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं। जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं?
0: अच्छा लीजिए, चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
1: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनीमिक हूँ।
0: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनीमिक नहीं है? इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
1: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको? इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूँ।
0: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी?
1: शायद अब वो समय नहीं है।
0: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
1: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
0: इतने रुपए थे, भैया भी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था?
1: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
0: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
1: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई। बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
0: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
1: मगर कौन समझता है इस बात को? 3 जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
2: बीवी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को।
0: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
1: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
0: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौध के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौध के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौध के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
1: पूरी जिंदगी जीने के लिए

0: स्वीकार लूं फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। नथ पहनने के लिए मेरी बंदनाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
1: बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
0: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
1: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
2: बीवी जी, हाँ? जी बाहर पर ले आऊं गर्मा गर्म चाय?
1: अरे चाय ही नहीं, मिठाई। अभी जा फौरन।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं, अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
0: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्प ही पुष्प बिखर रहे हैं।
1: हाँ, इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। अभी तारों को पाने के लिए तो ऊपर उड़ेगी, मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
0: क्या हुआ, सुन रही है बाहर शोर? कैसा शोर है ये?
1: शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
0: यही है मेरे सपनों का राजकुमार? घर में आई नववधु का भी उसका ख्याल नहीं?
1: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
0: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बन चुकी है।
1: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्म है। पति कैसा भी हो, इस डोर में बंधने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा।
0: तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों?
1: क्यों नहीं?
0: ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
1: ना ना ना ना ना, ऐसा नहीं है, ताकि वह वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
0: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
1: हाँ, हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
0: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ।
1: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
0: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
1: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना,
0: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की तरह चतुर। देख, तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई।
2: कौन जो आ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ, पास आओ। ये सिर क्यों नहीं रखता है?
0: नहीं, मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर ये जरूर है कि मेरा खून सुंदर है।
2: खून? अरे खून तो सभी का एक जैसा होता है, सुंदर चेहरा होना चाहिए।
0: वो ठीक कह रहे थे, इसी समय मुझे नटखट लड़की हो जाना चाहिए, रहस्यमय। नहीं, मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
2: नहीं होगी तो मैं ही आ जाता।
0: ना ना, मैं बीच में ये तकिया रखे देती हूँ।
2: ऐसा क्यों करती हो?
0: ताकि आप अपनी सीमा जान लें और मैं अपनी
2: सीमा।

0: अब क्या करूं?
1: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
0: रानी तुम क्या कर
1: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
0: वो बच्चे अब क्या कर रही हो?
1: अब वेणी में फूल गूंथ रही हूँ।
0: मैं तो खाली हाथ आया
1: ये फूल बसंत ने दिया। बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
0: की तरह सुंदर तो
1: बढ़ रही है, मैं रति हो गई हूँ।
0: सुंदर
1: मगर
0: मैं तो
1: दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए। जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
0: क्या देखो तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
1: उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं।
0: सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा, तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिल ही जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो, मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहां क्या करेंगे?
0: अरे, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज गोद भराई होनी है ना, मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे बच्चे को किसी को देने वाले?
2: बांकी बाबू आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट पसंद आया, और ये साड़ी। अरे नीमा बीबी कहाँ गई?
3: आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
2: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है।

0: नीमा बीबी, नीमा बीबी,
1: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कित्तों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूँ, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहाँ, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी,
0: अरे नीमा बीबी तो बदहवास पड़ी हैं। बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
1: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
0: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
1: नहीं नहीं भाभी, आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बंटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
2: मैं चलूं तुम्हारे साथ?
1: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा परी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी।
1: हाँ, नहीं तोड़ सकी।
0: डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई?
1: कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है।
0: फिर गलत क्या है?
1: क्यों बतलाऊं, तुम हो कौन?
0: नहीं पहचाना?
1: मैं तो सुहागरात के दिन भी तुम्हारे साथ थी,
0: मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है?
1: अब भी नहीं पहचाना?
0: मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ।
1: फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे।
0: जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न?
1: तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
0: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
1: तब अपने बैग से कागज निकालो और लिखो।
0: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
1: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो।
0: लिखो,
1: मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
0: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा?
1: वो
0: सामने लेटर बॉक्स में डाल दो। फिर क्या होगा?
1: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
0: मुक्ति?
1: हाँ,
0: मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए
1: जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है,
0: जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है।
2: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। ये हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी।

0: इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: एक विलक्षण गायक
3: अरे ओरे है।
2: संगीत के साधक
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। उत्तम जी बहुत बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में।
2: नमस्कार यूनुस जी, नमस्कार टू ऑल जो उजाला सुन रहे हैं।
0: मदन जी के साथ बहुत सारी यादें आपकी हैं संगीत बनाने की और रिकॉर्डिंग्स की, तो कुछ सुनहरी यादें हमारे साथ शेयर।
2: रिकॉर्डिंग की उनकी मुझे एक आज भी याद है। मैं पहुंचा रिकॉर्डिंग में और देख रहा हूं कि एक आवाज आ रही है सिंगर की।
0: अच्छा,
2: कोई गा रहा है और वो भी क्लासिकल फील है पूरी। तो हमारी हिम्मत नहीं हुई तो मैं थोड़ा सा चुपके देखा तो मदन जी गा रहे हैं बाजा पकड़ के।
0: खुद ही गा रहे हैं?
2: खुद ही गा रहे।
0: गाना कौन सा था?
2: गाना नहीं, ऐसी आलाप गा रहे थे, क्लासिकल गा रहे थे।
0: जी जी।
2: और उनकी रिकॉर्डिंग थी। तो कुछ एक डेढ़ घंटे के बाद पता चला कि खंडाला में उनका एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी में आए थे

0: गाड़ी में आए थे और आके जल्दी पहुंच गए और अपने खून आया हुआ उनको उसमें अपने आप को ठीक करने के लिए वो संगीत का सहारा लिया।
1: ये घटना मुझे पता है, मदन जी के जब बेटे समीर कोहली जी आए थे विविध भारती, उन्होंने सुनाया था कि वो ट्रक से वापस लौट रहे थे क्योंकि गाड़ी जो है वो तबाह हो गई
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हमको बाद में पता चली
1: जी।
0: बट वो जो गायकी थी वो क्या फील था उसमें, हा हा हा।
1: तो वो जो पूरा वो एक्सीडेंट की बदहवासी और वो
0: सारी उन्होंने वहां निकाली,
1: गजब की बात है। ये तो
0: सारी संगीत के दौरान उन्होंने गाया बजाया, तो उससे क्या होगा कि सारा जितना भी बैकलैश था ना वो सारा खत्म हो गया,
1: खत्म हो गया।
0: नाउ ही इनटू म्यूजिक,
1: गजब की बात है।
0: देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रेमेडी है।
1: हाँ,
0: आज डॉक्टर्स इंजीनियर सब म्यूजिक सीख रहे हैं ताकि हमको ईज मिले, हमको सुकून मिले, हमको स्ट्रेस फ्री हो।
1: हाँ,
0: ये कितना बड़ा एक एजुकेशन है कि वो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी से ट्रक में बैठ के आया और स्टूडियो में आया और उन्होंने आते ही उन्होंने बाजा पकड़ा एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग। मुझे लगता है शायद 1.5 घंटा गा रहे थे वो।
1: बाप रे,
0: जब हम पहुंचे तो आवाज चल रही थी, गा रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग की, कौन सा गाना मुझे याद नहीं लेकिन रिकॉर्डिंग की।
1: जहां तक मुझे लगता है रुके रुके से कदम वो गाना था, वो गाना यहाँ सुन लेते
0: हमारे कदम रुकी गए थे उनकी आवाज सुन के।
1: क्या बात है।

0: मदन जी की यादें और भी शेयर की जाएं और मदन जी से जुड़ी कुछ और बातें हमारे साथ बांटिए, म्यूजिक रूम की बातें, रिकॉर्डिंग की बातें।
1: म्यूजिक रूम में मैं उनके कभी नहीं गया
0: जी।
1: म्यूजिक रूम में एक दफा उनके साथ मैं गया था, मास्टर जी के साथ,
0: सोनिक साहब के साथ।
1: हाँ, सोनिक साहब सावन भातों का बैकग्राउंड कर रहे थे उनकी।
0: अच्छा।
1: अपनी फिल्म का।
0: हाँ।
1: तो मुझे बोलते उत्तम यहाँ मदन आप मदन जी का चलते वहां चल के बैठेंगे। तो मदन जी का पियानो था वो। दूसरी दफा मैंने उनका म्यूजिक रूम देखा। पहली दफा जब मैं सुनाने गया था वायलिन
0: जी,
1: दूसरी दफा ये मैं मास्टर के साथ अरेंजमेंट करता था
0: तब
1: उनका लिखता था। तब हम लोग ऐसे 3-4 दिन उनके म्यूजिक रूम में गए, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक लिखा। बस मेरी मदन साहब की ये यादें हैं। हाँ, एंड की जो याद है, लास्ट की, उनका गाना चल रहा था मौसम का गाना, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: दिल ढूंढता है गाना अरेंजमेंट किया ज्ञान वर्मा ने। ज्ञान वर्मा को कोई और रिकॉर्डिंग नहीं थी तो मुझे बोला उत्तम तू कंडक्ट कर ले।
0: तो इस गाने की रिकॉर्डिंग को आपने कंडक्ट किया?
1: इस गाने की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है वो कंडक्टिंग मैंने की, म्यूजिक सारा उसका था।
0: अच्छा।
1: तो जब मैं कंडक्ट कर रहा था तो सामने मदन साहब बैठे हुए थे, मदन साहब, कौशिक साहब सब बैठे थे, भूपी जी गा रहे थे। तो मुझे इतना याद है कि वो गाना खत्म होते होते तक उनका सर जो है वो टेबल पे लगा हुआ था,
0: पैनल की टेबल।
1: ही डजंट रिमेम्बर कि गाना खत्म हो गया।
0: अरे बाप रे।
1: ही वाज सो ड्रंक कह दो या आई डोंट नो व्हाट स्टेट ऑफ माइंड ही वाज। वो पूरे ऐसे बैठ गए। बाद में गाना हम लोगों ने पास किया।
0: अच्छा।
1: भूपी जी ने और कौशिक साहब ने और मैंने, हम लोगों ने गाना सुना, ये टेक ओके है, ही डजंट वांट एनीथिंग, इट वाज सो पैथेटिक।
0: ये दौर जो है वो निराशा का, बीमारी का,
1: लेकिन
0: तमाम चीजों का
1: गाना दे गए, दिल ढूंढता है
0: जी।
1: तो जी देखिए वो गाना

0: वही पोएट्री है, उसको एक सैड और एक, और ये इसका बहुत चर्चा हुआ था इंडस्ट्री में
1: जी, एक ही गाने
0: हमको
1: की।
0: याद है कि अरे यार मदन जी का क्या गाना आया, सैड भी है और हैप्पी भी है, बहुत चर्चा हुआ था इस गाने पे।
1: क्या प्यारी बात है,
0: हाँ,
1: वाह वाह वाह।
0: और ये गाना जो है सैड वाला, ये मैं कंडक्ट कर रहा था, ये फिल्म सेंटर का गाना है
1: जी,
0: और 60-70 म्यूजिशियन थे, बहुत अच्छा ज्ञान ने, बहुत अच्छा म्यूजिक
1: इसमें
0: ऑर्केस्ट्रा।
1: एक मेटल फ्लूट सुनाई देती है
0: हाँ, वो की फ्लूट है, वो
1: जी।
0: उसकी मुरली जी ने बजाया है,
1: वाह
0: जो
1: वाह वाह,
0: सैक्सोफोन के बहुत
1: क्या बात है।
0: मुरली सिंह करके,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: पंचम जी के असिस्टेंट भी थे,
1: बिल्कुल।
0: और हमने साथ में बहुत काम किया उनके साथ।
1: मुरारी दादा को मैं विविध भारतीय लेके आया था और इनसे बहुत
0: हाँ
1: लंबी बातें रिकॉर्ड की
0: हाँ
1: थी
0: वो मतलब ऐसी फ्लूट फिर इंडस्ट्री में बजी नहीं,
1: जी,
0: वो
1: बिल्कुल।
0: उनसे शुरू हुई, उनपे खत्म हो गई,
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है
0: हुआ
1: जी।

0: मदन जी की कुछ और यादें हैं।
1: मदन साहब की एक बात मुझे आज भी याद है। रोशन जी गुजरे थे
0: जी, अचानक उनका निधन हो गया था।
1: अचानक निधन हो गया, हंसते हंसते
0: एक पार्टी में थे वो,
1: तो शायद दूसरे दिन सुबह का टाइम था, उनकी बॉडी को ले जाना था डरियश, तो मदन जी लेफ्ट उनकी बॉडी के बिल्कुल सर के पास बैठे हुए थे
0: जी जी
1: मदन जी, और हम लोग यहां, मैं था और काफी लोग खड़े हुए थे,
0: इंडस्ट्री के लोग
1: खड़े हुए, मैं बिल्कुल नजदीक खड़ा था। मदन साहब यहां लिटरली गालियां दे रहे थे रोशन जी को।
0: अरे बाप रे,
1: लिटरली गाली, मैं यानी गाली नहीं बता सकता
0: जी,
1: लिटरली माँ की गाली दी, लिटरली बहन की गाली दी, और कहा कि रोशन तू तो छोड़ के चले गया, अब मैं जवाब किसको दूंगा।
0: अरे बाप रे, अरे गजब,
1: आप सोचिए क्या भाव है,
0: क्या भाव है कि अब मैं जवाब,
1: डेड बॉडी पड़ी हुई है, रो रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बोल रहे हैं कि सारे तू चले गया, तू चले गया, मैं जवाब किसको दूंगा अभी,
0: किसके लिए म्यूजिक
1: बनाऊंगा।
0: अद्भुत बात है
1: ये, मुझे आज भी याद।

0: और कुछ 15-20 साल 25 साल के बाद में हमारा एक सोनिक साहब का छोटा भाई राज सोनिक जो मेरे यहाँ काम करता था, लास्ट तक मेरे साथ काम किया, हमारी कुछ बात नहीं, तो बोला मैं तो आपके बाजू में खड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बात सही है? उन्होंने गालियां, बोले गालियां इतनी गालियां दे रहे थे हम सोच नहीं सकते। मतलब मदन जी को ये पता ही नहीं कि लोग बैठे हुए यहाँ पे एंड इज एब्यूजिंग हिम।
1: लेकिन वो इतने जज्बाती हो गए थे,
0: जज्बाती हो गए थे, इतना प्यार था, एक आत्मा का जिसको प्यार कहते हैं
1: वो था।
0: सारे तू तो चले गया, किसको जवाब दो?
1: क्या दौर था, क्या लोग थे,
0: जैसे संगीत ही चले गया हो ना, ऐसा हो गया ना
1: जी।
0: क्योंकि उस दौरान में बहुत रिस्पेक्ट थी एक दूसरे की। अगर आपने एक अच्छा गाना लिख दिया तो आपको लिखने वालों के 15 फोन आ जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: एक साहिद साहब ने अच्छा गाना लिख दिया तो मजूर साहब भी फोन कर रहे हैं, आनंद बख्श भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है, तो वो भी फोन कर रहा है। तो आज अगर आप अच्छा कुछ करते हो तो उसको खत्म कैसे किया जाए ये सोचा जाता है।
1: जी
0: ये दौर में फर्क हो गया।
1: जी जी।
0: वो दौर था प्यार का, अब दौर है दुश्मनी का।
1: जी जी जी।
0: कि दुश्मनी कैसे की जाए।
1: आपने मदन जी का जिक्र किया और उसके बाद रोशन साहब का जिक्र आया, उनसे भी आपका एक नाता रहा है, उनसे जुड़ी यादें शेयर कीजिए।
0: बड़ी खूबसूरत, हम लोग पहली रिकॉर्डिंग बजाने गए, कुछ 7-8 बच्चे लोग थे।
1: अच्छा।
0: उन्होंने बुला लिया और मुझे याद है कि श्याम राव जी और भूपी जी और केरसी जी,
1: ये म्यूजिशियंस थे,
0: ये उनके अरेंजर थे।
1: अच्छा।
0: ये उनके सलाहकार थे केरसी और श्याम राव, भूपी जी तो दोस्त थे उनके। तो हम लोग पहुंचे, पूरा रेसल वेसल हो गया 10:15 बजे।
1: जी।
0: छोटा सा आदमी आता है 4.5 फुट का, रोशन जी आ गए।
1: वो छोटे कद के थे,
0: पहली दफा देखा उनको।
1: जी।
0: तो आते ही किसी से कुछ कोई बात नहीं, सीधा ऐसे आए अंदर, ऐसे जैसे वो मैडम बैठी है ऐसे अंदर चले गए।
1: जी।
0: अंदर से माइक्रोफोन ऑन करके बोलते हाँ म्यूजिक सुनाओ। अभी म्यूजिक सुनाओ, अभी जब तक केसी जी 1-2 नहीं बोलेंगे हम तो बजा ही नहीं सकते, हम सब बैठे हुए, आवाज आ रही है कि म्यूजिक सुनाओ। तो केसी चुप, श्यामराव भी चुप, भोपी भी चुप, हम सब चुप बैठे, कम से कम 60-70-80 म्यूजिशियन तो होंगे। फिर अंदर से अरे म्यूजिक क्यों नहीं बजाते, म्यूजिक सुनाओ, केसी श्यामराव म्यूजिक सुनाओ, फिर चुप।
1: अरे
0: ये मैं हम सोच रही है नए बच्चे है कि ये क्या हो रहा है, म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा है म्यूजिक सुनाओ और हम सब चुप बैठे, वो म्यूजिक रेडी है। केसी बोलते ऐसे थोड़ी ना सुनाएंगे। हाँ तो फिर कैसे सुनाओगे, पहले अपने प्यार से बोलिए तो सही। अभी प्यार कौन सा, अंदर से माँ बहन की कहानी शुरू हो गई। अरे हम तो हैरान हो गए, मैं कहा यार ये कौन सा प्यार है यार, वहां की वहां गाली म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, ये म्यूजिक सुनाओ, अब सुनाओ के अब सब तालियां बजाएं, अब सुनाएंगे म्यूजिक, और उसके बाद म्यूजिक शुरू
1: हुआ। ये प्यार था, ये
0: म्यूजिक शुरू हुआ। आशा जी थी या पता नहीं कौन था, आशा जी आई, रिहर्सल किया, 2-2.5 घंटे 3 घंटे में गाना खत्म।
1: वाह वाह वाह वाह,
0: ये पहली याद थी उनके साथ।
1: क्या बात है,
0: ऐसा एटमोसफियर, आप सोचो कि वो म्यूजिशियन कह रहा है पहले हमको गालियां दो
1: तब बजाएंगे,
0: तब हम बजाएंगे।
1: गजब गजब।
0: तो ये एटमोसफियर था
1: जी। उनके साथ आपने कुछ गाने बजाए?
0: गाने बजाए लेकिन कुछ याद नहीं कौन कौन से गाने बजाए।
1: अच्छा।
0: याद नहीं।
1: SD बर्मन,
0: अरे बर्मन दादा तो, अरे बाप रे,
1: उनकी यादें बांटी है।
0: बर्मन साहब का तो बजा ही रहते क्योंकि सेम ग्रुप था।
1: जी जी।
0: पंचम जी का इतना मुझे याद है कि महबूब में रिकॉर्डिंग थी और देव साहब की फिल्म थी।
1: हाँ।
0: शायद गाइड होगी।
1: ओके।
0: तो हम लोग बजा रहे थे, रिहर्सल होगी तो बर्मन साहब ने कुछ मलोरी जी को पीस बताया। बीच में खड़े होके, महबूब स्टूडियो की बात है, पीस बताया उन्होंने, तो उन्होंने वो पीस बताया और मैंने वो यहाँ से वो पीस बजा दिया।
1: अरे गजब।
0: तो ऐसे मुड़ के देखा, मुरली को पूछते बंगाली में कौन बजाया, बोले वो लड़का, फिर से बोलो बजाने के लिए, तो मैंने फिर से बजा दिया। तो मुरली को बोलते सबको बोलो ऐसा बजाने के लिए।
1: अरे बाप रे,
0: जैसा उत्तम बजा रहा है।
1: गजब।
0: यूनुस जी, मैं बैठा था 2nd या 3rd रो में, 2nd डे सबको ऑर्डर हुआ कि सेंटर का

0: जो पहला बीच की कुर्सी है वो उत्तम की होगी।
1: ओ
0: दादा ने मुझे प्रमोट कर दिया।
1: वाह,
0: मैं थर्ड रो से फर्स्ट रो में आ गया।
1: वाह वाह वाह, एक महान संगीतकार थे वो और अपनी धुन के पक्के,
0: बहुत जबरदस्त।
1: कुछ और घटना याद आती?
0: और एक टाइम ऐसा आया कि जब बासु मुरारी ने छोड़ दिया था
1: जी,
0: तो यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा जो आम तौर पे कोई नहीं करता, बट मेरे से होती चली गई।
1: अच्छा,
0: क्यों हुई मुझे नहीं पता, बट मेरे से ये चीज होती चली गई जो कोई नहीं करेगा, किसी ने की नहीं होगी और आगे भी कोई नहीं करेगा, जो ये मेरे से होती चली गई, मैंने नहीं किया, होती चली गई।
1: जी,
0: बर्मन साहब ने मुझे बुलाया काम के लिए, अरेंजमेंट के लिए।
1: अच्छा,
0: हाँ, कि मेरे साथ काम करो। तो मैं गया, बैठा, उत्तम बासु मुरो तो छोड़ के चले गया। मैंने कहा हाँ दादा, वो तो पता चला, वो तो वहां बैठे हैं मद्रास में, तो हमको गान करना है इसका, गोल्डी का, बहुत इमीडिएटली गान करना है, तुम करो। मैं बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, क्या क्या सोच रहे हो? मैं कहा दादा आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तुम हमको ना बोलता है? मैं कहा दादा आपको ना नहीं बोल रहा। फिर मैं दादा मेरा एक प्रिंसिपल है कि जो जिसके अंडर में मैंने काम किया हो वो कुर्सी मैं कभी नहीं लेता। मैंने कहा आपके साथ बहुत बजाया है, बासु मुरारी काम कर रहे थे, अब आप उनकी कुर्सी मुझे दे रहे हो। मैं कहा दादा नहीं कर पाऊंगा। यूनुस कैन यू बिलीव इट, वो आदमी उठा, दादा उठे और मेरे कंधे पे एक हाथ रखा।
1: जी,
0: एक शाबाशी का एक हाथ रखना होता है, एक फील होती है उसमें।
1: जी जी,
0: खूब भालो खूब भालो
1: खूब भालो
0: खूब भालो। मैं चला गया।
1: आपने किसी म्यूजिशियन की जगह नहीं ली? लेकिन
0: मैंने किसी अरेंजर की जगह नहीं ली।
1: जी,
0: मेरे को सबका ऑफर आया।
1: जी,
0: कल्याण जी का ऑफर आया, पप्पी लहरी का ऑफर आया, अनु मेलक मेरे पीछे, शंकर किशन का ऑफर आया, आर्ट डिपार्टमेंट का बाद में जब वासुदा चले गए तो मुझे ऑफर आया, कभी मैंने कहा। मदन जी का ऑफर आया मुझे।
1: जी जी,
0: मैंने कभी नहीं लिया।
1: सिर्फ इसलिए कि आपको किसी दूसरे,
0: मैं उनके अंडर में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कैसे जाऊँ?
1: जी,
0: एज ए म्यूजिशियन चले जाऊंगा, म्यूजिशियन ठीक है, बट एज ए अरेंजर में नहीं लिया मैंने आज तक, किसी की जगह नहीं ली।
1: क्या बात है,
0: कभी नहीं।
1: लेकिन एज ए म्यूजिशियन आप बजाते रहे?
0: एज ए म्यूजिशियन बजाते,
1: दादा के लिए भी बजाते?
0: हाँ हाँ, दादा के लिए। लेकिन बाद में फिर वो ग्रुप पूरा चेंज हो गया था
1: जी,
0: फिर वो अनिल अरुण आ गए थे।
1: हाँ हाँ,
0: तो फिर वो ग्रुप पूरा फिर जा ही नहीं सके, बजा ही नहीं सके, उनके हैंड में तो बिल्कुल नहीं बजा सका।

कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा मुसाफिर।

0: ये पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा।
1: उत्तम जी देखिए, नौशाद साहब की, मदन मोहन की हमने बातें की, हमने रोशन साहब की बातें की, एसडी बर्मन की बातें की, और कौन से म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जिनकी बातें करनी जरूरी है।
2: देखिए जी, मैंने तो सब क्या बजाया है, कोई ऐसा संगीतकार नहीं था 1962 के बाद
1: जी,
2: चाहे वो श्री रामचंद्र साहब हो, चित्रगुप्त जी हो।
1: चित्रगुप्त जी क्या अभी बजाया?
2: हाँ,
1: और अन्ना क्या अभी बजाया?
2: अन्ना क्या तो एक किस्सा है, बहुत संगीतमयी किस्सा है वो।
1: बताइए।
2: वो किस्सा जरूरी है आज के लोगों के लिए, वो किस्सा सुनना बहुत जरूरी है। एक तो क्या, अन्ना बहुत स्ट्रिक्ट थे। अगर 70-80 म्यूजिशियन बैठा हुआ है और अन्ना की एंट्री हो गई तो सब सैलेंट हो गए।
1: अच्छा।
2: हाँ, फिर आप अगर एक सुई भी फेंकोगे तो उसकी भी आवाज आएगी, इतना डिसिप्लिन था। और अन्ना का क्या था कि अन्ना ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, हम उसके मुलाजिम है, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम उनके म्यूजिशियन है, रिकॉर्डिंग के बाद वो हमारे दोस्त है।
1: वाह वाह वाह, पूरा मूड बदल जाएगा।
2: ये उनका फर्क था। और रिकॉर्डिंग के बाद ये वही अन्ना है कि आप कोई सोच भी नहीं सकते
1: जी।
2: तो हम लोग रिकॉर्डिंग बजा रहे थे
1: जी,
2: और अच्छा गाना, मुझे गाना याद नहीं है, अच्छा गाना था, रिहर्सल विहर्सल किया, गाना रिहर्सल हो गई, रफी साहब आए, रफी साहब ने रिहर्सल किया, अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो अंदर से शर्मा जी की आवाज आई, अन्ना की आवाज आई, जॉनी चलो टेक शुरू करते हैं, जॉनी गोम्स उनके असिस्टेंट थे, ओके सर, 1-2 दिया उन्होंने, म्यूजिक शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, पकड़ा गया, म्यूजिक बन गया, अंतरा शुरू और अंतरा चल रहा है, अंतर के बाद जहां क्रॉस आया
1: जी,
2: क्रॉस शुरू और अंदर से कट हुआ,
1: अरे रे,
2: आवाज आई कट कट, कुछ पता नहीं क्या है, क्यों कट हुआ, एक टेक कट हो गई, सेम जगह में दूसरी टेक कट हुई,
1: क्रॉस भी
2: कट हुई, तो अंदर से आवाज आई। अगर उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे जब अंदर से बोलते थे तो म्यूजिशियन भी सुना करते थे और सिंगर भी सुना करते थे
1: जी जी,
2: क्योंकि सिस्टम ऐसा था। अभी हम सब शांत, 70-80 म्यूजिशियन शांत बैठा हुआ है, हुआ क्या है? अभी अन्ना बोल रहे हैं, रफी साहब आप मोहम्मद रफी हो, आप सबके मोहम्मद रफी हो, आपको कौन नहीं जानता, आपको कौन नहीं सुनता, लेकिन क्या है, ये गाना श्री रामचंद्र का है, अगर आप श्री रामचंद्र को नहीं गाओगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा ये श्री रामचंद्र का गाना है। चुप रफी साहब, आप जो क्रॉस गा रहे हो ना, ये शंकर जयकिशन की जगह है, मेरी जगह ये है।
1: गजब,
2: उन्होंने अपनी जगह गा के सुनाई, मेरी जगह ये है, ये श्री रामचंद्र की जगह है, वो शंकर जयकिशन की जगह है, और आपको

0: श्री रामचंद्र की जगह गाना है।
1: रफी साहब सॉरी सॉरी अन्ना सॉरी अन्ना सॉरी अन्ना, नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात।
2: फिर से शुरू हुआ,
1: शुरू हुआ, डेक खत्म हो गया।
2: वाह, इसलिए ये बार बार अड़चन आ रही थी।
1: ओके हो गया। एक छोटी सी जगह थी, बोले वो शंकर जी किशन की जगह है, ये मेरी जगह है।
2: गाना याद है?
1: नहीं गाना वही तो प्रॉब्लम ये है ना, उस टाइम इतना काम करते थे, सुबह अलग दोपहर को अलग, जैसे अभी यहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं, दूसरा इंटरव्यू तीसरा इंटरव्यू चौथा इंटरव्यू, कहाँ याद रहेगा क्या क्या बोला।
2: जी जी जी,
1: ऐसी हमारी हालत थी
2: जी।
1: सुबह मदन साहब का बजा रहे हैं, दोपहर को श्री रामचंद्र का बजा रहे हैं, रात को जिंगल कर रहे हैं, सुबह 7 बजे फिर जिंगल कर रहे हैं, फिर शंकर जयशंकर का बजा रहे हैं, तो ये हालत
2: लगातार भागदौड़ होती थी।
1: लगातार भाग।
2: उत्तम जी बहुत भागदौड़ चल रही थी, अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ बजा रहे थे, फेलो म्यूजिशियंस के साथ किस तरह के रिश्ते थे, जैसे केरसी दादा से, बजी दादा से, मनोहरी दादा से,
1: ये सब लोग जी। ये तो ऐसा था ना, ये आप सोचिए कि जब मेरी शादी हुई तो मैं शायद 7 या 8 घंटे या 6 घंटे वाइफ के साथ पास रहता था घर में, बाकी तो सब इनके साथ ही रहता था
2: जी।
1: तो केरसी जी, भूपी जी, मनोहरी जी और उसके बाद भज्जी, ये सब लोग तो मतलब आप सोचो 16-16 घंटे हम साथ में थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वक्त इन लोगों के साथ बीता,
1: ज्यादा गुजरी जो लाइफ है वो इनके साथ ही गुजरी है।
2: तो आपके सबसे पक्के दोस्तों में से कौन थे? इनमें
1: पक्के दोस्तों में भज्जी था।
2: अच्छा,
1: भज्जी एक वकील थे, म्यूजिशियन थे।
2: हाँ,
1: वो भी गुजर गया अभी। भज्जी, वकील, भूपी जी,
2: भूपिंदर सिंह जी, जो बहुत बड़े गायक भी थे और गिटारिस्ट थे,
1: और केरसी जी।
2: जी,
1: ये हम लोग काफी अच्छा ग्रुप था, रात को साथ में बैठना
2: जी,
1: और मैंने सबको छोड़ना क्योंकि मैं नहीं पीता था
2: जी,
1: लेकिन ड्राइवर इनका मैं था, गाड़ी भी मेरी, ड्राइवर भी मैं, और छोड़ना भी इनको।
2: तो पार्टियां वो लोग करेंगे,
1: पार्टियां वो लोग करेंगे क्योंकि सब दोस्त थे, लेकिन छोड़ूंगा सबको मैं घर में।
2: इन सब में सबसे बदमाश कौन थे?
1: बदमाश तो सारे थे। सारे बदमाश थे
2: जी जी।
1: म्यूजिशियन जो है ना
2: जी,
1: एक्चुअली बदमाश होता है।
2: अच्छा,
1: हाँ, क्योंकि
2: आप आपकी भी थी बदमाशियां?
1: हाँ, नहीं नहीं, हमारी बदमाशी भी क्या है, म्यूजिक में निकलती थी।
2: अच्छा,
1: म्यूजिशियन जो है वो स्मार्ट होता है
2: जी,
1: क्योंकि उसको जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो वो बहुत माइन्यूट काम करना पड़ता है।
2: बिल्कुल,
1: एक एक सुर को पकड़ना और सुर में लाना और सुर में बजाना, ये एक आत्माई ढांचा है कि जब तक अगर आपके पास आत्मा नहीं है। इलाराजा साहब ने बहुत बड़ी बात कही है कि म्यूजिशियंस आर बॉर्न नॉट मेड।
2: वाह वाह वाह, पैदा होते हैं, बनाए नहीं जा सकते। इलाराजा का जिक्र निकल गया, मुझे ये पता है कि आपने सिर्फ मुंबई के फिल्म जगत में ही काम नहीं किया बल्कि आपने साउथ में भी बहुत सारा काम किया है।
1: जी, मैंने, राजा मुझे लेके गए साउथ में अपनी फिल्म के लिए
2: जी,
1: और मैंने राजा साहब के कुछ 600 फिल्में का गाना मिक्सिंग मैंने की है।
2: 600 फिल्में, तो जीवन भर का काम होता है ये तो।
1: हाँ, बट वो तो 35 फिल्में एक साल में करते थे। ऐसा डायरेक्टर पैदा नहीं होगा।
2: तो आपने बहुत वक्त मद्रास में भी बिताया?
1: मेरा एक पांव मद्रास में, एक पांव बॉम्बे में।
2: तो वहाँ आप बतौर अरेंजर होते थे?
1: जैसे अभी मैंने बताया मिक्सिंग, मैं मिक्सिंग करता था
2: आई,
1: और कभी कभी उनके बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो कंडक्ट करता था, कभी कोई सोलो होता तो सोलो भी बजाता था।
2: वाह,
1: और हम साथ में ही खाना खाते थे, साथ में चलते थे।
2: लैंग्वेज की प्रॉब्लम?
1: कुछ नहीं, म्यूजिकल लैंग्वेज।
2: क्या बात है, इलैयाराजा की म्यूजिक में बहुत लेयर्स होती हैं, बहुत इंट्रिकेट काम होता है।
1: बहुत।
2: तो कुछ यादें बताइए।
1: मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी भी संगीतकार को बुरा नहीं लगना चाहिए, उनसे बड़ा म्यूजिक कोई नहीं है।
2: क्या बात है,
1: इसलिए हर आदमी अपनी अपनी जगह है
2: जी,
1: बट ही इज द मैन हु नोज अबाउट म्यूजिक फ्रॉम A to Z।
2: वाह,
1: लिखना खुद, पढ़ना खुद, कंपोज खुद करना, एक एक म्यूजिशियंस को क्या बजवाना है ये ही नोज।
2: वाह,
1: तो ये मोस्ट लर्नेड, हमारे यहाँ के जो संगीतकार थे बहुत बड़े बड़े संगीतकार, उनका कोई जगह ही नहीं, जैसे मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, बर्मन साहब, आरडी बर्मन, सी रामचंदर, शंकर जय किशन, इनको चाहिए एक सहारा लिखने वाला, एक नोटेशन लिखने वाला चाहिए, और ऑर्केस्ट्रेटर चाहिए जो ऑब्लिगेटो बनाए, जो कॉर्ड डाले
2: जी,
1: वहां पे अरेंजर की जगह है
2: जी,
1: जैसे मैंने किया, जैसे मैंने अरेंजमेंट किए तो मेरी एक जगह थी वहां पे।
2: बिल्कुल,
1: बट इलाया राजा के वो किसी की जगह नहीं है,
2: इलाया राजा क्या खुद करेंगे।

0: सारा काम खुद करते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा विजेट रहे हो।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं आज अगर मैं करता हूं, जब मैं अपना काम करता हूं, मेरा सारा काम खुद का है, मैं लिखता भी खुद हूं, जब सोलो पीस होते बजा भी कुछ, लेकिन स्टिल व्हाट राजा सब जो लिखते हैं वो एक आम आदमी नहीं लिख सकता, एक जानकार भी नहीं लिख सकता और आम आदमी भी नहीं लिख सकता।
1: सदमा का गाना मुझे याद आ रहा है।
0: हाँ, सुरेश वाडकर
1: जी, आपने बजाया?
0: मैंने बजाया।
1: ऐ जिंदगी गले लगा ली।

0: इलिया राजा की बातें हुई, मुझे एक चीज याद आई, नय्यर साहब।
1: ओहो,
0: उनसे जुड़ी हुई यादें हैं, एकदम हम बीच में स्किप कर गए। बल्कि मुझे तो ये भी याद आता है कि जब उनकी वापसी का दौर था तब भी क्या कुछ काम किया आपने, निश्चय वगैरह जो फिल्में आई थी?
1: तब मुझे बुलाया था
0: जी,
1: मेरी वही प्रॉब्लम थी।
0: नहीं, आपने मना कर दिया?
1: ना, नहीं कर पाया आपके साथ। नय्यर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, यू आर द मोस्ट रिस्पेक्टेड संगीतकार इन द इंडस्ट्री
0: जी,
1: स्पेशली फॉर म्यूजिशियंस, स्पेशली फॉर सिंगर्स ऑफ दोज डेज, रफी साहब। और क्योंकि हमको जो 6-6 महीने के बाद पैसे मिलते थे
0: जी,
1: वो सेट पे पैसे दिलाने वाले नय्यर साहब।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: फॉरन ये काम किया, ये पैसे
1: नहीं, उनका ये था कि भी ये प्रोड्यूसर को बोला कि कल रिकॉर्डिंग है तो इतने पैसे ले आना, ये मैंने किस्सा सुना हुआ है
0: जी जी,
1: ये पैसे ले आना। तो प्रोड्यूसर बोलता है इतने पैसे क्या जरूरत है, वो तो पैसे 3 महीने के बाद दें। अच्छा, कब दोगे? 3 महीने, तो 3 महीने के बाद रिकॉर्डिंग करेंगे।
0: जी,
1: तो नय्यर साहब इज द म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने म्यूजिशियंस को सेट पे पैसा दिलाना और 500 से 5000 रुपया करना सिंगर का, ये नय्यर साहब।
0: वाह,
1: रफी साहब 500 रुपए लेते, 5000 रुपए दिलवाया उनको और म्यूजिशियंस का पूरा। और किसी ने अगर सोलो अच्छा बजा, मरोड़ी जी तो हमेशा उनसे, किसी ने ऐसा सोलो बजा दिया तो जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुई जेब में 500 रुपए डाल दिया, 100 रुपए डाल दिया, जो भी डाल दिया,
0: जो अच्छा बजाया उसका इनाम।
1: तो ये नय्यर साहब थे।
0: वाह, अब बाद में नय्यर साहब की शैली में तुषार भाटिया ने अंदाज अपना अपना में म्यूजिक दिया था।
1: हाँ, वो मैंने किए।
0: वो आपने किया है?
1: हाँ,
0: उसके बारे में बताइए।
1: वो ही मैंने दो या तीन गाने किए, उसको ज्यादा नहीं कर पाया, क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास। और बहुत पूरा कॉपी म्यूजिक, पूरा
0: नय्यर साहब की शैली,
1: पूरी नय्यर साहब को लेके। और क्या होता है ना, देखिए नय्यर साहब नय्यर साहब है,
0: बिल्कुल
1: आप उनको कितना भी कॉपी कर लो, नय्यर साहब है।
0: हाँ,
1: आप कॉपी हो,
0: बिल्कुल।
1: आप आज अगर आप किसी का काम कॉपी कर रहे हो तो यू आर ए कॉपी, यू आर नॉट ओरिजिनल, डू समथिंग ओरिजिनल।
0: बहुत सही बात करें।
1: आपको इतनी बड़ी फिल्म मिली है, बहुत बड़ी फिल्म थी वो, सलमान खान आमिर खान की फिल्म कर रहा है
0: जी।
1: अच्छा, कुछ डिफरेंट म्यूजिक दिया होता तो आज शायद कुछ अलग होता।
0: हम सब ये बात करते हैं कि नय्यर की शैली के गाने।
1: हाँ, तो बात वही आ गई ना
0: जी,
1: हार्डली चले वो गाने, ज्यादा नहीं चले, क्योंकि जब ओरिजिनल सुनना तो फिर नय्यर साहब को ओरिजिनल सुनते हैं ना।
0: गीतकारों से किस तरह के रिश्ते रहे जब आप म्यूजिशियन थे तब?
1: हाँ, मैंने सबके साथ एज ए अरेंजर, साहिर साहब के साथ, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और उस टाइम के जो योगेश और इंदिवर जी, सबके साथ काम किया हुआ
0: जी जी।
1: रिश्ते भी अच्छे थे। नमस्ते नमस्ते थी।
0: बख्शी साहब?
1: बख्शी साहब के साथ मैंने एज ए म्यूजिशियन काम नहीं किया, मुझे बख्शी साहब बिल्कुल पसंद नहीं थे।
0: मुझे पता है ये बात, तो मैंने सोचा कि इसका जिक्र आगे दिल तो पागल है के टाइम करेंगे।
1: मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे वो बख्शी साहब। एक तो वो पान खाते रहना,
0: और पीकदान,
1: वो पीकदान रखना और उसमें थूकते रहना, लेकिन दिल तो पागल आई।
0: हाँ,
1: अभी हम गाने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि दिल तो पागल कर रहा हूँ। मैं तो अपना टेलीफिल्म कर रहा था, यशराज फिल्म्स की।
0: हाँ, ये बताया गया था कि ये एक टेलीफिल्म है।
1: टेलीफिल्म,
0: और कतई नहीं बताया गया कि स्टार कास्ट क्या है।
1: नहीं, वो टेलीफिल्म ही थी।
0: ओके,
1: गानों ने कन्वर्ट कर दिया दिल तो पागल है। उन्होंने जब गाने सुने तो उन्होंने कहा कि यार ये गाने तो फिल्म के लग रहे हैं। आदि ने सुना, भाभी जी ने सुना, मनमोहन सिंह जो कैमरामैन थे उन्होंने सुना, यश जी ने सुना, संजीव कोहली,
0: मदन जी की बड़े
1: लड़के
0: जी,
1: वही तो लेके गए मुझे।
0: अच्छा,
1: ये बहुत बड़ा जिक्र है,
0: इसको
1: इसको होल्ड रखते हैं,
0: इसको होल्ड रखते हैं।
1: हाँ,
0: यहाँ सिर्फ एक झलक हमने सुना दी।
1: हाँ,
0: आपके जो म्यूजिक की यात्रा की बातें हो रही थी और उसमें हमने बहुत अलग अलग तमाम संगीतकारों को याद किया, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि चूंकि बहुत भागदौड़ थी तो एक दिन में सबसे ज्यादा कितने गाने आप करते थे?
1: देखिए जी, एज ए म्यूजिशियन जो है ना, वो समझिए सुबह मदन साहब का बजाया, दोपहर को नौशाद साहब का बजाया, दो गाने।
0: वाह, दो लेजेंड लोगों के साथ काम हो गया आधे दिन में,
1: एक दिन में।
0: अभी तो एक शिफ्ट बची है?
1: नहीं, एक दो शिफ्टों में
0: जी।
1: सुबह एक शिफ्ट जो है वो मदन साहब के लिए।
0: अच्छा, सुबह की पूरी।
1: और दोपहर को 3 से 7 या 3 से 8 या 3 से 9 दूसरे प्रोजेक्टर के लिए।
0: जी जी,
1: ये हमारा उस टाइम पे लॉ था, यू कैन नॉट प्ले मोर देन दैट।
0: दो से ज्यादा नहीं
1: कर सकते। लेकिन साथ साथ में जिंगल चलते थे
0: जी,
1: एड फिल्म के गाने चलते थे, तो वो सुबह हम 7 बजे करते थे और उसके बाद रात को 9 बजे बैकग्राउंड खत्म किया, 9 बजे के बाद फिर जिंगल किया, तो रात को 12-12 1-1 बजे काम करते थे।
0: और जिंगल में भी

0: इतना सारा म्यूजिक होता था।
1: म्यूजिक जंगल में ज्यादा नहीं, 7-8 म्यूजिशियन, 10 म्यूजिशियन बहुत हुए, लेकिन एज ए अरेंजर मैंने दिन में 7-7 गाने किए हुए।
0: बाप रे बाप, सब अलग अलग लोगों के लिए।
1: हाँ मतलब समझिए, एक किसी का, जैसे आप आज कोई भी एल्बम उठा लो, चाहे वो पंकज उदास हो, तलत अजीज हो, जगजीत हो, भूपेंद्र हो, सबके जो पहले फर्स्ट एल्बम है ना वो मैंने किया हुआ है।
0: अरे बाप रे, तो द लेटेस्ट भी आपने किया जगजीत का?
1: जगजीत की जो फिल्म के जो हिट गाने हैं वो सारे मेरे किए हुए हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसके पहले ओपनिंग के जो गाने हैं वो सब मेरे किए हुए हैं। तलत के, आपके गुलाम अली का एक एल्बम आया था मिराज़े गजल, वो मेरी की हुई है सारी।
0: आशा भोसले और गुलाम अली,
1: वो सारी मेरी की हुई है।
0: अरे क्या बात है, तो मिराज़े गजल में से एक गजल सुनी जाए फिर।
1: जरूर जरूर सुनिए, उसमें वायलिन सोलो बहुत है।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह,
1: आप सुन लीजिए उसको।
0: म्यूजिक अरेंजमेंट की बात बहुत हो रही है और आप बता रहे हैं कि आपने कई बार एक एक दिन में 7-7 गाने अरेंज किए। हमारे श्रोताओं में से बहुत सारे श्रोता ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि ये म्यूजिक अरेंजमेंट क्या चीज होती
1: क्या होता है, यस
0: है ना,
1: यस।
0: तो ये आप बताएं कि असल में गाना बनता किस तरह से है और उसमें म्यूजिक अरेंजर का काम म्यूजिक डायरेक्टर से कितना अलग है।
1: देखिए यहाँ पे कंडक्टर का चांस तो मुझे सभी चाचा ने दिया
0: जी,
1: लेकिन म्यूजिक अरेंजमेंट का चांस जो है वो मुझे दिया शंकर शंभू।
0: शंकर शंभू कव्वाल से?
1: जो कव्वाल थे। मुझे मैसेज आया कि आओ बुलाया, तो मैं गया मिलने के लिए। मैं जी बोला, हम एक पंजाबी फिल्म कर रहे हैं और बेटा तुम अरेंजमेंट करो। मैंने कहा जी मैंने तो कभी अरेंजमेंट किया ही नहीं। बोले नहीं करो, दे आर दी पर्सन हु मेड मी अरेंजर।
0: गजब, ये किस साल की बात होगी?
1: 60s की होगी
0: जी जी,
1: 60s 65 मोस्टली 65
0: जी,
1: क्योंकि 65 से मैंने अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया था। तो पहला उनका, उसके बाद में मैं जैसे ही मैंने अरेंजमेंट करना शुरू किया तो जितने भी छोटे म्यूजिशियन थे, जैसे इकबाल कुरैशी, छोटा इकबाल, मियान बाली, ऐसे काफी लोग छोटे छोटे म्यूजिशियन थे, सबने मुझे बुलाना शुरू कर दिया
0: अरेंजर के तौर पर।
1: और यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत किस्सा है कि मुझे मिलते थे 30 रुपए में 2 गानों का अरेंजमेंट करना, 30 रुपए में
0: जी
1: 2 गानों का अरेंजमेंट करना, तो 2 गाने सुबह 2 गाने शाम, तो दिन के 60 रुपए बहुत बड़ी बात होती। लेकिन हुआ क्या, मैं इतना बिजी हो गया तो जो म्यूजिशियन आए बजाने के लिए वो 100 रुपए 2 गाने का लें, कोई 80 ले, कोई 100 ले, कोई 70 ले, कोई 75 ले, और मुझे मिले 30 रुपए।
0: अरे अरे,
1: तो एक दिन मैं एक संगीतकार के यहाँ पहुंच गया सुबह 7 बजे। 7 बजे नॉक किया मैंने, अरे उत्तम तुम कहाँ से आ गए सुबह सुबह? जी आ गए। अच्छा आ जाओ, चाय पियोगे? मैं जी पी लेंगे। मैंने कहा सर आपसे एक बात करनी थी। बोलो बोलो। मैंने कहा आप मुझे 30 रुपए 2 गानों के देते हैं, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, कंडक्टिंग करता हूँ, सब करता हूँ, और जो हमारे म्यूजिशियन आते हैं वो कोई 100 रुपए ले जाता है, कोई 70 रुपए ले जाता है, कोई ऐसे, तो मेरा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा ठीक है, कल बताता हूँ। वो कल कभी नहीं आई। उन्होंने मुझे निकाल ही दिया।
0: ओ,
1: पैसे मांग लिए, जाओ आउट।
0: हाँ हाँ।
1: आप बताओ, आपको जब नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी पैसा मांगने की।
0: जी जी।
1: फिर उसके बाद जो मिलता रहा मैं करता रहा, फिर मेरा नाम धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, फिर अपने आप ही लोगों ने मेरे पैसे
0: बढ़ाने शुरू किए। और म्यूजिक अरेंजमेंट में बहुत सारे काम शामिल।
1: म्यूजिक अरेंजमेंट में मैंने जितना जिंदगी भर काम किया
0: जी,
1: मैंने ये काम किया कि एक तो आपने मुझे गाना दे दिया,
0: हाँ
1: ठीक है, आपने एक मेलोडी दे दी मुझे, अब उस मेलोडी के हारमोनी, उस मेलोडी के बीच के म्यूजिक, चाहे वो ओपनिंग म्यूजिक हो, बीच का म्यूजिक हो, वो सारा मैंने बनाया
0: जी।
1: अब पूरे म्यूजिशियंस को रिहर्सल कराई, अब मैंने रिकॉर्डिंग भी करवाई, क्योंकि साउंड मेरा अपना बैलेंस नहीं होता था, आई नेवर यूज टू ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं मेरा बैलेंस मैं ही करूंगा।
0: अच्छा, तो पैनल पर भी आप ही बैठेंगे?
1: हाँ, मेरे साथ रिकॉर्डिंग के साथ मैं बैठता था कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए
0: जी।
1: तो मैंने जिंदगी में जो भी काम किया ना वो वन मैन शो किया। म्यूजिक का काम था गाना दे दो,
0: मतलब म्यूजिक डायरेक्टर ने केवल ट्यून बनाई
1: और उसमें भी बहुत सारी चीज मैंने करेक्शन की है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि कई ऐसे म्यूजिक आते थे जिनको ताल का ही पता नहीं होता था, वो लेके आ जाते थे ये सब ऐसा गाना है, उसको ताल में ठीक करना, उसको ठीक करना, आर्टिस्टों को सिखाना, आशा जी होती थी, लता जी होती थी, मुझे ही पूछते जी कि गाना उत्तम इसको कैसे करना है इसको।

0: या क्या जो भी करना है, तो मेरा वन मैन शो रहा है टिल हम आपके हैं कौन।
1: क्या बात है,
0: हम आपके हैं कौन और मैंने प्यार किया जो है
1: ये भी बताना जरूरी कि ये फिल्में वो हैं जिनमें म्यूजिक डायरेक्टर राम लक्ष्मण थे लेकिन अरेंजर आप थे।
0: अरेंजर मैं था, बैकग्राउंड म्यूजिक सारा मेरा है, म्यूजिक सारा मेरा है, अरेंजमेंट पूरा मेरा है, सब कुछ, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरी है पूरी, मेरे बिना कुछ वहां हिलता नहीं था
1: जी।
0: तो इसलिए मैंने एज ए अरेंजर जो काम किया है वो राइट फ्रॉम टिल रिलीज मैंने काम किया है। तो ये एज ए अरेंजर जो मेरी जो पोस्ट रही वो मैंने आपको बताई है
1: जी जी।
0: बाकी कई पुराने संगीतकारों में बहुत खास बात ये थी कि वो म्यूजिक अपना खुद बनाते थे,
1: फर्स्ट म्यूजिक सेकंड
0: म्यूजिक, मदन साहब म्यूजिक खुद, मेलोडी खुद बना देते थे
1: जी।
0: नौशाद साहब हो गए, संगरेशन, ये सब लोग अपना म्यूजिक बना देते थे, तो अरेंजर खाली लिखता था।
1: अच्छा अच्छा।
0: अरेंजर
1: अच्छा।
0: लिखता था, उसको थोड़ा सजाना बजाना, कॉर्ड डाला, वायलिन बजाएगा, चेलो बजाएगा या क्या बजाएगा, वो सब करते थे। लेकिन जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने वन मैन शो शुरू किया।
1: तो आप तय करते थे कि यहाँ इतने वायलिन होंगे,
0: हाँ,
1: मैंडोलिन आएगा कि गिटार आएगा,
0: क्योंकि म्यूजिक सारा मेरा होता था ना
1: जी,
0: तो
1: और वो
0: अभी,
1: पीसेस भी कैसे बजाए जाएंगे, उनका चलन क्या होगा, वो
0: जैसे
1: सब
0: अभी
1: आप तय
0: मदन साहब
1: करते
0: के रा रा री री तिरी री वो बजा दिया
1: जी।
0: और वो पीस मेरा है, मैंने उसको कंपोज किया, बच गया गलती से, मैंने कंपोज नहीं किया बल्कि
1: जी जी।
0: तो ऐसे जितने भी म्यूजिक हैं कंपोज पीसेस हैं, मैंने पैर का उठा लीजिए, आप हम आपके मन उठा लीजिए, मेरे अपने म्यूजिक उठा लीजिए, दिल तो पागल से, या आप पेंटर बाबू चले जाइए
1: जी जी।
0: उत्तम जगदीश थे
1: जी जी।
0: तो सारे म्यूजिक जो है, हर चीज इंटरलूड वगैरह सब मेरा बना हुआ है।
1: अब जैसे हम मैंने प्यार किया की बात करते हैं, अब दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उससे पहले का जो म्यूजिक है, जो फ्लूट
0: जी,
1: जिस तरह से चलती है,
0: जी,
1: और वो तो वो सारा आपका तैयार किया
0: सारा मेरा बनाया हुआ है
1: जी।
0: और उस टाइम पे वो जो पीस आया था तारा तारा तारा तारा तारा, इससे पहले ये फ्लूट कभी नहीं बजी थी इसलिए,
1: हाँ वही बात है।
0: तो उस टाइम पे लोगों ने कहा कि अरे फ्लूट ऐसे भी बज सकती है,
1: क्या बात है,
0: और बहुत लोगों ने यूज किया
1: वो
0: वो इस
1: एक
0: टाइम,
1: आलाप की तरह है प्रॉपरली जो आता है
0: बिल्कुल।

0: यहाँ
1: या वो कबूतर जा जा में जो पूरा रिदम है।
0: हाँ
1: मेरे रंग में रंगने वाली के पहले का जो ग्रैंडियोर है
0: हाँ।
1: वो बहुत कमाल है।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये

लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का दूसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उन

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

सभी सुनने वालों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। प्यार सच्चा है गर तो महकेगा चंदन की तरह, वरना सारी रात तुम्हारी आंखों में गुजर जाएगी। वो लम्हात ही कुछ ऐसे थे कि कुछ कह न सके हम, तकदीर के हाथों लुटते रहे, अश्क आंखों से ही बस बहते रहे, हम बुनते रहे ख्वाबों को अक्सर, और एक सिरे पे तन्हा रहे हम, वो दूजा सिरा ढूंढ न पाए हम।

लोगों ने बहुत समझाया हमको, ये इश्क नहीं आसा, तकदीर में जो होगा वो मिलेगा ही तुझे एक दिन, मगर हम जान की बाजी लगा बैठे, तमन्ना उसे पाने की, उसे अपना बनाने की जो कसम खा बैठे।

किसी के हम करवटें बदलते रहे, वो नहीं थे पास मगर उन्हीं को याद करते रहे। चाहत भरे दो दिलों की दास्तां चुपके चुपके असर करने लगी, रह रहकर धड़कनों में बस एक ही पुकार उठती।

क्या कहें राज दिल दीवानों से, छुपाया न गया। मोहब्बत की आग ही कुछ ऐसी होती है कि तकदीर भी पल में बदल जाती है। प्यार के आगे वो मुस्कुरा के झुक जाती है। प्यार परवान चढ़ता है जब दो दिलों की बातें आंखों ही आंखों में होने लग जाती हैं।

मौसम कितना भी सुहाना हो या हो रातें सुहानी, बस वो तुम्हारी यादें, वो प्यार भरी बातें, वो तुम्हारी जुल्फों का लहराना मुझे मेरी नींदों से जुदा कर जाता है। क्या कहूँ मैं, किससे कहूँ अपने दिल का हाल, उस पर से ये रात का आलम भी कुछ कम कहर नहीं ढा रहा।

छाए गीत में मोहब्बत भरे तराने आपके दिलों के बेहद करीब छोड़कर जाती हूँ। शायद ख्वाबों में मुलाकात हो जाए तो मंजरी वर्मा का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, तराने नए पुराने। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुति कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए पुराने।
0: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम का पहला गाना वीर जारा, इस फिल्म से उदित नारायण की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये जब तक है जान, इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज़ों में, बोल गुलजार के हैं, संगीत है ए आर रहमान का।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम का ये अगला गाना लम्हे फिल्म से लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें गीतकार आनंद बख्शी।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है तराने नए पुराने। अगला गाना सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है शिवहरी का।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में साहिल उद्यानवे का लिखा हुआ गाना, खय्याम का संगीत, फिल्म का नाम है त्रिशूल।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार। समाचार के बाद तराने नए पुराने ये कार्यक्रम जारी रहेगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया के सामने भारत की आतंकरोधी नीति का एक नया उदाहरण पेश किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अब भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रहा है और इसका नतीजा सामने है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल ऐप से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। श्री शाह ने बताया कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता और शांति का पक्षधर है, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता से कोई समझौता नहीं करेगा। श्री सिंह ने कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले किसी भी देश के साथ बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नैनो मेडिसिन सटीक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में आज विश्व नैनो मेडिसिन कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग नैनो मेडिसिन के क्षेत्र में 210 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 174 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दे रहा है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग नई दिल्ली में कल पशुधन बीमा पोर्टल लॉन्च करेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह इस पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह पोर्टल पशुधन बीमा के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करेगा। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने अब तक 3 रजत और 2 कांस्य पदक समेत 5 पदक जीत लिए हैं। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजर ने 6.53 मीटर लंबी छलांग लगाकर रजत पदक जीता। स्क्वाश में अभय सिंह ने पुरुष सिंगल्स में और अनाहत सिंह ने महिला सिंगल्स में रजत पदक हासिल किया। डेकाथोनॉल में तेजस्विनी शंकर ने और महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हरिता भद्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किए। फ्रीस्टाइल मुक्केबाजी में अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम वर्ग में तजाकिस्तान के नेक्रोज सलीमो को 5-0 से हराकर पदक पक्का किया। महिला वर्ग में परवीन हुड्डा ने 65 किलोग्राम वर्ग

0: के अंतिम चार में जगह बनाकर पदक तय कर लिया है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 15 रजत और 16 कांस्य पदक जीतकर 12वें स्थान पर है। वहीं तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने भारत के सामने जीत के लिए 296 रन का लक्ष्य रखा है। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 295 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: तराने नए पुराने
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लीजिए अब सुनिए गुमराह फिल्म का गाना, आवाज है महेंद्र कपूर की, सहिल उद्यानवी की बोल, संगीत है रवि का।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये

0: जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया ये गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम आए दिन बहार के।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और नरेंद्र चंचल की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म का नाम है अवतार।

तराने नए पुराने इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, रोशन का संगीत, फिल्म का नाम दादी माँ।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गुमराह फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत रवि का।

0: इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: तराने नए पुराने,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज के शेष और कल दिन भर के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन और 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं भाग 12। कलाकार हैं गायक पंडित गोकुलोत्सव महाराज। ये जो कार्यक्रम हम बता रहे हैं ये आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा है। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष जयमाला। सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। 7:45 पर कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज। साज है बांसुरी और कलाकार हैं श्रीधर केंकरे। रात 8:00 कार्यक्रम हवा महल नाटिका तुम बड़े वो हो जी। लेखन और निर्देशन किया है गंगा प्रसाद माथुर ने। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 आपके लिए और 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार जो केंद्रित होगा फिल्मकार यश चोपड़ा पर। रात 10:00 छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11:00 कार्यक्रम होगा विविधा। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और अब आपको सुनवाते हैं कल यानी कि सोमवार 28 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। सुबह 6:05 पर कार्यक्रम होगा वंदनवार। छह बजकर 35 पर श्री रामचरित मानस गान और 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। विविध भारती के खजाने से गायक के जी गिंडे से बातचीत। सुबह 7:00 भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के और 8:15 पर कार्यक्रम त्रिवेणी होगा और इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण दिन में 2:00 होगा। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायिका लता मंगेशकर पर। सुबह 10:00 सुनिए कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11:00 रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर कार्यक्रम और 2:00 त्रिवेणी। दो बजकर 30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे। 3:00 का समय सखी सहेली कार्यक्रम का और 4:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम होगा। इसमें सुनिए पीसीओडी और आईवीएफ इस विषय पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति शाह से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। शाम 5:00 कार्यक्रम होगा छाया गीत। शाम 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम होगा और शाम 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम। 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। शाम 7:00 आप सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में विक्टोरिया नंबर 203 इस फिल्म के गाने आपको सुनवाए जाएंगे। रात 8:00 सुनिए कार्यक्रम हवा महल झलकी नई कमीज। लेखन किया है कुमुद नागर ने और निर्देशन है चंद्रप्रभा भटनागर का।

8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम, रात 9 बजे आपके लिए ये कार्यक्रम होगा और रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार जो केंद्रित होगा अभिनेता रणबीर कपूर पर। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात ये कार्यक्रम और रात 11 बजे रंग तरंग। ये थी जानकारी कल यानी कि सोमवार 28 सितंबर को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम संध्या रंजन।

अंकुश फिल्म का ये गाना आपने सुना। अशोक खोसला, मुरलीधर, घनश्याम वासवानी और शेखर की आवाजें, अभिलाष के बोल और कुलदीप सिंह का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं लगान फिल्म का गाना। इसे गाया लता मंगेशकर ने, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है ए आर रहमान का।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में प्रस्तुत इस श्रृंखला की आज आप सुनेंगे अंतिम कड़ी। इसके अंतर्गत आज सुनिए उपशास्त्रीय संगीत की कुछ रचनाएं। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। वैसे मैं ठुमरी गाता नहीं हूं, मगर लोग बेहद फरमाइश करने लगे तो ये ख्याल नुमा ठुमरी बनाई है। लीजिए राग मिश्र बरवा पीलू में पहले झूला सुनिए,

शुद्धित पाषाण फिल्म में उस्ताद आमिर खान साहब ने खमाज में ठुमरी गाई है, वह बंदिश मैं आपको गाकर सुना रहा हूं और इस बंदिश के साथ श्रोताओं से इजाजत ले रहा हूं।

0: ख्याल और तराने की विशेषताएं। संगीत सरिता में आज इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपने उपशास्त्रीय संगीत की रचनाएं सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। हारमोनियम पर इनकी संगति की पुरुषोत्तम वालावलकर ने, तबले पर साथ दिया ओमकार गुलवाड़ी ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।
2: फौजी साथियों की सेवा में प्रस्तुत है विशेष जयमाला।

साथियों, वक्त की पेशानी पर लिखी तकदीर को भला कौन मिटा सकता है, लेकिन ये तकदीर भी बदल जाती है, सारी तदबीरें उलट जाती हैं जब हौसलों की बुलंद परवाज आसमां को छूती है। कुछ ऐसे ही खुशकिस्मत होते हैं वतन के वो पासबां जिन्हें वतन की खिदमत का फक्र हासिल होता है। वतन की हिफाजत जिंदगी का मकसद बन जाती है, फिर जिंदगी कम ही सही खुशियों से गुजर जाती है। मौत उन्हें फिर क्या डराएगी, जिंदगी जिनके कदमों तले होती है। मुस्कुराएं तो वतन की खातिर, मर मिटें तो वतन की खातिर। आइए आज नमन करें राजपुताना राइफल्स की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बांके सिपाही हवलदार दयाराम को। राजपुताना इन्फेंट्री के वो होनहार सिपाही जिन्हें न तपती रेत की परवाह, न लंबे रास्तों का खौफ, न सूरज की तपिश की चुभन, जिन्होंने जब जब केसरिया बाना पहना, हथियार हाथ में थामे, तब तब लिखी फतेह की एक और इबारत।

जिंदगी के सफर की चुनौतियों को पार कर अपनी कुशलता को सिद्ध कर दयाराम सेना में शामिल हो गए। उन्हें पहली राजपूत इन्फेंट्री सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 4th गार्ड में बतौर सैनिक भर्ती कर लिया गया। हालांकि

ये खिदमत बतौर अंग्रेजी हुकूमत के मुलाजिम के तौर पर थी, लेकिन ये तजुर्बा यकीनन देश के काम आया। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना के तमाम अनुभवी सैनिकों में दयाराम भी अग्रणी थे। सन 1947 में तमाम कोशिशों और शहादतों के बाद देश आजाद हुआ, चेहरे पे मुस्कान आई, लेकिन विभाजित भारत की सरहदें फिर भी बेचैन ही रहीं। इस अजीम और शान मुल्क से अलग हुए राष्ट्र की प्यास बुझने का नाम न लेती। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सरहदों में खतरे की सुगबुगाहट को भांपा गया और जश्न आजादी के दरमियान ही भारतीय सेना को उत्तर पश्चिमी सरहदों की तरफ रवाना होने के आदेश जारी कर दिए गए और ये सिलसिला चलता ही रहा।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। आदेशानुसार 1948 में लांस नायक दयाराम को भारत की उत्तरी पश्चिमी सरहद से सटे गांव टीनधर कूच करना था। ये इलाका पूरी तरह से संवेदनशील था, जहां दुश्मन सेना के सैनिक सरहद में दाखिल होने के फिराक में घात लगाए बैठे थे। राजौरी, झांगर, उरी, कठुआ, बांदीपुरा, जम्मू और कश्मीर के रास्ते भारतीय सेना की अन्य टुकड़ियों को भी रवाना कर दिया गया था, जिससे शत्रुओं पर चौतरफा निगरानी रखी जा सके और सेना को कवर फायरिंग भी दी जा सके। 6 फरवरी सन 1948 की वो सुबह, जब हाड़ कपा देने वाली ठंड और चारों ओर बिछी बर्फ में रास्ता बनाना, चलना और मिशन को अंजाम देना खासा चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ हवलदार दयाराम नौशेरा से उत्तर की तरफ टेनधर के इलाके में बढ़ने लगे।

0: ऐसे मौसम में शत्रु के कहीं भी छुपे होने का अंदेशा भी गहरा था। खबर पक्की थी कि दुश्मन सैनिकों ने सुबह 6:40 के लगभग टेनधर की चौकियों पर हमला बोल दिया है, जिसमें चौकी पर तैनात सैनिक, उनकी पोस्ट, असलाहों के जखीरे सभी इस खतरे की जद में आ गए। अपनी सैनिक टुकड़ी को हवलदार दयाराम ने दो तरफा हमले का सुझाव दिया, जिससे दुश्मनों के भागने के रास्ते बंद किए जा सकें और उन्हें वहीं घेर कर ढेर कर दिया जाए। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर

0: ने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस बीच ये खबर भी मिली कि तीसरी पैरा बटालियन राजपूत रेजिमेंट की एक और कंपनी को टेनधर रवाना कर दिया गया है। देश की सरहद की सुरक्षा के मद्देनजर टेनधर की ये चौकी साथियों बेहद ही खास थी, क्योंकि यहाँ से दुश्मनों की गतिविधियों को देखा और परखा जा सकता था, हमलों का जवाब दिया जा सकता था और जम्मू कश्मीर की सरहद को सुरक्षित भी किया जा सकता था। भारी शेलिंग के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना हवलदार दयाराम ने युद्ध के मोर्चे को संभाला। सरहद पार से उठे जंग के इन शोलों की लपट इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर और सरहदी गांवों में भी गोलियों की गड़गड़ाहट शत्रु की मौजूदगी का एहसास कराती थी। एक पल को खामोशी तो दूसरे ही पल आसमान में घुलता बारूद जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलता रहा। मौसमी रंग में नहाए चनार के दरख्त बेरंग नजर आते थे। जिंदगी सिसकियों की सांस भरती रही। भला उन नरगिसी फूलों, उन सफेद झीलों, उन प्रेम के पंछियों और पुरसुकून वादियों को नफरतों से क्या लेना।

में अब तक अपने सहायक सैनिकों के साथ पोजीशन ले चुके हवलदार दयाराम ने अपनी सूझबूझ और फुर्ती से युद्ध करते हुए दुश्मन सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि दयाराम और उनके साथी संभल पाते, दुश्मनों का एक और जत्था आगे बढ़ा और एक बार फिर बारूद के उठते शोलों में सब कुछ धुआं धुआं सा नजर आने लगा। ये मुठभेड़ घंटों चलती रही। भारतीय सेना की इस चौकी में कई सैनिक घायल हुए, जिन्हें तत्काल बाकी सैनिकों ने कवर देते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। न सिर्फ एक या दो बार बल्कि लगातार पांच बार इस मुठभेड़ के दौरान दुश्मन सैनिकों ने हवलदार दयाराम पर हमले किए और इन हमलों को वो लगातार विफल भी करते रहे। काफी सैनिक इस मोर्चे पर घायल हुए, फिर भी मोर्चे पर दयाराम डटे रहे और हथगोले फेंक कर दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे।

इस बीच उनकी पोस्ट पर लाइट मशीन गन, जिसे LMG या ब्रेन गन भी कहते हैं, इसे चलाने वाला सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये देखकर दुश्मनों के हौसले बढ़े और उन्हें लगा कि मंजिल अब तो करीब है। लेकिन इसी बीच घायल अवस्था में भी पूरी फुर्ती से हवलदार दयाराम ने LMG को संभालते हुए दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उनके चंद बचे सैनिकों ने जब उन्हें इस तरह दुश्मनों पर टूटते देखा तो वो भी पूरी ताकत से हमलावर होते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। अफरा तफरी के इस माहौल में अब तक 24 दुश्मन सैनिकों को हवलदार दयाराम ने वहीं मार गिराया और बाकी बचे पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन कोई 3 शत्रु सैनिक अब भी दबे पांव आगे बढ़े। लहू से लथपथ दयाराम ने इनमें से 2 को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन तीसरा अब भी आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, दयाराम ने बड़ी फुर्ती से एक हथगोला उसकी तरफ फेंका और उसके भी परखच्चे उड़ गए। साथियों, हवलदार दयाराम ने न सिर्फ टेनधर की इस बेहद महत्वपूर्ण चौकी को बचाया।

बल्कि तमाम असलाहे और ब्रेन गन को भी शत्रु के हाथों में जाने से बचाया। साथ ही चौकी पर चार और घायल पड़े भारतीय सैनिकों की जान को भी बचाया और टेंधर की इस मुहिम में फतह हासिल की। भारतीय सेना की एक और जीत का इतिहास सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया गया। ये फतह भारतीय सेना की कामयाब मुहिम का एक ऐसा हिस्सा थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी जंगी हवाओं के रुख को मोड़ने का ताब रखती है। जब सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर नजरें हों तो जीत का परचम लहराता ही लहराता है। हम एक बार फिर सलाम करते हैं हवलदार दयाराम को।

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम साज और आवाज। साज है बांसुरी और कलाकार हैं श्रीधर केंकरे। सबसे पहले आपको भाभी की चूड़ियां फिल्म के एक गाने की धुन सुनवाते हैं, उसके बाद ये गीत सुनवाएंगे।

श्रीधर केंकरे द्वारा बांसुरी पर बजाई ये धुन अभी आपने सुनी। लीजिए अब सुनिए भाभी की चूड़ियां फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में, नरेंद्र शर्मा के बोल, संगीत है सुधीर फड़के का।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साज और आवाज इस कार्यक्रम में गुड्डी फिल्म के गाने की ये धुन सुनिए, जिसे बांसुरी पर बजाया है श्रीधर केंकरे ने।

0: गुड्डी फिल्म का ये गाना आपने सुना वाणी जयराम की आवाज़ में। इसी के साथ आज का साज और आवाज़ ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटिका तुम बड़े वो हो जी। इसके लेखक और निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर।
1: वो जो हम में तुम में नान ना नर नान ना नन नान ना।
2: आइए ना, खाना मेज पर लगा दिया है।
1: चलो रानी, आज तो बड़े बड़े माल पकाए हैं। अरे रज्जो, रज्जो कहाँ चली गई?
2: पानी ला रही हूँ, आप शुरू कीजिए ना।

0: तुम नहीं खाओगी क्या?
1: आप खाइए, मैं जरा बर्तन वगैरह मांज कर खाऊंगी।
0: अच्छा अच्छा रज्जो, एक नौकर क्यों ना रख लिया जाए?
2: जी
0: भाई, मैं तुम्हें बर्तन मांजते नहीं देख सकता। एक गोरे गोरे हाथ क्या इस काम के लिए है?
2: रहने भी दीजिए ना, आपको तो बस हर वक्त मेरा ही ख्याल लगा रहता है। नौकर रखने की क्या जरूरत है, काम ही कितना सा है। दो आदमियों का खाना पकाना और बर्तन मांजना भी कोई बड़ी बात है? बेकारी पे नौकर का खर्चा बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से तो ये अकलमंदी की बात नहीं।
0: बस बस, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो तुम्हारा गुलाम बना दिया है मुझे। सच रजो, तुम इस घर का कितना ख्याल रखती हो।
2: क्यों ना रखूंगी इस घर का ख्याल, ये घर अब मेरा ही तो है।
0: और मेरा नहीं क्या?
2: आप भी तो मेरे ही हैं।
0: अच्छा रजो, एक बात बताओगी?
2: पूछिए ना।
0: शादी से पहले तुम्हारा मेरे बारे में क्या विचार था?
2: आपके बारे में? जी वो
0: देखो रजो, तुम्हें मेरे सर की कसम, सच सच बताना
2: जी, मेरा विचार भला क्या होता?
0: फिर भी कुछ तो सोचती होगी ना मेरे बारे में।
2: अब क्या बताऊं, मैं तो शादी के बारे में सोचते हुए भी बहुत डरती थी।
0: क्यों?
2: बात यह है कि मेरी वो जो सहेली है ना, अच्छा वो ही जो यहाँ सब्जी मंडी में रहती है।
0: ओ, वो जो तुम्हारी मौसी के साथ आई थी हमारे यहाँ?
2: हाँ हाँ।
0: माता जी के पास शादी की बात लेकर?
2: हाँ हाँ वही। उसने बताया था कि आप यहाँ अकेले रहते हैं।
0: फिर?
2: और आप गुस्से वाले हैं, आपके सब घर वाले आपसे डरते हैं।
0: मुझसे डरते हैं घर वाले?
2: जी हाँ। और वो कह रही थी कि आपकी माता जी कहती थी कि जब तक आप लड़की नहीं देख लेंगे शादी भी नहीं होगी।
0: लेकिन मैंने तो शादी के पहले तुम्हें कभी देखा ही नहीं।
2: इस बात पर बिमला कह रही थी कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, पर चूंकि आपके पिताजी बहुत पीछे पड़े हैं इसीलिए आपने गुस्से में मजबूर होकर शादी के लिए हाँ कर दी।
0: बड़ी बेवकूफ है तुम्हारी वो सहेली बिमला। अच्छा फिर?
2: फिर क्या, मैं तो रातों रोया करती थी कि ना जाने आप मुझसे बोलेंगे भी या नहीं।
0: लेकिन अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि विमला कितना झूठ बोलती थी। अच्छा सच रजो, मैं तो शादी के बारे में एक लफ्ज भी पिताजी से नहीं कह सका था। जिसके बुजुर्ग बैठे हों उसे क्या गरज पड़ी। और फिर मैं तो जानता ही था कि माताजी पिताजी मेरी आदतों और पसंदों को जानते हैं, वो कोई ऐसी वैसी लड़की मेरे लिए कभी पसंद नहीं करेंगे।
2: और उस दिन जब आप शादी के पांचवे दिन ही दिल्ली चले आए तो मैं डरी थी कि शायद सचमुच आप मुझे पसंद नहीं करते।
0: अरे भाई, कुल 6 दिन की तो छुट्टी मिली थी। लेकिन तुम्हें भी तो माताजी मेरे आने के 1 हफ्ते बाद ही यहाँ छोड़ने आई थी।
2: मैं समझी थी कि आप शायद घर वालों से नाराज होकर मुझे वहाँ छोड़ आए हैं और इसलिए माताजी आपको मनाने यहाँ आ रही हैं।
0: भाई वाह। अच्छा फिर?
2: फिर मैंने तुम्हें बिल्कुल बदला हुआ पाया। सचमुच बिमला बहुत झूठी निकली।
0: रज्जो एक बात और बताओगी?
2: पूछिए ना।
0: विमला ने जो बताया था, अगर वो सब सच होता तो?
2: हाँ नहीं नहीं, वो सब सच क्यों होता, रहने दीजिए आप भी बस।
0: सुनो रानी, विमला ने जो कहा वो झूठ भी नहीं है।
2: हाँ?
0: शादी से पहले मैं वाकई चिड़चिड़ा सा था। उस वक्त मुझ पर एक जुनून सवार था, ना जाने क्यों रुक्मणी मेरी रग रग में समाई हुई थी।
2: रुक्मणी? कौन रुक्मणी?
0: अजी वही जो अपने पड़ोस में रहती थी ना, बचपन में साथ साथ खेले थे। लेकिन अब छोड़ो इन बातों को, वो तो जैसे हमारे पिछले जन्म की बात थी। अब तो हमने नई जिंदगी शुरू की है ना, इस जिंदगी में सिर्फ हम और तुम और कोई नहीं। पिछली बातों को दोहराना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा।
2: हाँ, ये हमारी नई जिंदगी है, नया जीवन। अरे आप खा चुके, कुछ और खाइए ना।
0: बस भाई बस, बल्कि बातों में कुछ ज्यादा खा गया। अच्छा रानी, अब जरा एक पान और खिला दो, फिर हम दफ्तर को चले।
2: लीजिए, पान तो मैंने पहले ही बना रखा है।
0: लाओ। और हाँ, जरा शाम को खाना वाना जल्दी बनाकर तैयार रखना, पिक्चर चलेंगे।
2: जी अच्छा,
0: बाय
2: बाय।
3: कौन? ए दरवाजा तो खोलो।
4: कौन है? अरे वो आती हूँ।
3: अरे खोलो भी।
2: अरे विमला, आओ आओ, आज इधर रास्ता कैसे भूल गए?
5: अरे चलो जी, हम रास्ता भूल कर तो इधर आ ही गए। जनाब तो कभी भूल कर भी हमारे घर का रुख नहीं करते।
2: अब तुम्हें क्या बताऊं बिमला, जब से यहाँ आई हूँ अभी तक कहीं आने जाने का डॉल नहीं
5: बैठा। हाँ जी, अब घरवाली जो हो गई हो, एक हम है जो दिल्ली से अलीगढ़ तक जाते थे कि चलो भाई मिलाए, और एक ये है कि शादी के सबको भुला बैठे।
2: नहीं नहीं बिमला, ऐसी कोई बात नहीं, घर के कामकाज में कुछ इस तरह उलझी हूँ कि बस।
5: 2 महीने ब्याह को नहीं और तो सारा काम करती है।
2: ना करूँ तो काम कैसे चलेगा बिमला?
5: नौकरी रख लिया होता।
2: वो तो बहुत पीछे पड़े रहे।

0: कहते हैं कि नौकर रख लो, लेकिन मैंने ही नहीं रखने दिया अभी तक। दो आदमियों का काम है कितना, और फिर अगर नौकर रख भी लिया तो सारे दिन खाली बैठी बैठी करूंगी क्या? काम करने से दिल तो लगा रहता है ना।
1: अच्छा ये तो कहो, कैसी निभ रही है उनके साथ, खुश तो हो ना?
0: खुश हूँ, अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। बिमला, अरे चुड़ैल, तूने तो डरा ही दिया था मुझे शादी से पहले।
1: अरे क्यों, कुछ गलत कहा था मैंने?
0: तूने उनका डर इस तरह मुझ पर बिठा दिया था कि बस दिल्ली में रहते हैं, बड़े गुस्से वाले हैं।
1: तो क्या वो मिजाज के गुस्सैले नहीं?
0: नहीं री, वो बहुत हंसमुख हैं, हरदम हंसना और हंसाना ही उनका काम है। हाँ, शुरू शुरू में जब मैं यहाँ आई तो वो सिगरेट बहुत पीते थे, लेकिन अब तो इन्हें गिने ही सिगरेट पीते हैं।
1: अच्छा, मालूम होता है उन्होंने तुमसे समझौता कर लिया।
0: समझौता? कैसा समझौता?
1: अरे ये मर्द बड़े तेज होते हैं, उन्होंने सोचा होगा कि नहीं नहीं आई हो इसलिए तुम्हें नाराज ना करें। ये सब मर्द जानते हैं कि औरतें प्यार की भूखी होती हैं, बस घर में घुसते ही मीठी मीठी बातें बनाना शुरू कर देंगे। प्यारी, आज तो दफ्तर में मन ही नहीं लगा, काम बिल्कुल ही नहीं कर सका। पूछे क्यों तो जवाब मिलेगा, बार बार तुम्हारा चेहरा सामने आ जाता था, बस तुम ही तुम हो। अगर इन्हें कुछ टेढ़ा शब्द भी कहा तो जवाब में मुस्कुरा देंगी। तुम्हारे मुंह से तो फूल छड़ते हैं, बस यही अदा तो मार गई, जरा गुस्सा हो जाइए तो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने लगेंगे। हाँ
0: लेकिन बिमला,
1: अरे इनका ये प्यार मोहब्बत एकदम सब बनावट है, बनावट। हाँ
0: लेकिन बिमला, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं।
1: करते होंगे।
0: मैंने एक दिन कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ
1: तो उनका मुंह उतर गया होगा यही ना। उन्होंने उस दिन खाना भी ना खाया होगा, दफ्तर से भी जल्दी चले आए होंगे। क्या अदाएं हैं इनकी, एकदम बनावट। और बेचारी भोली भाली बीवी इसे सच्चा प्यार समझकर अपना तन तोड़ती है गृहस्थी बनाने में।
0: लेकिन बिबला, वो सचमुच मुझे बहुत प्यार
1: करते हैं। अरे नहीं नहीं, बाल कितने जजमान आगे आते हैं गिल्ले ना। अरे बावली, अभी शादी को जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं, बाद में देखना क्या होता है। ये साहब जो बात बात में हंसते है ना, मुस्कुराते है ना, बात बात पर झिड़कियां देंगे झिड़कियां। हाँ
0: नहीं बिमला, नहीं, वो हर किसी ऐसे नहीं हो सकते। और फिर बिना वजह वो मुझ पर नाराज क्यों होंगे, मैं ऐसा काम ही क्यों करूंगी जो उनकी मर्जी के खिलाफ हो।
1: तुम कुछ करो या ना करो, ये शक्की कौम हर बात में मीन मेख निकालती है।
0: लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे बिल्कुल शक्की नहीं है।
1: चलो जी, अच्छा ही है ये शक्की ना हो, तुम्हारा ग्रस्त हमेशा ऐसे ही बना रहे। लेकिन मैं तो अपनी शादी के 5 साल के तजुर्बे के बल पर ये दावा कर सकती हूँ कि हर मर्द शक्की होता है और वो अपनी बीवी पर हर मिनट हर घड़ी शुभ करता रहता है।
0: मैं बड़ा बोल नहीं बोलती बिमला, लेकिन कम से कम मेरे शौहर मुझ पर कभी शुबा नहीं करते।
1: हो सकता है वो 1000 में से 1 नई किस्म की हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता।
0: अच्छा तो तुम शाम तक ठहरो और उनके आने पर उनसे बातचीत करके देख लेना।
1: चलो ठीक है, फिर आज उनका इम्तिहान हो जाए।
0: जरूर जरूर, लेकिन तुम उनकी आजमाइश तो बाद में करना, पहले कुछ नाश्ता वाश्ता तो कर लो। लो 6 बज गए, उनके आने का वक्त भी हो गया।
1: अच्छा तो फिर शुरू हो जाए खेल। सुन, दरवाजा तो अंदर से बंद है ना अच्छी तरह से?
0: हाँ।
1: अच्छा तो तैयार?
0: हाँ तैयार। लो वो आ गए। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ रमेश, भगवान के लिए देखो उनके आने का वक्त हो गया है, तुम जाओ रमेश। तुम्हें मेरी इस पुरानी मोहब्बत की कसम, तुम क्यों मेरे भरे पूरे घर में आग लगा रहे हो? मैंने तुमसे वादा जरूर किया था रमेश कि तुम्हारी राह देखूंगी, पर मैं मजबूर थी रमेश, मैं मजबूर थी। रमेश रमेश देखो वो सचमुच आ गए हैं, हे भगवान अब मैं क्या करूं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं रमेश। अच्छा अच्छा अच्छा बाबा तुम छुप जाओ, हाँ हाँ जल्दी करो ना। अरे हाँ बाबा, उधर उस तरफ उस स्टोर रूम में। अरे ये आप चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हैं, आइए ना।
2: सच बताओ कौन आया था यहाँ?
0: जी यहाँ तो कोई भी नहीं आया, कोई भी तो नहीं आया।
2: हाँ, यहाँ कोई भी तो नहीं आया
0: जी।
2: मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसी जलील औरत हो
0: जी। आपको क्या हो गया है? चाय तैयार है, मैं अभी लाती हूँ।
2: चुप रहो, मैं आज इसका फैसला करके ही रहूंगा कि मेरे पीछे घर में क्या क्या गुल खिलते हैं।
0: ये आप कैसी बातें कर रहे हैं?
2: रज्जो ठीक ठीक बता दो, तुमने उसे कहाँ छुपाया है?
0: मगर किसे?
2: उस अपने चहेते रमेश को।
0: रमेश?
2: हाँ रमेश।
0: ओह तो आपने सब सुन लिया, खैर वो तो मैं आपको खुद बताने ही वाली थी।
2: मुझे बताने वाली थी? वारी औरत तेरी दीदा दिलेरी
0: जी।

0: वो तो मेरी शादी से पहले की गलती थी। जिस दिन से शादी हुई है मैंने कभी भूल कर भी आपके सिवा किसी दूसरे मर्द का ध्यान नहीं किया।
1: मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जलील और कमीनी हो।
0: आप तो कहते थे कि शादी से पहले की जिंदगी खत्म करके अब हमने नई जिंदगी शुरू कर दी है। रुक्मणी से आपका प्यार किसी दूसरी जिंदगी की बात है। बिल्कुल ऐसे ही रमेश से मेरा प्यार भी इस जन्म से पहले की बात है। वो
1: चुप रहे बेहूदा औरत। पहले ये बता, तूने रमेश को कहाँ छुपा रखा है? मैं उसे कत्ल कर दूंगा और साथ में तुझे भी। बता वो कहाँ है, बता। अच्छा, तो उसे कोठरी में बंद कर रखा है। ठहर जा।
0: सुनिए सुनिए जरा ठहरिए, मैं खुद ही उसे बुलाती हूँ। रमेश बाहर आ जाओ। रमेश
2: नमस्ते अजीत बाबू।
1: तुम?
2: जी हाँ मैं। क्यों रज्जो, देख लिया अपने देवता स्वरूप को? मैं ना कहती थी सब मर्द एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। देख लिया ना कितने शक्की हैं। अच्छा मैं चली। नमस्ते
1: रज्जो। रज्जो ये सब आखिर क्या तमाशा है? अरे अरे सुनो तो,
0: शादी के बाद हमारी जिंदगी का नया वर्ग शुरू होता है। पिछली भूले हमें नहीं दोहरानी चाहिए। ये हमारी नई जिंदगी है, नया जन्म है।
1: रज्जो रज्जो रानी, सब आखिर तमाशा क्या है? कुछ मुझे भी तो।
0: रहने दीजिए, बस मुझसे मत बोलिए।
1: ओहो अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो ना, मैंने तुम्हें गलत समझा रखा। कोई बात गर ऐसी हुई जो तुम्हारे दिल को लगी बुरी, तो बयां से पहले ही भूलना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बोलो ना रज्जू, माफ कर दिया ना, बोलो।
0: तुम बड़े मुंह जी, बस तड़पाना जानो, रुलाना जानो, तुम बड़े मुंह जी।

तुम बड़े वो हो जी। आज के हवा महल कार्यक्रम में आपने गंगा प्रसाद माथुर द्वारा लिखित और निर्देशित ये नाटिका सुनी।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए पुष्पा 2। इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल की आवाज में, रकीब आलम का लिखा हुआ गाना, देवी श्री प्रसाद का संगीत है।

0: दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ हूँ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है हाईवे फिल्म का गाना, ए आर रहमान की आवाज, इरशाद कामिल के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना आर्टिकल 15 इस फिल्म का गाना यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में, रश्मि विराग के बोल, पीयूष शंकर का संगीत।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: हंसी तो फंसी इस फिल्म का गाना चिन्मयी श्रीपदा और शेखर रविजियानी की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, विशाल और शेखर का संगीत।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश के सुरीली धड़कन विविध भारती से। गैंगस्टर फिल्म का गाना अभिजीत और सुनिधि चौहान की आवाजों में नीलेश मिश्रा के बोल संगीत है प्रीतम का।

आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। कहा, ये आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौते किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के साबरमती से देश की पहली LNG चालित रेल को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे स्वच्छ ऊर्जा के लिए रेलवे का महत्वपूर्ण कदम बताया। एशियाई खेलों में भारत ने विमेंस लॉन्ग जंप, मेंस हाई जंप और स्क्वाश सिंगल्स स्पर्धाओं में रजत पदक जीते। डेकाथनॉल, विमेंस स्टेपल चेज और 200 मीटर दौड़ में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैम्पेडाश्विली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण

0: बताया है। सेना की ये कार्रवाई आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाते हैं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि देश कल यानी 28 सितंबर को इस स्ट्राइक की 10वीं वर्षगांठ मनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किस तरह बहादुर भारतीय सैनिकों ने नियंत्रण रेखा पार की थी।
1: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जनगणना का पहला चरण लगभग सभी राज्यों में पूरा हो गया है और 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का आंकड़ा दर्ज किया जा चुका है। श्री मोदी ने लोगों से ऑनलाइन पोर्टल se.census.gov.in पर जानकारी देने की अपील की। अब तक 2,60,00,000 से ज्यादा लोगों ने मोबाइल से अपना ब्यौरा दर्ज कराया है।
1: जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। मैंने 15 अगस्त को भी देशवासियों से आग्रह किया था कि इसके लिए अपना समय जरूर निकालें। जनगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
0: श्री मोदी ने लोगों से मेढोरा की गौरवशाली विरासत को देखने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती से पहले स्वच्छता अभियानों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता बापू के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है।
1: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन। बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है। हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं, इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद के संबंध में कहा कि आंवला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में नई संभावनाओं को जन्म दे रहा है। यहां के किसान पीढ़ियों से आंवले की खेती करते आ रहे हैं। विंध्यवासिनी स्व सहायता समूह की महिलाएं आंवले से अचार और पाचक चूर्ण बना रही हैं। इन महिलाओं को प्रसंस्करण और ऋण की सुविधा मिली है। श्री मोदी ने त्योहारों के दौरान वोकल फॉर लोकल मंत्र को याद रखने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत किसी अन्य देश की भूमि पर कब्जा करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन खतरे की स्थिति में अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा करेगा। नई दिल्ली में आज एक रक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। भारत डायलॉग में विश्वास रखता है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को हवा देगा तो डायलॉग की गुंजाइश वहीं खत्म हो जाती है। जो देश टेररिज्म को अपनी नीति का साधन बनाते हैं, आतंकियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश देना होगा कि आतंकवाद किसी के लिए स्ट्रेटेजिक एसेट किसी भी सूरत में नहीं हो सकता।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में राष्ट्रीय एकता पर बल देते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। श्री सिंह ने कहा कि भारत को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ साथ साइबर, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना युद्ध जैसे क्षेत्रों से परे भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार।

0: 26 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के साबरमती में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ साबरमती स्टेशन से देश की पहली द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG से चालित रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस रेलगाड़ी में डीजल और LNG दोनों ईंधन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। गृह मंत्री ने रेलवे के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। श्री शाह ने कहा कि रेलवे में वार्षिक डीजल की खपत 293 करोड़ लीटर से घटकर 108 करोड़ लीटर रह गई है और इसे पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।
2: विद्युतीकरण 2010-11 में 75 किलोमीटर होता था और 23-24 में 7,188 किलोमीटर विद्युतीकरण, 75 से 7,000 किलोमीटर की छलांग, 99.6% रेलवे का विद्युतीकरण हो गया है, 0.3% जो बाकी है वो भी हम पूरा कर लेंगे।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल ने अपना पूरा जीवन हिंदुत्व, राष्ट्र और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि उनका जीवन हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
2: अशोक जी का जीवन कई सारे किशोरों के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। उनके जीवन का सत्व, उनका तप, उनकी सादगी और उनका पुरुषार्थ हर युवा के लिए अनुकरण करने योग्य गुण है और स्वाभाविक रूप से उनका स्मरण हमेशा युवाओं को जागरूक करता रहेगा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि तकनीक किसी चिकित्सक के मानवीय स्पर्श और नैतिक जिम्मेदारी का स्थान नहीं ले सकती। श्री राधाकृष्णन आज तिरुवनंतपुरम में SUT अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे।
3: As we embrace technology, we must remember that one fundamental truth. Technology can assist a doctor, but it cannot replace the human touch of a doctor. A machine can analyze, a robot can assist, but there is no comparison that human touch by a doctor to the patient. An algorithm can identify patterns, but patient still needs a doctor who can listen, understand, reassure and take the responsibility.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं नमो भारत रैपिड रेल की, कि कैसे इस संकल्प को वास्तविकता में बदला गया।
4: नमो भारत भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर है। 30,274 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस कॉरिडोर पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। यह सेवा इस साल फरवरी से शुरू हुई और इसके कारण दिल्ली से मेरठ के सफर का समय घटकर 1 घंटे से भी कम हो गया है। रैपिड रेल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत ट्रेन आधुनिकता, तेजी और शानदार रफ्तार को दर्शाती है।
5: नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है।
4: नमो भारत में यात्रा करने वाले एक यात्री ने बताया,
6: जो लोग पहले गाड़ी से जाते थे या फिर कार बस से जाते थे, उनको ना कार में जाने की झंझट है कि ट्रैफिक जाम आपको पीक टाइम में मिलता ही मिलता है। किसी भी एम्प्लॉय से आप पूछोगे कि जो काम करता है बाहर, आई डोंट थिंक कि वो डिसएग्री करेगा इस चीज से कि नमो भारत रैपिड

0: रेल की चेंजर है, एक डेवलपमेंट है मेरठ और यूपी के इतिहास।
1: नमो भारत का अलग अलग परिवहन साधनों के साथ सहज जुड़ाव भारत में तेज इंटरसिटी यात्रा को सुनिश्चित करता है और एकीकृत शहरी तथा क्षेत्रीय परिवहन के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह परियोजना प्रधानमंत्री के उस विजन को और गति देती है जिसमें शहरी परिवहन को बदलने और नागरिकों के लिए सुगम, कुशल, आधुनिक और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही गई है। भानु प्रताप के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अब रुख खेल खबरों का। एशियाई खेलों के हलचल के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
3: एशियाई खेलों के आज आठवें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। सर्वेश कुशारे ने पुरुष हाई जंप में रजत पदक हासिल किया। उन्होंने 2.25 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाई। महिला लॉन्ग जंप में एनसी सोजन ने 6.53 मीटर की छलांग लगाकर दूसरा स्थान हासिल किया। स्क्वाश में अभय सिंह और अनाहत सिंह को रजत पदक मिला। पारुल चौधरी ने महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज में कांस्य पदक अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने डेकोथलॉन में 7,934 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। हरिता भद्रा ने महिला 200 मीटर में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 4 स्वर्ण, 16 रजत और 17 कांस्य सहित 37 पदक लेकर 12वें स्थान पर है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उधर भारत ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शतरंज ओलंपियाड में नाना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी है। भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पुरुष टीम ने हंगरी के साथ ड्रॉ खेला और टाई ब्रेक के आधार पर रजत पदक जीता। महिला टीम ने जॉर्जिया के साथ ड्रॉ खेलकर कांस्य पदक देश को दिलाया। तिरुवनंतपुरम में 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला के पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत के लिए 296 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर को भारत की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का साहसिक उदाहरण बताया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जनगणना 2027 की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, 32 करोड़ से अधिक परिवारों का विवरण दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता किए बिना वैश्विक स्थिरता का समर्थक। और भारत ने शतरंज ओलंपियाड में नोना ग्रैमपेंडा शिवली ट्रॉफी बरकरार रखी। ओपन वर्ग में रजत और महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम का पहला गीत है लेकिन फिल्म से। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया। गुलजार के बोल, संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। महबूब की मेहंदी इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
2: ये जो चिलमन है

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सिलसिला फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है शिव हरी का।

द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।

0: एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है सुनैना फिल्म का गाना यशुदास की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपके लिए इस कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवा रहे हैं। घर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर ने गाया है, गुलजार के बोल हैं, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक क्यों कहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

0: शायर।
1: आप सोच रहे होंगे नमस्कार के साथ ही मैंने अर्ज किया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, ये मामला क्या है? तो चलिए मामले को थोड़ा आगे और फलसफाई बना देते हैं।

0: भाई मामला क्या है आज के फनकार कार्यक्रम में? आज हम आखिर बात किस सिनेकार की कर रहे हैं? आज के फनकार कार्यक्रम में आज नमन जाने माने निर्माता निर्देशक यशराज चोपड़ा को।
1: तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह पुस्तकियां, तेरी जुल्फ

0: तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलट के फिर न देखना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान।
1: यशराज चोपड़ा 27 सितंबर 1932 को लाहौर में जन्मे यश चोपड़ा के पिता एक सरकारी विभाग में काम करते थे। परिवार में 8 भाई बहन थे। जब से उन्होंने होश संभाला, उन्होंने सिनेमा में ही सांस ली, सिनेमा में ही काम किया और सिनेमा के ही सपने देखे, और वो सपने भी बड़े रूमानी किस्म के सपने थे। तभी तो आगे चलकर यशराज चोपड़ा ने अपनी सिनेमा का एक खास मुहावरा कढ़ा। जब ये पता चलता था कि यश चोपड़ा की नई फिल्म आ रही है, लोग अंदाजा लगा लेते थे कि मोहब्बत का कोई रंग लेकर आ रही होगी। यश चोपड़ा ने बिल्कुल शुरुआत में ही ये समझ लिया था कि मोहब्बत सचमुच बड़े काम की चीज है, और ये नाम ही नाम की चीज नहीं बल्कि नाम और दाम की चीज है। तभी तो यश चोपड़ा ने सेल्यूलॉइड पर रूमानी सपनों को उतारा और कामयाबी की नई इबारत रची। लेकिन इसके लिए यश चोपड़ा को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा, और यश चोपड़ा के

बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा शुरुआती दौर में तो एक फिल्म पत्रकार थे, लेकिन धीरे धीरे उनका करियर फिल्म पत्रकारिता से फिल्मों में जा पहुंचा। वो फिल्मों की दुनिया के एक बड़े नाम बन गए। यश चोपड़ा पढ़ाई कर रहे थे और उन्होंने ये सोचा था कि वो इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन बीच में ही उन्हें लग गया सिनेमा का चस्का और वो आ पहुंचे अपने बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा के पास समंदर किनारे बसे शहर मुंबई में।

यश चोपड़ा, जानी मानी कॉमेडियन और निर्माता निर्देशक इंद्रसेन जौहर, जिन्हें आप आईएस जौहर के नाम से जानते हैं, उनके असिस्टेंट रहे। इसके बाद अपने बड़े भाई के सानिध्य में उन्होंने सीखा सिनेमा रचने का गुर। सन 1959 आ गया और यश चोपड़ा को मिली उनकी पहली फिल्म धूल का फूल। इसे यश चोपड़ा के बड़े भाई बीआर चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार और लीला चिटनीस के अभिनय वाली इस फिल्म का बड़ी सूझबूझ से निर्देशन किया यश चोपड़ा ने।

0: बनेगा।
1: जैसे कि आप जानते हैं, बी आर चोपड़ा का प्रोडक्शन हाउस बी आर फिल्म्स सामाजिक मुद्दों पर बनी अपनी फिल्मों के लिए जाना जाता है। जाहिर है कि शुरुआती दौर में बी आर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने जिन फिल्मों का निर्देशन किया, उनमें कोई ना कोई सामाजिक मुद्दा था, कोई ना कोई बात थी जिसका ताल्लुक समाज से था, समाज की धड़कती हुई नसों से था। सन 1961 में बी आर चोपड़ा के प्रोडक्शन में यश चोपड़ा ने डायरेक्शन किया फिल्म धर्मपुत्र का।

साहिर लुधियानवी का लिखा ये गाना अपने आप जाहिर कर देता है कि फिल्म धर्मपुत्र का मुद्दा आखिर क्या था। फिल्म धर्मपुत्र को भारत सरकार ने हिंदी भाषा की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। ये वो दौर था जब बीआर फिल्म्स के बैनर तले यश चोपड़ा एक के बाद एक कामयाब फिल्में बना रहे थे। सन 1965 यानी धर्मपुत्र के रिलीज होने के 4 साल बाद यश चोपड़ा लेकर आए अपनी एक अजीमुश्शान फिल्म, जिसके सितारे थे सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, बलराज साहनी, मदनपुरी, शर्मिला टैगोर, अचला सचदेव और रहमान। ये फिल्म थी वक्त।

दूसरी थी फिल्म इत्तेफाक। आपको बता दें कि फिल्म इत्तेफाक एक रात की कहानी थी। ये एक गुजराती नाटक पर आधारित फिल्म थी जिसके मुख्य सितारे थे राजेश खन्ना। बहुत कम बजट में बनी इस फिल्म ने आलोचकों का दिल जीत लिया। इत्तेफाक की कमाल की बात यह है कि इसकी शूटिंग सिर्फ एक महीने में पूरी हो गई थी। इस फिल्म में ना तो कोई गाना था और ना ही इंटरवल था। हिंदी सिनेमा के लिए ये बिल्कुल नई बात थी। फिल्म को दर्शकों और आलोचकों ने खूब सराहा और इस फिल्म के लिए भी यश चोपड़ा को मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। यहां से यश चोपड़ा के जीवन का एक नया युग शुरू होता है। सन 1971 यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई बीआर चोपड़ा के प्रोडक्शन बीआर फिल्म्स को अलविदा कह दिया और अपना एक नया रास्ता बनाना शुरू किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया जिसका नाम रखा गया यशराज फिल्म्स। यशराज फिल्म्स ने सबसे पहले बनाई फिल्म दाग। साल 1973 में आई राजेश खन्ना के अभिनय वाली ये फिल्म जबरदस्त कामयाब रही और यशराज फिल्म्स की कामयाबी की कहानी यहां से शुरू हुई।

0: खुद का कुर्बान मेरी जान
1: अपनी बेहतरीन स्क्रिप्ट और शानदार डायरेक्शन के लिए फिल्म वक्त को आज भी एक कल्ट फिल्म माना जाता है। आप जितनी बार भी वक्त को देख लें, आपका मन नहीं भरता। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को मिला था सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार। हिंदी सिनेमा में कुछ किरदारों के खो जाने और उसके बाद नाटकीय तरीके से उनके मिलने की बेमिसाल कहानी थी वक्त। सन 1969 में बीआर चोपड़ा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश चोपड़ा ने बनाई दो बेमिसाल फिल्में। एक थी आदमी और इंसान।

0: फिल्म दाग की कामयाबी के बाद यश चोपड़ा ने अपने मजबूत कदमों के साथ फिल्म संसार में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। सन 1975 रजतपट पर एक इतिहास लिखा गया। सलीम जावेद की लिखी, यश चोपड़ा की निर्देशित, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर अभिनीत फिल्म आई दीवार।
1: लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है।
2: जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई।
1: रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं, अब हारूं या जीतूं, लेकिन तुम्हारे पास तो अभी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ।
2: नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
1: तुम्हारे असूल, तुम्हारे आदर्श किस काम के हैं? तुम्हारे असूल, तुम्हारे सारे असूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, दो जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
2: मेरे पास मां है।
0: दीवार बेहद कामयाब रही। अपनी बेमिसाल स्क्रिप्ट और कसे हुए निर्देशन की वजह से फिल्म दीवार आज भी याद की जाती है। यश चोपड़ा की बेमिसाल फिल्मों का सिलसिला यहां रुका नहीं, बल्कि इसके अगले ही साल वो लेकर आए अपनी एक और लाजवाब फिल्म कभी कभी। ये यश चोपड़ा के करियर का सबसे सुनहरा दौर था। कभी कभी के दो साल बाद ही उन्होंने गुलशन राय के लिए एक फिल्म का निर्देशन किया। अमिताभ बच्चन के अभिनय से सजी ये फिल्म थी त्रिशूल। यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के साथ का सिलसिला जारी रहा। सन 1981 में आई फिल्म सिलसिला।
3: ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके

से कुछ कहा है। ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

एक के बाद एक यश चोपड़ा ने लगातार कई कामयाब फिल्में दी। सन 1984 में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान और अनिल कपूर के अभिनय वाली फिल्म आई मशाल। इसके बाद यशराज फिल्म्स की कामयाबी का सफर थोड़ा सा ढीला पड़ गया। यश चोपड़ा की कुछ फिल्में कामयाब नहीं रहीं, जैसे फासले, विजय और परंपरा। सन 1989 में यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म चांदनी। ऐसा लगा जैसे पर्दे पर यश चोपड़ा का जादू अभी कई सालों तक कायम रहने वाला है। फिल्म चांदनी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सन 1991 में एक विवादास्पद विषय पर यश चोपड़ा ने बनाई फिल्म लम्हे। लम्हे को आलोचकों ने खूब सराहा, लेकिन ये फिल्म उतनी कामयाब नहीं रही जितनी यश चोपड़ा ने उम्मीद की थी। हालांकि फिल्म ने 5 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार भी शामिल था। सन 1993 में यश चोपड़ा ने बनाई शाहरुख खान, जूही चावला म्यूजिकल थ्रिलर डर। साल 1995 यशराज फिल्म्स के इतिहास का एक नया पन्ना शुरू हुआ। यश चोपड़ा के सुपुत्र आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म लिखी और उसका निर्देशन किया। शाहरुख खान और काजोल के अभिनय वाली ये फिल्म थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये फिल्म रिलीज हुई 20 अक्टूबर 1995 को और सारी दुनिया में दर्शकों ने इस फिल्म को बहुत प्यार

0: इसके बाद यश चोपड़ा लेकर आए फिल्म दिल तो पागल है। इस फिल्म ने 7 फिल्म फेयर पुरस्कार और 3 नेशनल अवार्ड जीते। सन 1997 में दिल तो पागल है के रिलीज होने के बाद यश चोपड़ा तकरीबन 7-8 बरस तक फिल्मों से दूर रहे। हालांकि यशराज फिल्म्स ने अपनी फिल्मों के प्रोड्यूस करने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन यश चोपड़ा उनका निर्देशन नहीं कर रहे थे। साल 2004 में यश चोपड़ा ने एक बार फिर निर्देशन की बागडोर संभाली और लेकर आए फिल्म वीर जारा। सारी दुनिया में वीर जारा ने तकरीबन 940 मिलियन का कारोबार किया। एक बार फिर तकरीबन 8 बरस तक यश चोपड़ा ने किसी भी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। यशराज फिल्म्स की बागडोर उनके पुत्र आदित्य चोपड़ा संभाल रहे थे। नए निर्देशकों को मौका दिया जा रहा था। प्रोडक्शन हाउस की कामयाबी जोरों पर थी। यश चोपड़ा अपने पुत्र के साथ यशराज फिल्म्स को आगे बढ़ा रहे थे। साल 2012 में अपने 80वें जन्मदिन के मौके पर यश चोपड़ा ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया, जिसका नाम था जब तक है जान, और ये भी कहा कि ये उनके द्वारा निर्देशित की गई आखिरी फिल्म होगी। इसके बाद वो फिल्मों के निर्देशन से संन्यास ले लेंगे। फिल्म जब तक है जान एक बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन इसी साल 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू की चपेट में आकर यश चोपड़ा का निधन हो गया।
1: तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरा सायों का रुख मोड़ना, तेरा पलक के

0: भेजा।
1: और इस तरह फिल्म संसार ने खो दिया अपने एक बेमिसाल निर्माता और निर्देशक को, जिसकी फिल्मों को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, जिसने रजत पट पर रची मोहब्बत की एक नई परिभाषा, जज्बात की एक नई धड़कन। यश चोपड़ा को हमारा नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

छाया गीत में आज हम लेकर आए हैं ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं, लेकिन सुनने के आनंद, कौतूहल और आश्चर्य के लिए इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर हमने जोड़ दिया है। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जिंदगी रूठने और मनाने का सिलसिला है, जिंदगी जानबूझकर रूठने का सिलसिला है और फिर जानबूझकर मान जाने का सिलसिला भी। शायद हमारा मन जानना चाहता है कि किसी को हमारी परवाह है या नहीं। शायद हमारा मन इंतजार करता है कि हम रूठें और कोई आकर हमें मना ले।

कुछ गीतकारों ने जिंदगी के जज्बाती पलों को दे दी है आवाज, वरना हम कैसे कहते अपने मन की बात, हम कैसे करते बयां अपने प्यार को। अल्फाज अपने सही सही मानी बयां नहीं कर पाते, जिंदगी के ये नाजुक लम्हे अनकहे ही रह जाते।

0: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: मेरे महबूब तुझे
2: मेरी मुहब्बत की कसम।
0: हम अभी हाजिर हुए।

हवाएं अचानक खुशगवार लग रही हैं। ये क्यों अचानक आसमान के घूंघट से झांकने लगा है चांद? ये क्या हुआ कि अचानक भला लगने लगा है उदासी वाला कोहरा? ये कौन है जिसने आकर बदला है हमारी जिंदगी को?

छाया गीत में आज ऐसे गाने थे जिनके दो संस्करण हैं। दोनों संस्करणों को हमने किसी मोड़ पर जोड़ दिया था आश्चर्य, कौतूहल और आनंद के लिए। फिल्मों के नाम आपको बता दें।

फिल्म मेरे महबूब, शकील बदायूनी, नौशाद। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है।

0: चलती जाए रात।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविधा, विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: वक्त 1940 की शुरुआत
1: जी हाँ, और उन्होंने मुंबई के चर्च गेट में मिलिट्री सेंसस ऑफिस में नौकरी कर ली।
0: जी हाँ,
1: और मुझे याद है एक मशहूर पत्रिका है रीडर्स डाइजेस्ट,
0: जी जी,
1: इसमें देवानंद साहब ने अपना अनुभव लिखा था कि उस वक्त खतों को उन्हें पढ़ करके तय करना होता है कि इस पत्र को आगे जाने दिया जाए या नहीं।
0: अच्छा।
1: और उसमें जो पारिवारिक संबंधों पर आधारित बातचीत पढ़ने को मिलती थी या जो किस्से उन्हें पढ़ने को मिलते थे, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए और कहानियां उनके मन में जन्म लेने लगी।
0: और देवानंद साहब ने अपने शुरुआती दौर में जैसा कि कहा कि पत्र छांटने का काम करती थी, बाद में वे इप्टा से भी जुड़े और उसके लिए उनकी प्रेरणा रहे उनके बड़े भाई साहब यानी चेतन आनंद जी, जो खुद एक महान निर्माता निर्देशक रहे। और चेतन आनंद साहब के असर से उन पर जाहिर है कि अभिनय से उनका जुड़ाव रहा और सबसे ज्यादा वो प्रभावित रहे अशोक कुमार जी से।
1: जी हाँ, और ये एक किस्सा भी बताया जाता है मनीषा जी कि प्रभात फिल्म स्टूडियो के बाबूराव पै साहब थे, उन्हें मिलने के लिए जब देवानंद साहब आए तो उनके व्यक्तित्व को देखकर इतने प्रभावित हुए, उनका कॉन्फिडेंस, उनका तरीका बात करने का और मुस्कुराने का,
0: क्या बात है,
1: कि उन्होंने तय कर लिया कि इस बंदे को हीरो बनाना ही है।
0: और हम सबके दिलों पर राज करने वाले देव साहब हीरो बन गए। और क्या हुआ, 1946 में एक फिल्म आई हम एक हैं और इसमें उनकी ऑपोजिट थी कमला कोटनिस जी। श्रोताओ, इसी दौरान क्या हुआ कि पुणे में शूटिंग चल रही थी और वहां उनकी दोस्ती हो गई गुरुदत्त साहब से। गुरुदत्त साहब के साथ उन्होंने एक, जिसको कहते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की।
1: आपस में ये तय हुआ
0: कि अगर गुरुदत्त साहब कोई फिल्म बनाएंगे तो देव साहब को मौका मिलेगा और अगर देव साहब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेंगे तो गुरुदत्त जी रहेंगे। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग सोची और ऐसा हुआ भी। श्रोताओ, शुरुआती जो फिल्में थी ना देव साहब की, वो सब विमेन ओरिएंटेड जो फिल्में थी वो रही।
1: नायिका प्रधान ये फिल्में थी विद्या, जीत, शायर, अफसर और सनम।
0: और इन तमाम सारी फिल्मों में उनके साथ लीड रोल में सुरैया जी हुआ करती थी और ये जो जोड़ी थी देव साहब की और सुरैया जी की, ये भी बहुत मशहूर हुई। बहुत सारी बातें हैं, क्या करें और क्या छोड़ें। एक फिल्म हमें याद आती है 1948 यानी 1948 में आई थी फिल्म जिद्दी, जिसमें उनके ऑपोजिट थी कामिनी कौशल जी। और एक गीत है इस फिल्म का, जिद्दी का, जो उन पर फिल्माया गया, जो पहला डुएट लता जी और किशोर जी का भी था
1: जी।
0: वो गीत था ये कौन आया।

0: इसके अलावा इसी फिल्म में किशोर कुमार का भी बहुत मशहूर गीत था, मरने की दुआएं क्यों मांगू।
1: वाह वाह,
0: है ना। तो श्रोताओ, देव साहब की ये जो अभिनय यात्रा है, इसके बारे में हम और क्या बात करें। मुझे लगता है कि हमारे पिटारे को एक बार फिर हम खोलते हैं और अपने श्रोताओं को देव साहब की वो रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं जो हमने बहुत संभाल कर रखी है, जिसमें आप सुनेंगे उनकी आवाज।

कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूं कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए? गिनेंगे जब सांस देने के लिए थोड़ा दम लेना होगा। लेकिन अपनी कंपनी में नवकेतन के झंडे तले मैंने कोई 25 फिल्में बनाई और अभी बहुत सी फिल्में और बनानी है। बहुत से आइडियाज हैं मेरे दिमाग में, न जाने कितनी कामयाबियों का जश्न मनाए बिना और नाकामयाबियों का मातम किए बिना आगे बढ़ता हूं।

0: क्या बात है मनीषा जी, देवानंद साहब की जो रिकॉर्डिंग हम सुन रहे थे, इसके आखिरी हिस्से में जो गीत बजा, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिल्म हम दोनों का गाना,
1: उन्होंने तो जिंदगी का साथ निभाया भी और जिंदगी ने भी

बखूबी उनका साथ निभाया, अपनी शर्तों पर उन्होंने काम किया और अपनी एक खास जगह बनाई। नवकीर्तन इंटरनेशनल फिल्म्स के बैनर तले न जाने कितनी फिल्में और भी आपके जहन में कौंध रही होंगी। ऐसे महान कलाकार को आज हम याद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में। और अब जैन जी, सुनते हैं एक गीत, गुपचुप। और ये जो गीत है ना, इसमें फिर एक बार चांद से कुछ इसरार किया है। क्या इसरार किया, इसको सुने और हमारे श्रोता अंदाजा लगाएं कि हम अगली बात किसकी करने वाले हैं।

0: ये बहुत ही रोमांटिक गीत फिल्म सजा का, आवाज संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की।
1: क्या बात है, हेमंत कुमार साहब की आवाज में गीत सुने तो देव साहब की याद आ जाती है। देव साहब को याद करें, उनकी किसी फिल्म का गीत याद करें तो हेमंत कुमार की याद आ जाती है।
0: और ये एक विचित्र संयोग भी है कि 26 सितंबर देव साहब का जन्मदिन है और हेमंत कुमार मुखोपाध्याय यानी हमारे हेमंत दा का स्मृति दिवस भी। हेमंत दा 26 सितंबर 1989 को हम सबको अलविदा कहकर चले गए, लेकिन हेमंत दा की आवाज आज भी हम सबको प्राणवान किए रहती है।
1: जी मनीषा जी, हेमंत दा के बारे में अपने श्रोताओं को हम बताएं कि वाराणसी में उनका जन्म हुआ था 16 जून 1920 को। फिर ये परिवार कलकत्ता आ गया और वहीं उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई हुई, कॉलेज की पढ़ाई हुई।
0: और बंगाल के एक गायक थे सुभाष मुखोपाध्याय, जो हेमंत दा के बहुत अच्छे दोस्त बचपन के साथ ही। इसके अलावा थे संतोष कुमार घोष, जो कविताएं लिखते थे, और हेमंत कुमार मुखर्जी, जिन्हें हम हेमंत दा कहते हैं, वे शॉर्ट स्टोरीज यानी लघु कहानियां लिखा करते थे। और श्रोताओं, बंगाल में आनंद बाजार पत्रिका की एक मैगजीन है देश, जिसमें उनकी कहानियां छपी भी।
1: मनीषा जी, उनके पिताजी चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और इसके लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में उन्होंने दाखिला तो लिया था, मगर वो पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी।
0: कैसे कर पाते पढ़ाई इंजीनियरिंग की, जब वो बनना चाहते थे एक संगीतकार, एक गायक, बल्कि गायक ज्यादा। और हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय पंकज मलिक का स्वर गूंजा करता था और उनसे लगभग सभी गायक बहुत प्रभावित रहे। और हेमंत दा तो पंकज मलिक जी के गायन से इतने प्रभावित थे कि जब वो गाते थे तो लोग उन्हें छोटो पंकज यानी छोटा पंकज कहके भी बुलाया करते थे।
1: जी, और ये 1935 की बात है, आकाशवाणी के लिए, ऑल इंडिया रेडियो के लिए हेमंत दा ने पहला गाना रिकॉर्ड किया था
0: और ये गीत था आमार गाने ते एले नव रूपे चिरंतुनी। हेमंत दा के मेंटर यानी उनके गुरु थे शैलेश दत्त गुप्त, और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पंकज मलिक जी का असर उन पर बहुत ज्यादा था। श्रोताओ, फणीभूषण बैनर्जी, जो स्वयं फैयाज खान साहब के शिष्य थे, उनसे हेमंत दा ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली। और इनका जो पहला हिंदी रिकॉर्ड ग्रामोफोन कंपनी इंडिया कोलंबिया के नाम से निकला था, इसमें दो बहुत मशहूर गीत हैं। आइए इन दोनों गीतों की झलक सुनते हैं।

कमलदास गुप्ता जैसे महान संगीत निर्देशक और फयाज हाशमी के वो अमर गीत हम कैसे भूल सकते हैं। अब हेमंत दा के गाए कुछ बेहद लोकप्रिय गीत हैं, कुछ गजलें भी हैं जो हमारे श्रोताओं को हम सुनवाना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में तमाम सारे गीत और उन गजलों का समावेश करना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ एक गुलदस्ता जरूर उन यादों का महकता हुआ हम आज आपकी खिदमत में पेश करते हैं।

लता जी के बारे में कहा जाता है कि लता हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक वरदान है। मैं भी मानता हूँ वरदान ही है। मैं जब पहले पहले बॉम्बे आया आनंद मठ के संगीत बनाने के लिए, तो वंदे मातरम संगीत जब ट्यून कर लिया तो मैं बोला फिल्मिस्तान को कि मुझे लता चाहिए। तो लता से हमारा कोई इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था, मैं सीधा पहुंच गया लता के घर में। लता बोला मैं जरूर गाऊंगी, और जरूर गाऊंगी नहीं, रिहर्सल बहुत दिया, और गाना जिस दिन रिकॉर्ड हुआ उस दिन उसका दूसरा रिकॉर्डिंग था। मुझे याद है कि 21 टेक मैंने किया था। तो मैं डर रहा था, लता ने कहा दादा अब डरिए मत, आपका गाना गा के मैं जाऊंगी। हमेशा लता का क्या है, मैंने देखा कि कोई नए म्यूजिक डायरेक्टर जब भी आता है ना, तो उसके लिए वो बहुत कोऑपरेट करती है।

स्वर्गीय गुरुदत्त अपनी फिल्मों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे, लेकिन गुरुदत्त का क्या था कि वो उसके फिल्म के लिए जिसको चाहिए उसी को लेते हैं, कोई दोस्ती वो बिलीव नहीं करते थे। अपने कामों में वो जैसे हम लोग कहते हैं रुथलेस, किसी को लिया भी पसंद नहीं हुआ हमेशा जितना भी दोस्त हो वो कैंसिल करते थे। तो जो पहले पहले मुझे बोला गुरु पिक्चर बनाओगे, मैंने कहा नहीं, तुम हमको लेके फिर तुम निकाल दोगे या मुश्किल हो जाएगा। तो एक बार बोला था कि देखो तुमको हम लेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। तो जब वो साहब बीबी और गुलाम बना रहे थे मुझे बुलाया, मैं गुरु को कहा देखो गुरु गड़बड़ मत करना, तुम एक गाना रिकॉर्ड करोगे फिर बोलोगे अच्छा नहीं लगता है। बोले नहीं, ये फिल्मों के लिए तुम्हें मैंने इसीलिए चुना कि तुम ही ये कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। ये सब्जेक्ट बंगाल का सब्जेक्ट है और तुम इसको सबसे अच्छा म्यूजिक दे सकते हो।

उस जमाने में क्या था, मैं चाहता था कि मैं कलकत्ता वापस जाऊं। मैं कलकत्ता से आया था बॉम्बे में इन 1951 आनंद मठ का म्यूजिक के लिए, और दिल नहीं लगता था इधर। लेकिन एस मुखर्जी ने कहा कि तुम्हें एक फिल्म हिट जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद और दो पिक्चर बनाया, उसके बाद आया नागिन। नागिन में जो सबसे मशहूर चीज है बिन, तो वो जो बिन मैंने सोचा कि कैसे बिन इस्तेमाल करूं, तो वो जो बिन बजाने वाले सपेरे होते हैं ना, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ मिलना बहुत मुश्किल है, और दो तीन नोट बजाते हैं। तो उस जमाने में कोई एक पिक्चर बनी थी नाग पंचमी, मैंने सुना कल्याण जी आनंद जी अभी जो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर है, उस टाइम में हारमोनियम और क्लेवियोलाइन एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। मैं कल्याण जी को बुलाया, तो क्लेवियोलाइन जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक में एक के एक नोट प्रेस करने के बाद दूसरा नोट में वो गैप होता है, और बिन क्या है, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो मैं सोचा क्या करूं, तो मैं हारमोनियम मिक्स किया, हारमोनियम और क्लेवियोलाइन मिला के बिन बनाया। और वो पहले पहले जैसे सभी वो कैं कैं कैं एक ही ट्यून में आते थे, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोला कि बदलो। मैंने कहा देखिए गाना आप 10 दफा कीजिए, लेकिन हमारा फीलिंग है कि ये जो एक ही जो मोनोटोनस ट्यून है ये सबसे अच्छा लगेगा, और भगवान की दुआ से वो बहुत ही काबिल हो गया।

म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी हमारा बहुत पुराना दोस्त है। एक किस्सा मुझे याद आया, बड़े मजे की बात। कल्याण जी नागिन के बाद बहुत प्रोग्राम करते थे, वो बीन लेके और ट्रूप लेके। तो एक वो नागपुर के अंदर कोई गांव में चले गए और उधर 20-30 हजार लोग बैठे हैं और बिन सुनेंगे ये तो शोर मचा। कल्याण जी तो अपना क्लैविलॉइन सजा के बैठे, बजाना शुरू किया, शोर मची। कल्याण जी घबरा गए, बोले बात क्या है? तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में ये पता चला, वो लोग कहते हैं गांव वाले कि बिन तो ऐसा नहीं बजता, बिन तो ऐसा बजता है, मुंह से बजाना जाता है, तो आप हाथ से क्या बजा रहे हैं? तो फिर उसको बोलना पड़ा कि जो आपने नागिन में देखा सुना वो क्या है, वो ऐसे ही बजाया। फिर मान लिया।

1964 में मुझे मौका मिला वेस्ट इंडीज जाने का। उधर से निमंत्रण आया और मैं भी तैयार हो गया। वेस्ट इंडीज में जमैका, त्रिनिदाद, सुरिनाम, ब्रिटिश गायना इत्यादि छोटे छोटे द्वीप होते हैं, और उधर हम लोग जिसको इंडियंस कहते हैं, भारतीय बहुत है, वो जो इंडियंस हैं वो 18th century वैसा कुछ होगा उधर से पहुंचा था आगे, और वो लोग नाम इंडियन हैं लेकिन भाषा नहीं बोल सकता। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जमैका, त्रिनिदाद में अंग्रेजी बोलते हैं, ब्रिटिश गायना में अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन सुरिनाम जो जगह है ना वो डच गायना है, वो बिहारी हिंदी बोलते हैं और डच बोलते हैं। तो हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ, एक तो जो रिसेप्शन और ये और वो, जैसा कि कहां से कितने बड़े आदमी आ गए, मैं तो ताज्जुब हो गया था, अच्छा भी लगा था। और एक छोटी छोटी जो इंसिडेंट मुझे याद है कि कोई आके कहा कि ये लिबास आपने जो पहनते हैं हम लोग देखा ही नहीं, ऐसा इंडियन भारतीय देखा नहीं। और बच्चा और कोई आदमी बहुत से ऐसे आए जो कहते हैं कि आप हमको इजाजत देंगे आपको छू लें। मैं क्यों, हम लोग भारतीय हैं, भारत को कभी देखा नहीं, फिर आपको छूने से हमको लगेगा कि अपना देश का एक आदमी को छूया और भारत को देखा, ऐसा कोई फीलिंग। मुझे तो रोना आ गया था ये सब सुन के। तो मैं पहला आर्टिस्ट जो कोई नहीं जाता था उधर, मैं पहला आर्टिस्ट गया था जिसलिए इतना इज्जत और रिसेप्शन मुझे मिला। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय होने का गौरव मुझे उस दिन मालूम हुआ था। सच्चाई तो ये है कि मुझे भारतीय होने का अभिमान है।

महान संगीतकार और गायक हेमंत कुमार की ये रिकॉर्डिंग विविध भारती के खजाने को समृद्ध करती है और इस रिकॉर्डिंग को हमने आपको आज फिर सुनाया। श्रोताओं, हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब एक ऐसी आवाज का जिक्र जो फिजाओं में गूंज रही है अब तक।

0: मनीषा जी, इस मधुर आवाज को कौन नहीं जानता, कौन नहीं मानता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, 27 सितंबर 2008 को हम सबको अलविदा कहकर चले गए थे पार्श्व गायक महेंद्र कपूर जी। 9 जनवरी 1934 को
0: अमृतसर में महेंद्र कपूर साहब का जन्म हुआ था और ये परिवार बाद में मुंबई आ गया।
1: जी हाँ, और पंडित हुस्नलाल, पंडित जगन्नाथ बुआ,
0: उस्ताद नियाज अहमद खान, उस्ताद अब्दुल रहमान खान और पंडित तुलसीदास शर्मा कपूर जैसे गुरुओं से तालीम पाकर महेंद्र कपूर साहब समृद्ध हुए थे।
1: जी हाँ, और महेंद्र कपूर जी की आवाज में देशभक्ति रचनाओं ने तो धूम मचाई ही मचाई। उनके रोमांटिक गीत भी बहुत बहुत लोकप्रिय हुए और अब तक हमारे दिलों में जगह बनाई हुई है।
0: और जहाँ तक फिल्म संगीत की बात है मनीषा जी, महेंद्र कपूर साहब रफी साहब को अपना गुरु मानते थे।
1: जी हाँ, और बहुत असर उन पर रफी साहब का था भी। एक किस्सा बड़ा दिलचस्प है जो महेंद्र कपूर साहब ने अपने इंटरव्यू में भी जिसका जिक्र किया है। ऑल इंडिया मर्फी सिंगिंग कॉम्पिटिशन, यंग कलाकारों का, युवा कलाकारों का, उस कॉम्पिटिशन में बहुत से लोग अपीयर हुए थे और उसमें से एक थे महेंद्र कपूर जी और एक थी आरती मुखर्जी, जो दोनों फर्स्ट आए थे। आरती जी ने अपने इंटरव्यू में भी विविध भारती को इस बारे में बताया था। तो महेंद्र कपूर जी भी इसी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आए थे और उस जमाने में बहुत सी यादें हैं जो आप खुद रिकॉर्डिंग में हम आपको जो सुनवाने वाले हैं उसमें सुनेंगे, लेकिन एक बात हम आपसे साझा करना चाहते हैं कि हुआ क्या था।
0: उस कंपटीशन को जीतने के बाद इन्हें फिल्म नवरंग के गीत गाने का अवसर मिला
1: और वो गीत था आधा है चंद्रमा रात आधी।
0: इस गीत की रिकॉर्डिंग हो गई। इसी दौरान 1958 की बात है, फिल्म सोहनी महिवाल का गीत चांद छुपा और तारे डूबे नौशाद साहब ने महेंद्र कपूर से गवाया।
1: और सोहनी महिवाल पहले रिलीज हुई है ना?
0: जी हाँ, यानी फिल्म नवरंग का गाना पहले रिकॉर्ड हुआ, लेकिन जो गाना सबसे पहले पर्दे पर सुना श्रोताओं ने वो था फिल्म सोहनी महिवाल का गीत।
1: और वो गीत बहुत मशहूर हुआ, उसमें उनकी रेंज देखते ही बनती है श्रोताओं। ऐसे

0: गायक महेंद्र कपूर जी की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। आज हम उनको याद करते हैं और उस रिकॉर्डिंग के संपादित अंश सुनते हैं जो विविध भारती के साथ उन्होंने अपनी खास मुलाकात में हमसे बांटी थी, हमसे शेयर की थी, उनसे बातचीत की ममता सिंह ने। आइए सुनते हैं उस कार्यक्रम के संपादित अंश।
1: बचपन मेरा म्यूजिकल ही था क्योंकि वो गिफ्ट मुझे

0: शौक मुझे बचपन से ही था। प्रिपेरेटरी में मुझे दाखिल किया फादर ने, तो वहाँ टीचर ने मुझे अभी तक याद है कहा कभी कोई बच्चा गा सकता है या पोइट्री रिसाइट कर सकता है तो कम ऑन द प्लेटफॉर्म। मैं सेंट जेवियर स्कूल का पढ़ा हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो गया। अब मैं बच्चा अबाउट आई थिंक 5 साल का होऊंगा, है जी, प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। तो टीचर ने बच्चों को सबको इशारे किए कि तालियां बजाओ साथ में, सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। उसके बाद हमेशा जब भी फंक्शन होते थे तो मेरे दोस्त सब जो बन गए थे सब यही कहा करते थे, वी वॉन्ट कपूर, वी वॉन्ट कपूर।
1: आगे बढ़ने से पहले कोई बचपन का ही गाना सुन लिया जाए।
0: बचपन का गाना मैं सुना देता हूँ, वो जो मैंने प्रिपेरेटरी में गाया था।

0: अब स्कूल में भी मशहूर हो गया, मैं कागज पे लिखू मोहम्मद रफी मोहम्मद रफी। अच्छा। तो लड़कों को पता चल गया कि ये मोहम्मद रफी का फैन है। तो एक दोस्त है मेरे ने, जैसे स्कूल छूटा मुझे कहता है कपूर तेरा रफी कहाँ रहता है मुझे मालूम है। तो मैं उसको पकड़ लिया, मैंने कहा मुझे बता कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भिंडी बाजार रहते हैं और किताब मंजिल नाम है, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, उनके मकान के सामने मस्जिद है। तो मेरा ड्राइवर मुसलमान था मोहम्मद, तो घर जाने के बजाय मैंने मोहम्मद से कहा, मैं कहा मोहम्मद तू चल उधर भिंडी बाजार। उन्होंने कहा बाबा उधर क्या करना जाकर, उन दिनों रायट्स हुआ करती थी। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, वो भाऊजी मारेंगे मुझे। अरे मैंने कहा नहीं मारेंगे तू चल। मैं ले गया उसे ऊपर, जाने से पहले मैंने कहा बताना नहीं कि मुझे गाने का शौक है, यही बताना कि इसके बड़े भाई को शौक है
1: जी।
0: तो उसने कहा अच्छा। ओ हम लोग दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो बाहर लिखा हुआ था मोहम्मद रफी उर्दू में प्लेबैक सिंगर। तो अंदर किसी के गाने की आवाज आ रही थी, मुंह धो रहे थे, तो हमने बेल बजाई तो रफी साहब बाहर आ गए, बनियान पहनी हुई और तहमत पहनी हुई, हंसते हंसते उन्होंने कहा आइए। तो मोहम्मद मेरे ड्राइवर ने कहा जी ये मेरे सेठ का लड़का है और इसके बड़े भाई को गाने का शौक है, तो वो मिलना चाहता है आपसे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप कहाँ से हैं। मैंने कहा जी मैं पंजाब से हूँ। अरे बोले पंजाब से कहाँ से। मैं कहा जी मैं अमृतसर से हूँ। अरे बोले मैं भी अमृतसर का हूँ, अभी तक पंजाबी है। मैं कहा हाँ जी। कहा ऐसे करो आप लोग बड़े भाई साहब को ले आओ, पिताजी को जरूर लाना संडे के दिन है, तो फिर बात करेंगे। हम लोग आ गए वापस संडे के दिन, मैंने सबको सुनाया घर पे, सब एक्साइटेड हो गए कि मोहम्मद रफी को मिला है ये। मेरे पिताजी भी, उनको भी बड़ा शौक था। तो मैं मेरे बड़े भाई साहब और पिताजी हम लोग गए वहाँ रफी साहब के यहाँ। वहाँ गए और उनके बड़े भाई साहब का नाम था हमीद भाई, तो उन्होंने कहा कि बाऊजी आपने बहुत अच्छा किया आप आ गए, वरना यहाँ कई लड़के आते हैं बच्चे आते हैं अपना घर बार छोड़कर और फिर इल्जाम हम लोगों पर आता है, ये पहली बार आप आए हैं पेरेंट्स आए हैं साथ में, तो रफी जितना जानता है जरूर सिखाएगा इनको मेरे बड़े भाई साहब को
1: जी।
0: तो इतनी देर में उन्होंने कहा रफी वो हारमोनियम निकाल। तो एकदम मैं उठा हारमोनियम निकालने के लिए और रफी साहब ने चटाई बिछाई, तो हमीद भाई बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा ठहरो ठहरो एक मिनट भाऊजी सच्ची बताना गाना किसने सीखना है, ये बड़े ने सीखना है या छोटे ने, किसको शौक है। उन्होंने कहा जी वो छोटे ने सीखना है। तो मैं समझ गया था ये उस्ताद को इसने तकलीफ नहीं दी हारमोनियम उठाने की, ये खुद हारमोनियम उठा के लाया। तो रफी साहब ने फिर मुझे सुना, फिर उन्होंने खुद गाया, फिर वो प्यार बढ़ता गया, फिर रफी साहब ने मुझे गाइड किया। तो उन्होंने कहा कि तू कहाँ तक मेरे गाने गाएगा महेंद्र, तू बेटा क्लासिकल सीख। फिर मैंने क्लासिकल सीखना शुरू कर दिया
1: जी।
0: और वैसे ही खयाम साहब के साथ प्यार था मेरा बचपन से ही, है जी, कराती तो कुदरत है भगवान कराता है
1: जी।

रिहर्सल उन्होंने मुझे कराई 6-7 दिन घर पे अपने। उन्होंने जब मुझे पहली बार बुलाया ना इस गाने के लिए, तो उन्होंने कहा महेंद्र ऐसा है बेटा, फिल्म सोनी महिवाल है, इसके म्यूजिक पूरी ले चुका हूँ मैं, बैकग्राउंड म्यूजिक तक हो गया है, अब इसमें एक मुश्किल आता है। तो मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि इसकी सुर जो है ना वो मैं बदल नहीं सकता इस गाने की, और ये गाना बहुत ऊंचा जाएगा, तुम जा सकोगे? मैंने पैरों को हाथ लगाया, मैंने कहा जी आपके आशीर्वाद होंगे तो चले जाऊंगा पापा जी। सुर क्या है? तो उन्होंने कहा ये सफेद तीन है, इसकी मध्यम में जाना है, मध्यम तक। मैं कहा अच्छा जी कोशिश करूंगा। तो रिहर्सल होती रही, तो आखिरी दिन मैंने अगले दिन रिकॉर्डिंग के लिए जाना था, खत्म हो गई रिहर्सल घर पे, तो नौशाद साहब मुझे कहते हैं 5 मिनट रुको महेंद्र। इन्होंने नमाज पढ़ी, मुझे नहीं लगता ऐसा लायक म्यूजिक डायरेक्टर जो आर्टिस्ट को संभाले होगा कभी। नमाज पढ़ के इन्होंने कहा महेंद्र बेटा रिहर्सल शो हो गई, कल है रिकॉर्डिंग, मैंने एक चीज मांगनी है तुमसे हाथ जोड़कर। और मैं घबरा गया कि क्या मांगना है इन्होंने। मैं पापा जी क्या मांगना है, आप जो कहेंगे, तुम मेरी कल इज्जत रख देना। और मेरे तो जमीन निकल गई पैरों तले कि पापा जी क्या कह रहे हैं।

0: और शाह साहब बहुत खुश हुए, उन्होंने गले लगा लिया, अरे वाह मियां तुम तो बहुत अच्छा गाए, ये यादें हैं।
1: अच्छा महेंद्र कपूर साहब, जब थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था मर्फी मेट्रो प्रतियोगिता की, उसमें जज के रूप में नौशाद साहब भी थे, सी रामचंद्र जी भी थे, सी रामचंद्र के साथ आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, जैसे नौरंग फिल्म का गाना है
0: जी,
1: आधा है चंद्रमा, कोमल कोमल वरण,
0: ये आशा जी के साथ मैंने पहली बार गाया
1: जी
0: था।
1: तो इस गाने से जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं?
0: इसमें ममता जी, ये आधा है चंद्रमा एक्चुअली रिकॉर्ड सबसे पहले मेरे कैरियर का ये हुआ, नौशाद साहब का बाद में हुआ, लेकिन नौशाद साहब का गाना क्योंकि पिक्चर कंप्लीट थी वो पहले रिलीज हो गया। आधा चंद्रमा के वक्त मैं गा रहा था आशा जी के साथ, अब नर्वसनेस वैसे ही कि आशा जी हैं साथ में
1: जी।
0: और उन दिनों ये लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं करते थे राजकमल, ये शूटिंग स्टूडियो में रिकॉर्ड करते थे, तो म्यूजिशियंस भी वहीं बैठते थे, सिंगर्स भी वहीं खड़े रहते थे, तो इन्होंने आधा चंद्रमा माइक्रोफोन पे रिहर्सल करवानी शुरू कर दी
1: जी।
0: कभी वो रिकॉर्डिस्ट मंगेश आए नीचे ऊपर देख के फिर चले जाए, फिर दूसरा आ जाए कोई टेक्नीशियन फिर नीचे ऊपर देख के चले जाए। अब आशा जी की आदत आपको पता है, आशा ने क्या काय वक्त सो तू मंगेश, कहते काय नहीं दीदी काय नहीं, इतनी देर में अन्ना आ गए खुद, उन्हें कहा आशा एक गायन कैंसिल करा आपने कैंसिल कर रहा, क्यों? बोला महेंद्र नर्वस आये ना ही अन्ना, अरे कहते आवाज तिकड़े येतीच नाही, काय गडबड आहे तुमचं रिकॉर्डिंग सिस्टम मध्ये, इकडे तू ऐका आमची रिहर्सल है जी, आप समझ गए ना
1: की
0: इधर आप सुनिए, उन्होंने रिहर्सल सुनी तो उन्होंने बोला अरे ये तो फर्स्ट क्लास गा रहा है यार, हे मंगेश तुम अपने पहले वायरिंग देखो। मंगेश जी फिर आ गए रिकॉर्डिस्ट, वो आए तो मेरी जो प्लग था ना माइक्रोफोन का वो लगा नहीं हुआ था माइक्रोफोन पे, प्लग लगा और गाना रिकॉर्ड हो गया।

0: उम्मीद है श्रोताओं, सुप्रसिद्ध गायक महेंद्र कपूर साहब की ये विशेष रिकॉर्डिंग आपको पसंद आई होगी।
1: और अब विविधा का अंक समेटने का वक्त आ गया है जयंत जी, अगली विविधा के लिए अब हमें तैयारी भी करनी है, तो आप सभी से आज के इस अंक को समाप्त करने की इजाजत चाहती हूं मैं, आपकी दोस्त मनीषा जैन
0: और मैं जयंत पात्रीकर। हम दोनों का आपको नमस्कार।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम याद करेंगे हिंदी सिनेमा के एक महान फिल्म निर्माता निर्देशक, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है, जिन्होंने यशराज फिल्म्स की स्थापना की और बॉलीवुड में रोमांटिक फिल्मों को एक नई दिशा दी। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित यश चोपड़ा, और उनके साथ ही हम याद करेंगे पार्श्व गायक, हिंदी फिल्मों में 5 दशकों से अधिक समय तक काम करने वाले, जिन्हें मुख्य रूप से उनके देशभक्ति गीतों के लिए भी याद किया जाता है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, पद्मश्री, महान गायक महेंद्र कपूर को। तो कार्यक्रम का पहला गीत है लता मंगेशकर और बाबला की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं शिव हरी, फिल्म का नाम है चांदनी।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। महेंद्र कपूर, बलबीर, जोगिंदर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं साहिर, लुधियानवी संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है आदमी और इंसान।

0: अंतराल के बाद यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। लीजिए सुनिए अगला गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमानिगार हैं हसन कमाल, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम है निकाह।
1: अभी अलविदा मत कह।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है शिव हरि का, फिल्म का नाम है डर।

0: एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुने अगला गीत। महेंद्र कपूर की आवाज में, नगमा निगार है हसन कमाल, संगीत है रवि का और फिल्म का नाम है तवाइफ।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना उत्तम सिंह की और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार हैं कतील शिफाई, संगीत है उत्तम जगदीश का और फिल्म का नाम है पेंटर बाबू।

0: संगीत के साधक
1: ओ रे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
4: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में। गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का और फिल्म का नाम है वीर जारा।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि इस प्रोग्राम में हम एक टेक्स्ट यानी इबारत पोस्ट करते हैं और उनमें से आपको शब्द ढूंढने होते हैं और गाने चुनने होते हैं और साथ में आपकी अपनी टिप्पणियां साझा करनी होती हैं। और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणी आ रही है, तो एक बार इबारत हम दोहरा देते हैं जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं पहुंचे हैं। कभी कभी दिल में ख्याल आता है, क्या जरा सा झूम ले, जरा सा घूम ले। कहाँ घूमे? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। नहीं नहीं, वहाँ चले जहाँ मिलता है सुकून। कहाँ? जहाँ तुम कहो। ये कहाँ आ गए हम और फिर तुम कहो। चलो सजना जहाँ तक घटा चले। फिर ऐसी वादियों में चलेंगे जहाँ पहाड़ बादलों से बातें करते हो और कोई धीमी सी नदी हमारे साथ साथ चलती हो। कहाँ कहीं रुकेंगे? हाँ, जहाँ नदी का पानी इतना साफ हो कि उसमें आसमान भी अपना चेहरा देखे। और अगर शाम हो गई तो चांदनी को साथ लेकर किसी पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ेंगे। इतना घूमना किसके नाम? पर्यटन के नाम? या ये सफर तो बस दिल के नाम है। और अगर रास्ते में कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो मुस्कुराकर कहेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली उस दुनिया की तलाश में, जहाँ सफर भी कहानी हो और मंजिल भी। फिल्मी हो गए हो आज तो। क्या करें, यश जी की फिल्मों ने ही तो सिखाया है कि पहाड़ों के बीच भी मोहब्बत की एक पूरी कहानी बस सकती है। तो फिर अगला पड़ाव जहाँ तुम हो वहीं से सफर शुरू। तो चलो तुम, हम और ये वादियां कुदरत के खूबसूरत नजारों के बीच। लेकिन वादा करो नदी के पानी को साफ सुथरा रखेंगे। एक कागज की कश्ती तिराएंगे और खुद भी एक कश्ती में बैठ चलेंगे नदी के उस पार, जहां ऊंचे पर्वत के दायरे होंगे। दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि आज के शब्द कौन से हैं और गाने कौन से हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप गाने सुझाते रहिए और वो गाने हम अपनी प्लेलिस्ट में डालते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। वैसे आज की जो इबारत है उसमें एक एक शब्द पर एक एक गाना है, तो ढूंढिए वो गाने भी, जरा गाने भी तो लिख डालिए। आपने पर्यटन के बारे में लिखा है, घूमने के बारे में, वादियों के बारे में, ये तो लिखते रहना है, लेकिन गानों के बारे में भी लिखना है। अब जरा बूझिए कि पहला वाला गाना कौन सा हो सकता है। अब आपने तो बूझ ही लिया है, बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भी डाला है कि आज यश चोपड़ा का जन्मदिन है, तो लगता है आज की इबारत में यश जी को याद किया जाएगा। और एक शायद आप भूल रहे हैं, आज तो महेंद्र कपूर की याद का दिन भी है और आज पर्यटन दिवस है। नदी के दिन को याद किया जा रहा है, तो भाई बहुत सारी बातें हैं। तो चलिए इन मिली जुली बातों के साथ हम सफर पर चलते हैं, सुरीला सफर। तो बताइए कौन सा वाला गाना होगा और इस गाने में कौन है कलाकार। हीरो हीरोइन का नाम बूझिए फटाफट। फिल्म कभी कभी, गाना कौन सा, पहचान लिया कि नहीं? लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें। गीतकार कौन बताइए।

कभी कभी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल और राखी और शशि कपूर हीरो हीरोइन। श्रोताओं ने यह जवाब भी दिया है सही, और बहुत सारे श्रोताओं ने गानों के बोल लिखे हैं। ये पर्वतों के दायरे, ये कहां आ गए हम, नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी का सफर, तुम साथ हो तो हंसी, चलो सजना जहां तक घटा चले, वादा करो नहीं छोड़ेंगे तेरा साथ, अच्छा तो हम चलते हैं, तुम भी चलो हम भी चले, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, ये पर्वतों के दायरे, और अनगिनत गानों के बोल लिख रहे हैं श्रोता। हम इनमें से जिनकी जिन मतलब जिन गानों की संख्या ज्यादा होगी वो गाना हम आपको सुनवाते चलेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा जी बी आर चोपड़ा के छोटे भाई थे, उन्होंने अपने भाई बी आर के साथ फिल्म निर्देशक का काम शुरू किया। तो जरा अब हमें बताइए कि यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सवाल दोहरा देते हैं, ये एक पहली

है आपको पूछनी है। यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? सन हमने बता दिया है, आपको फिल्म का नाम पूछना है। एक श्रोता लिख रहे हैं तेरे नैना तलाश करें, और एक श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व पर्यटन दिवस है, तो आज की इबारत के जरिए आपने बेहद सरल सफर की झांकी कर दी। कहते हैं जब सफर का साथी हमारे मनोभावों को समझता है तब जगह चाहे कोई भी हो सफर सुहाना ही हो जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक नाम को भव्यता, दिलकश नजारों और निश्चल प्रेम का पर्याय माना जाता है तो वो है यश चोपड़ा। उन्हें हिन्दी सिनेमा का किंग ऑफ रोमांस यूं ही नहीं कहा जाता, और खूबसूरत वादियां, खूबसूरत कुदरत के नजारे उनकी फिल्मों में देखने को मिलते हैं, और आज पर्यटन दिवस है और नदी दिवस भी है, तो ये सारे नजारे हम उनकी फिल्मों की आंखों से देखते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति हमें जीवन भर देती रहती है, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, सिर्फ उसे निहारे नहीं बल्कि उसका संरक्षण करें, यही प्रकृति के प्रति हमारा प्रेम और कृतज्ञता होगी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि यश चोपड़ा की फिल्मों ने भले ही प्रकृति की गोद में रोमांस को प्राथमिकता दी हो, आत्मा के उत्थान के लिए, मानसिक शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए ये प्रकृति हमें सदैव प्रेरित करती है। जहां प्रकृति मुस्कुराती है, खिलखिलाती है, वहां देवता निवास करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत अच्छा है गीत जो शुरुआत की आपने, और एक ने लिखा है कि क्लासिक शुरुआत, और एक श्रोता ने लिखा जरा सा झूम लूं मैं, अच्छा तो हम चलते हैं, ये कहाँ आ गए हम, चलो सजना, बड़ी लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और भी बहुत सारे श्रोता लिखते जा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही हैं हमें, नैसर्गिक सुंदरता से भरे गीत सुनने को बुला रही है विविध भारती हमें, बोरीवली मुंबई सागर किनारे दिल ये पुकारे, विविध भारती तू जो नहीं तो हमारा कोई नहीं, विश्व पर्यटन दिवस पर रेडियो सखी के संग सभी मित्रों का बोरीवली मुंबई समंदर किनारे सुरीला सफर में स्वागत है। स्वागत आप सभी का पूरे देश के श्रोताओं के लिए, और जो देश से बाहर विदेश में सुन रहे हैं ये प्रोग्राम उनका भी स्वागत। अब हम पहली दोहरा देते हैं, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? और हाँ, चूंकि पर्यटन दिवस की बातें भी चल रही तो आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और हमें ये भी बताइए कि अब से लेकर प्रोग्राम के आखिर तक इन बातों के जवाब आप दे सकते हैं कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है जो आपने देखी हो। अब जरा बूझिए कि यही गाना आपने सोचा था या कोई और, हीरो हीरोइन का नाम भी बूझिएगा और गीतकार का नाम, संगीतकार का नाम भी बूझिएगा। किसके नाम है ये गाना, ये तो पता चल ही गया होगा आपको।

वक्त फिल्म का गाना था, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें थी, गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे रवि। और हमने जो सवाल आपसे पूछा था, यश चोपड़ा को 1990 में किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, चांदनी। और अभी जो सवाल था, वक्त फिल्म में कौन हीरो हीरोइन है, गीतकार संगीतकार का नाम भी सही बताया सुनील दत्त साधना। हमने इधर पूछा उधर श्रोताओं के जवाब आने शुरू हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2 सप्ताह पहले ही मैं और रेखा कश्मीर की वादियों से भोपाल से लौटे हैं, आज के गाने उन्हीं वादियों में बिताए पलों को याद करा देंगे, डल झील में नौका विहार, पहलगाम की वादियों में झरझर झरने बहते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे प्रकृति ने अपना सारा संगीत और सौंदर्य यही लाकर एकत्रित कर दिया हो। तो भाई आप सभी जो सुन रहे हैं, अगर कहीं घूमने गए हैं किसी पर्यटन स्थल पर, तो वहां की यादें साझा कीजिए और वहां के अनुभव हमें बताइए। और अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका अब आगे मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा की फिल्मों को अक्सर भारतीय सिनेमा का ट्रेवलॉग कहा जाता है। उन्होंने अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों को केवल प्रेम कहानियां ही नहीं दिखाई बल्कि उन्हें देश विदेश की खूबसूरत वादियों की एक जादुई सैर भी कराई। संक्षेप में कहें तो यश चोपड़ा की फिल्में सिनेमा हॉल की एक टिकट में देश विदेश घूमने का एक पासपोर्ट थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के भारतीयों को सिनेमा के पर्दे के जरिए दुनिया देखने की आंखें दी और पर्यटन को बढ़ावा देने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। तो बताइए अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे, उस जगह का नाम बूझिए। और चलिए फिर वादियों में चलते हैं और आपको बूझना है फिल्म का नाम, जरा जल्दी बताइएगा फिल्म का नाम। पिछले दिनों आप कौन सी वादियों की ओर गए थे, किन पहाड़ों की सैर की थी, ये भी आप बता सकते हैं।

0: फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
1: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सुरीला सफर, और आज सुरीला सफर में यश चोपड़ा के जन्मदिन को हम याद कर रहे हैं, महेंद्र कपूर की याद को नमन कर रहे हैं, और साथ में विश्व पर्यटन दिवस और विश्व नदी दिवस हम मना रहे हैं। तो आप अपनी बातें अपनी यादें साझा करते चलिए। हमने आपसे पूछा था अगर आपको किसी एक पर्यटन स्थल में जाने का मौका मिले तो आप कहां जाना चाहेंगे। अभी तक बहुत कम जवाब श्रोताओं की ओर से आए हैं, और अपनी यादें आप ताजा करिए। और अगर आप सफर पे गए हैं और किसी पहाड़ पर किसी पहाड़ी पर वादियों की सैर की है आपने, तो सबसे यादगार सफर कौन सा रहा है ये भी बता सकते हैं, उस जगह का नाम आप बता सकते हैं, ताकि जब श्रोताओं को मौका मिले तो उन जगहों पर वो जा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि यश चोपड़ा को भारतीय फिल्मों में विदेशी नजारों, विशेषकर बर्फीली वादियों और खूबसूरत झीलों को दिखाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपनी कई फिल्मों की शूटिंग स्विट्जरलैंड पर्यटन में की। फिल्म चांदनी का प्रभाव, उन्होंने फिल्म चांदनी के बड़े हिस्से की शूटिंग स्विट्जरलैंड में की, जिसके बाद वहां भारतीय पर्यटकों और फिल्म निर्माताओं का जाना काफी बढ़ गया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत फिल्मों में सुंदर लव स्टोरी और खूबसूरत जगहों का दर्शन कराने वाले यश चोपड़ा जी के गीतों पर लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है, जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। थीम पर्यटन के भविष्य को आकार देने में आधुनिक तकनीक और नवाचार की भूमिका पर जोर देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब भी ऐसा मौका होता है, एक साथ छुट्टियां हो तो साथ में और भी छुट्टियां लेकर धर्मपत्नी, मैं और मेरे बच्चे ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां नदियों और पहाड़ों के दर्शन हो, साथ में तीर्थ स्थलों के भी। तो बताइए कि आपके शहर या गांव के इर्द गिर्द कौन सी नदी है, और नदी को साफ सुथरा रखने के लिए क्या आप कोई निजी स्तर पर कोई मुहिम चलाते हैं, या आप भी कूड़ा कचरा करके चले आते हैं अपनी पहचान छोड़कर। ये बहुत जरूरी है कि जब आप नदी के किनारे जाते हैं तो नदी को एक जीवंत इंसान के रूप में देखें, और ये देखें कि उन पर कचरा फेंकना कितना अन्यायपूर्ण होगा। तो आप अपने आप उन्हें प्रणाम करेंगे और वहां जो कचरा होगा उसे बीन कर डस्टबिन में डालकर आएंगे। चलिए अब चलते हैं वहीं जहां पर इबारत में वादा किया गया था, और किसी ने कहा था चलो सजना जहां तक घटा चले। तो कहां तक घटा है और कहां तक आपकी यादें हैं, यादों को दोहराइए और जहन में बसाइए। विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कीजिए, बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार का नाम पूछा था हमने, मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं ने त्वरित जवाब दिया, यहां तक कि हमने सवाल पूरा किया उधर जवाब आने शुरू हो गए। एक श्रोता ने लिखा है कि हरी भरी मैदान का सीना चीर कर बहती हुई एक बहुत छोटी सी जलधारा है जिसे महज एक छलांग लगाकर ही पार किया जा सकता है, लेकिन वो कोई नहर नहीं बल्कि एक नदी है क्योंकि नदी की सभी विशेषताएं उसमें हैं। मैं कभी गई तो नहीं, जाने की बहुत इच्छा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने पर्यटन के बारे में पूछा है तो मैं समंदर के तट पर मुंबई और मेरे प्रिय रेडियो स्टेशन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन और अपनी सभी उद्घोषिका बहने यूनुस खान साहब से मिलने की तमन्ना रखता हूं। कब पूरी होती है मुझे नहीं पता। भाई आप अपनी तमन्ना जब चाहे पूरी कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे अक्सर लोगों का पहाड़ों पर चढ़ने का जुनून बहुत उत्साहित करता है, खासकर कुछ लोग एवरेस्ट की चोटियों को छूकर लौटते हैं तो इस जर्नी पर उनकी आत्मकथा से संबंधित किताब हमारे मन को छू जाती है। तो अब जरा बताइए कि आपने कोई पहाड़ों और इस तरह के संस्मरण वाली किताब पढ़े हैं तो जरा लिख डालिए कौन सी किताब, हो सकता है हमारे श्रोता भी उसे पढ़ना चाहें। एक श्रोता ने लिखा है कि घूमना तो मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति का सुहावना सफर हो और झरने की अटकेलियां करते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियां, जहां से ठंडी ठंडी हवा, ऐसा संगीत मानो जमीन आसमां सब झूम रहे हो, क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है वाह मेरा चयनित गीत बज रहा है। भाई आप अकेले का नहीं, बहुत सारे श्रोताओं के गीत आज इस प्लेलिस्ट में शामिल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया भर की यात्रा करने के बाद भी जब कुछ जगहें दिल पर ऐसी छाप छोड़ जाती हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, मेरे यात्रा संस्मरण में कई देश और शहर शामिल हैं, लेकिन दुबई का समंदर का किनारा, न्यू जर्सी की एक जगह और भारत के अंतिम छोर पर स्थित कन्याकुमारी की जगह, इन तीनों स्थानों

के प्राकृतिक सौंदर्य और आकर्षण ने मुझे सबसे ज्यादा सम्मोहित किया है। और हमने आपसे पूछा था कि आपकी सबसे यादगार यात्रा कौन सी रही, उस यात्रा के बारे में बताइए, उस जगह के बारे में बताइए, और नदी के किनारे बिताया हुआ कोई यादगार लम्हा, कोई यादगार पल हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। और अब एक और पहेली आपसे पूछ रहे हैं, बताइए हमें कि 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। हमने सन बता दिया है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो अब बताइए कौन सा गाना आपने चुना था, यही जो हम पूछने बजाने जा रहे हैं या कोई और गाना। और हाँ, जरा बताइएगा इसमें कौन है हीरो, कौन है हीरोइन। ये गाना महेंद्र कपूर की याद के नाम। गीतकार और संगीतकार का नाम भी आप बूझ सकते हैं। पहली पहली हीरो हीरोइन का नाम, कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, ये पता है तो ये भी बता सकते हैं आप। बहुत सारे सवाल हैं, इनमें से कोई एक सवाल आप लिखिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजें, साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, फिल्म गुमराह और बहुत जल्द जवाब आ रहे हैं श्रोताओं की ओर से, सुनील दत्त और माला सिन्हा। एक श्रोता ने लिखा है कि सपने और सुंदरता का जब भी मेल होता है तब बनता है सिनेमा। अंधेरे सिनेमा घर में चांदी के पर्दे पर फिल्मी सितारे हर एक तरह के कौतुक से सम्मोहन रचते हैं। इन किरदारों की डोर निर्देशक के हाथ में होती है और जब निर्देशक यश चोपड़ा जैसा हो तब एक फिल्म बनती है जो दर्शकों को कभी ट्यूलिप से भरे फूलों की घाटी में ले जाती है तो कभी पहाड़ पर। क्या बात है भाई, बड़े ललित शब्दों का इस्तेमाल आपने किया है। वे जबरदस्त तरीके से कहानी में मसाला लपेटते हैं। भावना के झंझावात में डूबते मन को किस्म किस्म के कलाकारी से यश चोपड़ा दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींच कर ले ही आते हैं। यश चोपड़ा की फिल्मों में चांदनी का होना किसी कविता में संगीत के मिलने जैसा है। चांदनी वो नाम है जिनके बिना यश चोपड़ा की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती है। भाई बात यहां यश चोपड़ा की फिल्मों की है लेकिन सुनने की बात है, दिल की दास्तां है, चांदनी है, गाना वैसा ही है। तो चलिए पहले ये गाना सुन लेते हैं और आप जरा बूझिए फिल्म का नाम। और हाँ, आपसे हमने कुछ सवाल पूछे थे, उसके जवाब आपने लिखे या नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख डालिए क्योंकि आपके जो जवाब आ रहे हैं आप तक हम पहुंचाते जा रहे हैं। अब हमें जरा ये भी बताइए कि आपके शहर या गांव के आसपास कौन सी जगह है जहां लोग घूमने आते हैं, या कौन सी नदी है जहां पर लोग आते हैं और सुकून पाते हैं। कुछ शहर में कुछ ऐसे पार्क भी बने हैं जहां कुदरत की छांव मिल जाती है, तो वो भी आप बता सकते हैं ताकि आपके शहर कभी कोई श्रोता जाए तो उन जगहों पर घूम सके, उन जगहों को देख सके आपकी निगाहों से। चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको पूछना है फिल्म का नाम और आवाज किसकी है।

हमने आपसे पहली पूछी थी 1994 में यश चोपड़ा को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया था। सभी श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया फिल्म डर, लेकिन कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया है। कोई बात नहीं, आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ये हमें बड़ी खुशी दे रही है। इस बात के लिए हमें बहुत खुशी है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हमारे कुछ दूर पर स्थित काले देव की नदी है जिसमें लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, तो हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नदियों के किनारे डिस्पोजल पानी की बोतल अक्सर पड़ी रहती है जो जीव जंतुओं को और प्राकृतिक वातावरण को दूषित करती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें जीवन में बहुत ज्यादा घूमने के मौके तो नहीं मिले, फिर भी जितना घूमा उसमें कुल्लू मनाली की बर्फीली वादियां लुभाती हैं और गुजरात के जंगल में शेर का इंतजार करते हुए जंगल का नजारा और जो सन्नाटा नीरव शांति और निर्मोही वातावरण की अनुभूति की है उसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्यारी सी छोटी सी बात, प्रकृति बोलकर हमें शुक्रिया नहीं मांगती, बस इतना चाहती है कि हम उसकी खामोशी को समझें। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव के पास कंडराला जंगल है, वहां लोग आते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, अगर मौका मिला तो मैं बार बार राजस्थान की रेतीली वादियों में जाना चाहूंगा, वहां सुनहरी रेत, डूबता सूरज और लोकगीतों की धुन दिल को छू जाती है। भाई क्या बात है, थार के टीलों पर खड़े होकर सारी चिंताएं मिट जाती हैं और वहां पर फोटोग्राफी का शौक भी तो होगा जिसे आप अपने कैमरे में कैद करेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चाहूंगा एक बार परिवार के साथ मॉरिशस जाऊं। एक श्रोता ने लिखा है कि पिछले साल उत्तराखंड की सैर की थी सब परिवार हमने, शिमला से मनाली आते समय देवदार और चिनार के पेड़ों पर जमी बर्फ, सड़कों पर जमी बर्फ को देखना अद्भुत, ऐसा सौंदर्य जो आंखों से होकर सीधे दिल में उतर जाता है। क्या बात है भाई, आपने तो चित्र खींच दिया हमारी आंखों के सामने, वो देवदार और चिनार के कतार नजर आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी इबारत में जब कुदरत का रंग शामिल हो तो क्या कहने, मन बाग भाग हो जाता है। आपकी इबारत प्रेरणा बन जाती है क्योंकि मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो फिर बताइए, पहाड़ों पर या वादियों पर आप जाते हैं तो अकेले जाना पसंद करते हैं या परिवार के साथ, मतलब सोलो ट्रिप पर जाते हैं या फिर पूरे परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाना पसंद करते हैं? और हाँ, ये भी बताइएगा कि जब आप पहाड़ पर जाते हैं, वहां पहाड़ी पर बैठे खामोशी से देखते हैं वहां की खूबसूरती को, नदी के किनारे बैठते हैं, तो आप उन पहाड़ों से, नदी से अगर कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो कौन सा सवाल पूछेंगे? अब जरा आप बताएंगे क्या है फिल्म का नाम और किसकी है आवाज?

हाँ तो भाई बताइए, दिल की दास्तां आपने कभी सुनी है? खुद के दिल की दास्तां सुनी है क्या? बताइएगा जरा हमें भी। और अगर आपके दिल की दास्तां किसी ने सुनी और आपने सुनाई तो क्या था अनुभव? ये बातें आप बताते रहिए और साथ में हमारे सवालों के जवाब, पहेलियों के जवाब भी देते चलिए। हमने आपसे पूछा था पहाड़ या नदी से कोई एक सवाल पूछना हो आपको तो आप कौन सा सवाल पूछेंगे? यूं तो आप विविध भारती के फेसबुक पेज पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, तो कोई सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे? और हमने आपसे पूछा था कि आपके जहन में सबसे खूबसूरत वादी घाटी कौन सी है और कौन सी जगह आपकी यादों में बसी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी जन्मस्थली हरदा, जो मध्य प्रदेश का एक उन्नत जिला है, यहाँ पावन माँ नर्मदा का मीठा जल प्रवाहित होता है। मेरे जिले की जलवायु बहुत अनुकूल है खेती के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि यदि पहाड़, नदियां, तालाब स्वच्छ होंगे तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, नहीं तो आने वाला कल बस पर्यटन नाम के ही लिए रह जाएगा। एक श्रोता की टिप्पणी है, पर्यटन का असली आनंद तभी है जब हम किसी जगह को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस करें, पहाड़ों की शांति, नदियों की कलकल, हरियाली वगैरह वगैरह। एक श्रोता ने लिखा है कि पर्यटन हमें घर से दूर ले जाता है लेकिन प्रकृति हमें अपने और करीब ले जाती है। कहीं पहाड़ों की खामोशी, कहीं नदी की कलकल, कहीं पेड़ों की ठंडी छांव। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर हमें आज पर्यटन की उस दुनिया में ले जा रहा है जहां सफर केवल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि प्रकृति को महसूस करना है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का गद्यांश प्रकृति और देशाटन से जुड़ा है, सुरम्य वादियां, पर्वतों की सैर, इच्छा हर एक दिल में रहती है। हरी हरी वादियों में जब कभी आसमां में आवारा से घूम रहे बादलों को थोड़ा आराम और सुकून की चाहत जागती है तो वो किसी भी वादी में पहुंच जाते हैं। वादियां बादलों का दूसरा घर होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, सुरीला सफर हम तय करेंगे, नदी की सुरमई धारा, झरनों के कलकल, पहाड़ों की ऊंचाई और हरे भरे पेड़ों की शीतल छाया के साथ। तो चलिए एक बार फिर सैर करते हैं वादियों में। फिल्म का नाम बूझिए फटाफट और किसकी है आवाज, गीतकार का नाम भी बता सकते हैं। फिलहाल फिल्म का नाम बताइए। और नदी से कोई सवाल पूछना हो तो सवाल भी लिखिए।

आरंभ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश और आरती मुखर्जी की आवाजों में। सभी श्रोताओं ने फिल्म का नाम सही बताया और जल्द बताया। एक श्रोता ने लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत सामने से देखने की इच्छा है। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं कोलकाता में रहती हूं, यहां के मंदिर कालीघाट दक्षिणेश्वर देखने योग्य है। यहां की दुर्गा पूजा बहुत फेमस है और गंगा नदी है। अब जरा एक सवाल का जवाब दीजिए, यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं? क्या उस फिल्म का कोई संवाद याद है? अगर याद है तो वक्त बहुत कम है, इतने कम वक्त में देखते हैं कौन श्रोता लिख पाते हैं कुछ संवाद। और हाँ, यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म का नाम तो आपको पता होगा, उसका नाम भी बताइए। और अब सुनते हैं ये गाना।

एक श्रोता ने संवाद लिखा है, चिनार सेठ जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते, किस फिल्म का डायलॉग है जरा ये बताइए। और कोई संवाद आपको याद हो तो आप लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर, जो सुरक्षित रहता है फेसबुक पेज पर, हम पढ़ सकते हैं बाद में भी।

भाई ये गाना आप सुन रहे थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस फिल्म का गाना था, आनंद बख्शी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी। और हमने आप सभी से पूछा था यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म कौन सी है, सभी श्रोताओं ने बताया जब तक है जान, और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि अभी तो और गाने होने चाहिए थे। भाई अगर वश में होता तो हम वक्त को कैद कर लेते और सुरीला सफर का यह सफर चलता रहता, लेकिन क्या करें, जो कुछ बची हुई टिप्पणी है वो हम पढ़ देते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे कभी कभी फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं देवी जी आप पूजा हैं तो हम आपके पुजारी हैं। और हमने आपसे पूछा था यश चोपड़ा की कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, क्या उन फिल्मों के संवाद याद है, कुछ श्रोताओं ने संवाद लिखे, अगर आपको याद है तो आप भी लिख सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कोई गाना सुनवा सके या आपसे और कोई सवाल पूछ सके, तो बस आज का सफर बस इतना ही। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण गायक,
2: अरे ओरे,
1: संगीत के साधक,
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है,

0: भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ। जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, नेवासा महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलघट, माया चंद्रकला देवीदास पोपलघट और शिवांश, सेक्टर 8 टाउनशिप भिलाई से श्रीमती प्रमीला श्याम कुंवर, अनुश्री अशोक दीपक और आसमा श्याम कुंवर, पहारा जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण प्रीति और छाया बंछोर, गांधीनगर रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जयतेग बीरक और मीका बीरक, शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामकर, अमर तामकर।

दिलीप वर्मा, राजू तामकर, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण कनोजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और मम्मी पापा। नागपुर महाराष्ट्र से विनायक भामरे, गणेश भामरे और पार्थ भामरे। गांव बनवाड़ी पटियाला पंजाब से सुखविंदर सिंह, रूपेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, दर्शन सिंह, भोला सिंह, नीरज और जश्न। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से भाई भरतलाल सिन्हा, लक्ष्य कुमार सिन्हा और बिटिया लक्की सिन्हा। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी। आनंद जी, फिल्म का नाम है हिमालय की गोद में।

कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। कोथा गुड्डम ते तेलंगाना से याकूब दशना, नूरजहां रहीम, शरीफ खान, रूबीना, अलीमा और रहीमुन्निसा। जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा। राजाराम नगर देवास से शांति महाजन, राकेश महाजन, मधु महाजन, मुकेश महाजन, राजेश अग्रवाल, आनंद अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल। गाजियाबाद यूपी से सुषमा, श्वेता, अभिषेक और एमडी शर्मा। तंगोरी मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। बदलापुर जिला ठाणे महाराष्ट्र से सिद्धांत गवाहनकर, प्रणीता, अर्जुन, टुक टुक, प्रिंस और एकांश गवाहनकर। मेहरे नगर अमरखेड़ विदर्भ से डॉक्टर वैशाली शैलेश गवाहनकर, श्वेता सुजीत गवाहनकर, ध्वनि और सरिता अभिजीत गवाहनकर। सावंगी महाराष्ट्र से गजानन जिरवार, प्रकाश निजीभा और मिथिलेश जिरवार। विनायक नगर निजामाबाद तेलंगाना से ज्योति श्रीहरि कूचन, राजकमल सिनिग्दा, विनोद कुमार, ग्रीष्मा रामनंदन और समस्त कूचन परिवार।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
2: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। सनावत से राजकुमार बोडाना, यश कुमार बोडाना, मास्टर अशोक वर्मा और शेख मूसा भाईजान, मोरटका बाफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, कोनिका और मानस पटेल। कटोरा तालाब रायपुर छत्तीसगढ़ से मदन लाल देवांगन, प्रभा भूपेश कुमार, कुसुम और तुषार देवांगन, भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर से स्वाति चौधरी, मालती देविका चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, ललिता नारायण खुरचेतुम, सोनू और मोनू, दतरंगी से विश्राम मनोज कुमार और दशरथ राम, गुलाबरा छिंदवाड़ा एमपी से भाई राजू निखाड़े, अनीता निखाड़े, ऋषभ, यामिनी और सुरेश निखाड़े। आप सभी की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और आनंद बख्शी की आवाजों में ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है मोम की गुड़िया।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और फिल्म का नाम है चरस। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त अमरावती महाराष्ट्र से प्रोफेसर विवेक देशमुख, प्रोफेसर दीपक देशमुख, दिविज देशमुख और डॉक्टर अनिरुद्ध देशमुख। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, मुजतबा खान, आफिया खान, आयशा खान, हादिया खान और शोएब खान। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट, पूजा भट्ट, जैस्मिन और प्रयागराज भट्ट। रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कलीचा। तो साथियों, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये नगमा।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आप सभी ने पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश और ज्ञान भूषण शर्मा, अर्रिया जोकीदार से सौम्या नाजनीन, रुकैया खातून, जुबैदा खातून, आबेदा खातून, सरफराज आलम और समस्त परिवार, मिडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, मीनाक्षी तिवारी, हरिपाल कौर और सुनीता शर्मा, अयोध्या नगर रालेगांव शहर से विनोद कुमार डवड़े, प्रतीक शुसारी और प्रथमेश कुमार डवड़े और साथ में है विनोद मंडाड़े, कस्बा बराडा जिला अंबाला से रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, गुरकीरत मंत और गुरशब्द सिंह राहुल की पसंद पर सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भिसे और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कांबले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।

0: विविध भारती।
1: आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक मुक्ति एक चिड़िया की। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव।
2: क्यों रे प्यारी, फिर तूने झाड़ू चलानी शुरू कर दी? तू जब भी देर से आती है फर्श पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है।
3: काम तो सब हो गया है बाबूजी।
4: एक बात कहूँ बाबूजी?
2: अब क्या है
4: रमेश बाबू, आप लोगन के बहुत हैला कान के हैं। अरे आप लोग तो अपन लड़का समझ के पाल पोस के बड़ा के हैं, और वो न जाने कौन है जन्म के दुश्मनी निकालें, सारा गहना गुड़िया चुरा के भाग गए।
2: तू मेरे घाव क्यों कुरेद रही है, चुप क्यों नहीं रहती?
4: अरे अपन खून होता तो कभी ऐसा करते?
2: अपना ही खून तो नहीं था रे, तेरे तो चार चार बच्चे हैं, तुझे संतान सुख की क्या कमी है?
4: कोई कमी नहीं, आपन तो अपने होते बहू जी। आपने जितना पैसा रमेश बाबू के पीछे खराब किया, अरे उतने में तो नीमा बीवी मजे में नहीं पड़ जाती, बेचारी नौकरी करत करत बुढ़ाए रही है।
2: देख अगर काम पूरा हो गया हो तो जा, बकबक ना कर।
4: मुझे इतना टेम कहाँ जो गप्पे मारूं, चलती हूँ। राम राम।

0: अपना खून। इस कुमार प्यारी ने सही ही बात तो कही है। मैं नाकामी की राख से अपने को ढकती रही। डॉक्टरों ने कहा मैं मां नहीं बन सकती, और मातृत्व की भूख मिटाने के लिए नितांत स्वार्थी हूं मैंने ये जुआ खेल डाला। उसकी फोली सूरत पर रीझ उसे अनाथालय से उठा लाई। क्या पता था कि उस बच्चे में ऐसे संस्कार जागेंगे। नीमा बीबी अभी 35 की ही तो हुई है, शादी हो जाए तो वो मां बन सकती हैं। उनके बच्चे में मेरा ना सही, मेरे पति के कुल का खून तो होगा ही।
1: ललिता, इस समय तुम जरूर कोई अच्छी बात सोच रही हो। नीमा की कोई चिट्ठी आई क्या?
0: नहीं, पर उम्मीद है छुट्टियों में वो खुद आएंगी, और जब रमेश की हरकत का उन्हें पता चलेगा, समझ में नहीं आता कैसे आंख मिला पाऊंगी मैं।
1: इसमें तुम्हारा क्या कसूर? भाग्य का खेल ही है और क्या। तुमने बच्चे की जगह कौवा पाला था जो पंख निकलते ही उड़ गया।
0: उसी के चक्कर में नीमा बीबी के लिए हम लोग लापरवाह हो गए।
1: नीमा बीबी की शादी के लिए एक बार कोशिश करो ना।
0: मैं उनसे खुलकर कुछ भी तो नहीं कह सकती। उनकी शादी ना हो पाने का पाप मेरे ही सिर पर है। उम्र इतनी हो गई है कि कायदे का लड़का, और शादी करने के लायक अब मेरे पास पैसे भी तो नहीं है।
1: पैसे की बात छोड़ो, कमा धमा रही कुछ ना कुछ तो जोड़ ही रखे होंगे। कमाती धमाती लड़की को कोई लक्ष्मी ना माने तो अभागा।
0: नहीं मानते, अब तो लोग बहू को घास फूस और नोटों को लक्ष्मी मानते हैं।
1: अरे सभी के साथ ये बात लागू नहीं होती। देखो दौड़ भाग कर जिम्मेदारी पूरी कर ही डालो।
0: बैठिए कमला बहन, चाय बनाकर लाती हूँ।
1: अरे बस बस, दरवाजे मत तोड़िए।
2: जरा दरवाजा तो खोलिए। नमस्ते।
1: नमस्ते।
2: मैं तो न जाने कब से भटक रहा हूँ। चंचल बाबू का घर ही नहीं मिल रहा है। किसी ने कहा ये है तो चला आया।
1: ये बिहारी बाबू का घर है।
2: अच्छी मुसीबत है, बतलाइए। चंचल बाबू ने अपनी बेटी की शादी का इश्तहार छपाया था तो घर ही नहीं मिल रहा। शगुन साइट ठीक नहीं दिखती।
1: आपको किसकी शादी करनी है?
2: अपनी?
1: हा?
2: क्या मेरी शादी नहीं हो सकती? अभी एक भी बाल नहीं पका है मेरा। देखिए देखिए।
1: ठीक है ठीक है।
2: रोज बादाम का शरबत पीता हूँ।
1: अरे तब तो बैठिए, हमें आपकी ही तलाश थी। अरे ललिता देख जल्दी आ, घर में शगुन घुस आया है।
2: शगुन नहीं, बांकेलाल। बांकेलाल, मेरा नाम बांकेलाल है जी। लगता है आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं आज तक कुंवारा कैसे रह गया।
0: अरे वाह, अभी तक आप कुंवारे हैं? तब तो बात बन गई।
2: कैसी बात, मैं समझा नहीं।
1: हमने शादी के लिए विज्ञापन दिया है। हमारी लड़की बड़ी सुशील है, नौकरी करती है, किसी पर भार नहीं बनेगी।
2: वैसे मेरे पास भी किसी चीज की कमी नहीं है जी। दवा की दुकान खोली है मैंने, बिल्कुल चकाचक है। अभी घर जाऊंगा तो 1 किलो से माँ के लिए ले जाऊंगा, पाव भर काजू खरीद लूंगा।
1: क्या आपकी माँ बीमार है?
2: नहीं जी, इतना खाने पर भी बीमारी क्या पार फटक सकती है। हम लोग फल और मेवा ही खाते। जरा मेरा चेहरा देखिए, देखिए देखिए, आईने की तरह दमक रहा है ना।
0: हाँ सो तो है। बैठिए ना, नाश्ता तो करेंगे ना।
2: जी नहीं जी नहीं, मैं अपनी खीर खुद लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, जरा खाकर बताइए कितना मेवा है इसमें। लीजिए तो।
1: अरे वाह, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है। खाते पीते घर के हैं बांके बाबू।
2: बिल्कुल ठीक कहती हैं आप। अरे जो सुख खाने पीने में है वो और किसी चीज में है क्या भला? पर माँ कहती है शादी कर ले।
0: अच्छा ये बताइए, शादी में हमें खर्च वर्च क्या?

0: करना पड़ेगा।
1: अरे कुछ नहीं, पीली धोती पहनाकर लड़की को विदा कर दीजिए, सोने से तो मैं ला दूंगा। हाँ, बारात के खातिरदारी जरा अच्छी हो जाए बस। बात ये है कि मेरे सभी दोस्त मुर्गा तोड़ हैं।
0: अरे उसकी चिंता न करिए, उतना तो हो ही जाएगा, हम तैयार हैं। लड़की वगैरह दिखाने के लिए कब मिले आपकी माँ से?
1: अभी कोई जरूरत नहीं, शादी तो मुझे करनी है, नौकरी करती लड़की भी क्या देखने की चीज है।
0: ललिता एक फोटो तो दे दो।
1: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, अरे मेरी तरफ से बात पक्की, लीजिए खीर खाइए इस खुशी में।
0: तो हमारी तरफ से भी बात पक्की, लीजिए आप भी हलवा खाइए, खीर से ज्यादा गर्म है।
2: समय के गर्म पत्थर पर बैठकर बहुत देर तक भावुक नहीं रहा जा सकता।
3: इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है, समय का सही उपयोग करना चाहिए।
2: कैसा समय? मैं कुछ समझी नहीं।
3: कभी आपने अपना खून टेस्ट कराया?
2: मुझे कोई बीमारी नहीं कि खून टेस्ट कराऊं।
3: यही सही समय है।
2: कैसा समय?
3: उम्र के दौर का समय। इस आखिरी दौर के बाद शायद आपका खून ही बदल जाए।
2: 2 साल पहले मुझे मियादी बुखार हुआ था, तब खून टेस्ट कराया था, शायद बी ग्रुप है।
3: ज्यादातर स्त्रियों के खून का यही ग्रुप होता है, पर उसके शरीर में सृजन करने वाला खून भी होता है। सच सच बताइए, जब कभी ये खून आपके अंदर दौड़ता है, आपको बेचैनी नहीं होती?
2: कभी होती थी, पर अब नहीं होती, क्योंकि मुझे कभी किसी ने पसंद नहीं किया।
3: कोई पसंद करे या ना करे, प्रकृति तो अपने ढंग से कार्य करेगी ही, कौन तो दौड़ेगा ही। ऐसा भी तो हुआ होगा कि आपने किसी को पसंद किया हो।
4: प्यारी चाय ले जा।
3: आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आपको किस तरह के पुरुष पसंद हैं?
2: देखिए, इस तरह की बात सुनकर मेरे शरीर में आग लग जाती है।
3: आखिर क्यों?
2: इसीलिए कि मुझे पुरुषों से घृणा है। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए आज तक मुझे किसी पुरुष ने पसंद नहीं किया। कई हादसों के बाद मेरा खून सफेद हो चुका है, आपको पता नहीं, मेरी रीढ़ में दर्द रहने लगा है।
4: अरे शादी हो जाए, सब ठीक हो जाए।
2: प्यारी तू चुप रह। कमला जी, इसीलिए तो मैं कभी यहाँ आती नहीं, जो मैं भूल चुकी हूँ उसको लोग क्यों उकसाते हैं।
3: अच्छा लीजिए चाय पीजिए। शादी करके अभी आप माँ बन सकती हैं।
2: बच्चे के लिए खून चाहिए, मैं एनीमिक हूँ।
3: ये तो आम बात है, कौन स्त्री आज एनीमिक नहीं है? इसके लिए क्या लड़कियां शादी नहीं करती, उनके बच्चे नहीं होते? आपके लिए अब भी समय है।
2: मैं बदसूरत हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कैसे बताऊँ आपको? इसलिए यही बेहतर है कि मैं शादी ना करूं।
3: शादी तो आपकी माँ की भी हुई थी, वो भी तो खूबसूरत नहीं थी।
2: शायद अब वो समय नहीं है।
3: सवाल समय का नहीं, खून की मांग का है, और आपके खून की वो मांग है।
2: मेरा दहेज जोड़ने की कोशिश में पिताजी टूटी साइकिल ढकेलते ढकेलते खुद टूट गए, पर कभी पूरा दहेज नहीं जोड़ पाए। पहला असर तो मेरे खून पर इस बात का पड़ा कि पिताजी मेरी वजह से दिल के रोगी हो गए थे। मरते समय उनके पास मेरी शादी के लिए केवल 15,000 रुपए थे।
3: इतने रुपए थे, भैया भी हाथ लगा देते तो शादी हो जाती। आखिर तुमसे उनका खून का रिश्ता था?
2: खून का रिश्ता उनसे था, भाभी से तो नहीं।
3: और माँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया?
2: माँ ने भी एक दिन चुपके से हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। फिर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं बाहर चली गई, बस मैंने शादी का इरादा ही छोड़ दिया, या कहिए इन हादसों ने मेरा खून ठंडा कर दिया।
3: देखिए, अगर औरत समय से टकराने से डर जाती है तो कमजोर पड़ जाती है। अब आप इन बातों को दिमाग से

0: निकाल दें। मांग में सिंदूर और गोद में बच्चा, सृष्टि के विकास के लिए औरत की इस भावना का जवाब नहीं है।
1: मगर कौन समझता है इस बात को? तीन जगह शगुन चढ़ा और तीनों जगह शादी से इनकार हो गया।
2: दीदी जी, बुरा तो लगता ही है, क्या कहा जाए ऐसे लोगन को।
0: मगर औरत के दिल से जिस दिन ये भावना खत्म हो जाएगी, ये दुनिया उजाड़ हो जाएगी।
1: जाने अनजाने लोग प्राकृतिक भावनाओं को छिन्न भिन्न करते जा रहे हैं, सारे रिश्ते अस्वाभाविक होते जा रहे हैं। जिन्हें मुझसे सहानुभूति होनी चाहिए, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं।
0: देखो, इस तरह मन छोटा ना करो। लड़का ठीक है, शादी कर लो। सुनो, नई पौध के लिए चाहिए मिट्टी, वो तुम्हारी कोख में है। नई पौध के लिए चाहिए पानी, वो तुम्हारे खून में है। नई पौध के लिए चाहिए हवा, वो तुम्हारी सांसों में है।
1: पूरी जिंदगी जीने के लिए स्वीकार हूं फूलों की हथकड़ी। हाँ, मुझे पंखुड़ियों में मिलती है नवजात शिशु की गंध। हाँ, क्यों नहीं, मैं पहनूंगी फूलों की हथकड़ी। मेरी सुंदरता मेरे खून में है, चेहरे में नहीं। मेरे पास अभी भी समय है, मैं शादी कर सकती हूँ। ना पहनने के लिए मेरी बंद नाक छिदवा दो, मैं शादी कर सकती हूँ।
0: बहुत खुशी हुई कि आप समय से चेत गई।
1: जी, मैंने कुछ कहा क्या?
0: हाँ, आपने समय को पहचाना है, खून की मांग को स्वीकारा है।
2: दीवी जी, हाँ, जी बात पर ले आऊं गर्मा गर्म चाय।
0: अरे चाय ही नहीं, मिठाई अभी जा।

0: मेरी जिससे शादी हुई है उसे मैं जानती भी नहीं। अपरिचित से एकाएक प्रेम करने लग जाना कुछ अटपटा सा लगता है। मांग में सिंदूर भरने के बाद मुझे आसमान का तारा दिखाया गया था।
1: अब किसी के लिए प्रेम प्रेम नहीं है, है तो सिर्फ अपनी बेचारगी जो चेहरों पर छद्म प्यार बनकर उभरती है।
0: चुप रहो, ये मेरी सुहाग रात है, सुहाग की प्रथम रात्रि। देखती नहीं मेरे चारों ओर पुष्प ही पुष्प कर रहे हैं।
1: हाँ इस समय तो तू कथा परी है, सात समुद्र पार करके यहाँ आई है, अभी तारों को पाने के लिए तू ऊपर उड़ेगी। मगर आज तो आसमान में तारे मटमैले नजर आ रहे हैं।
0: क्या हुआ, सुन रही है बाहर शोर? कैसा शोर है ये?
1: शराब के नशे में चूर यही है तेरा पति, तेरे सपनों का राजकुमार।
0: यही है मेरे सपनों का राजकुमार? घर में आई नववधू का भी उसका ख्याल नहीं?
1: वो ये सोचकर निश्चिंत है कि अब तो एक बुलबुल पिंजड़े में कैद ही कर ली है, जो दाना पानी अपने साथ ले आई है।
0: ऐसी बातें मत करो, अब तो मेरे जीवन की डोर से बन चुकी है।
1: यही तो नारी जीवन की त्रासदी है, अजीब रिवाज रस्में हैं। पति कैसा भी हो, इस डोर में बंधने के बाद उसे जीवन भर ढोना ही पड़ेगा।
0: तुझे इतना साज श्रृंगार करने के बाद भी चादर से ढककर विदा किया गया है, जानती है क्यों?
1: क्यों
0: नहीं, ताकि दुल्हन को किसी की नजर न लगे।
1: ना, ऐसा नहीं है, ताकि वो वर्जनाओं के बीच रहे, पति को छोड़कर किसी और को प्रभावित ना कर सके।
0: कौन हो तुम, क्यों इस तरह बोल रही हो? तुम चाहे जो भी कहो, अब उससे मेरी शादी हो चुकी है।
1: हाँ हो चुकी है, बहुत बहुत बधाई। पर दूल्हा तुझे क्या देगा, सोने की अंगूठी या जिंदगी की गारंटी?
0: मैं अभी से क्या बता दूं, पर मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी ये कह सकती हूँ।
1: अगर वो तुम्हें धोखा दे दे तो?
0: ऐसा मत कहो, मैं बदसूरत हूँ, मुझे आज तक किसी ने प्यार नहीं किया।
1: मगर तुम सरलता से उस पर प्यार मत उड़ेलने लगना,
0: रहस्यमयी बन जाना। इस उम्र में भी नटखट लड़की की

0: तरह चतुर। देख, तेरा दूल्हा इधर ही आ रहा है, मैं चलती हूँ।
1: चली गई।
2: कौन जो आ गया? यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ, पास आओ। ये सिर क्यों ढक रखता है?
0: नहीं, मैं सिर नहीं खोलूंगी, मैं सुंदर नहीं हूँ।
2: कौन कहता है तुम सुंदर नहीं हो?
0: सभी कहते हैं, पर

0: कैसे मैं? नहीं, मुझे शराब की गंध अच्छी नहीं लगती।
1: नहीं होगी तो मैं ही आ जाता हूँ।
0: ना ना, मैं बीच में ये तकिया रख देती हूँ ताकि आप अपनी सीमा जान ले और मैं अपनी
1: सीमा। अच्छा, अब क्या करूँ?
0: आप मुझसे पूछिए, रानी तुम क्या कर रही हो?
1: रानी तुम क्या कर रही हो?
0: गुलाब जल से नहाया है और केश सुखा रही हूँ।
1: वो बच्चे अब क्या कर रही हो?
0: अब बेणी में फूल गूंथ रही हूँ।
1: ये फूल कहाँ से मिला तुम्हें? मैं तो खाली हाथ आया ना।
0: ये फूल बसंत ने दिया।
1: मेरे कमरे में बसंत? अरे वाह,
0: देखो, फूल बालों में बांधकर मैं रति की तरह सुंदर हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर? मगर तुमने तो अभी तक अपना घूंघट भी नहीं खोला।
0: क्षण क्षण मेरी सुंदरता बढ़ रही है, मैं रति हो गई हूँ।
1: रति की तरह सुंदर, रति की तरह सुंदर, मैं तो रह रहा हूँ।
0: मगर दूर रहिए, सीमा मत पार कीजिए।
1: अभी सीमा की कोई बात नहीं रहा, मैं हर किस रुक नहीं सकता।
0: जो करना है कर लूं, अपने खून के लिए, मातृत्व के लिए, जीवन की गति के लिए। हो सकता है ऐसा स्वाभाविक सच फिर नहीं बोले जिंदगी।
1: तुम क्या सोचने लगे? देखो, अब मैं तुमसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता।
0: चिड़िया उड़ने से पहले आसमान से नहीं पूछती कि मैं तुम्हारे आंगन में उड़ूं या ना उड़ूं?
1: अरे वाह, तुम्हारी आवाज इतनी मीठी है, तो बहुत ही सुंदर हो गए। सचमुच तुम तो बहुत सुंदर हो।

0: अच्छा तुम्हें नौकरी पर कब तक पहुंचना है?
1: मैं तो सोच रही थी ऐसी हालत में छुट्टियां बढ़ाकर और आराम करूं।
0: मगर तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास और छुट्टियां हैं ही नहीं।
1: नहीं है तो क्या हुआ, बिना वेतन की छुट्टियां तो मिली जाएंगी, वही ले लूंगी। क्या आप मेरे खाने पीने का भार भी नहीं उठा सकते?
0: क्यों नहीं, मगर जब तुम कमाती हो तो फिर चिंता की क्या बात। देखो मेरी दवा की दुकान टूट गई है, इसलिए छुट्टियां लेने पर खर्च की तंगी हो जाएगी। सोचता हूँ तुम्हारे साथ मैं भी चला चलूँ वहाँ।
1: आप वहाँ क्या करेंगे?
0: अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? और जबकि मेरे पास काम नहीं है तो तुम्हारी ही कमाई से तो चलेगा, इसमें हर्ज ही क्या है?
1: इनको मैं नहीं, मेरी नौकरी प्रिय है। देखिए ये जो खर्च आ रहा है ये कैसे होगा, मेरी तो पिछली तनख्वाह भी नहीं मिली।
2: सब होगा, तुम लोग चिंता मत करो, रखवाओ ये सामान वगैरह।
1: भाभी ये सब क्या है?
2: फल फूल मेवा मिठाई साड़ी सूट यही सब, आज गोद भराई होनी है ना। मगर यहाँ तो कोई इंतजामी दिखाई नहीं पड़ता।
1: भाभी मेरी तबीयत खराब थी, सोचा इस उत्सव को टाल दूं।
2: टालने की क्या जरूरत?
0: अरे भाभी के रहते तुम क्यों परेशान हो? अरे उत्सव का खर्च भी भाभी दे देंगी, तुम चिंता क्यों करती हो?
2: उत्सव का ही नहीं, मैं बच्चे का भी पूरा खर्च दूंगी, इसमें चिंता की क्या बात है?
0: कोई बात नहीं है भाभी, कोई बात नहीं है।
2: अरे मैं तो यहाँ तक कहती हूँ, बच्चा मेरे ही घर में पले बढ़े बड़ा हो, अपना ही खून है, जो कुछ भी हमारे पास है उसी का तो होगा।
0: हाँ हाँ और क्या, भाभी बच्चा आपका ही है।
1: ये कौन होते हैं मेरे

0: बच्चे को किसी को देने वाले?
1: बांके बाबू, आप अपने रिश्तेदारों को बुलवाइए, ये उत्सव धूमधाम से होगा। और ये देखिए अपना सूट, पसंद आया? और ये साड़ी, अरे नीमा बीबी कहाँ गई?
2: आंगन में गई हैं, लगता है कुछ तबीयत गड़बड़ है।
1: अरे ऐसे में तबीयत तो गड़बड़ाती ही है। नीमा बीबी,
2: नीमा बीबी,
0: मेरे पति को मैं नहीं मेरी कमाई चाहिए, भाभी को मैं नहीं मेरा बच्चा चाहिए। मैं कितों के बीच फंसी एक छोटी सी लाचार चिड़िया हूं, अपने को बचाऊं तो कैसे? कौन है मेरा यहां, किससे कहूं? मगर मेरे पेट में जो पल रहा है वही तो मेरा खून है, वही मेरा होगा। मैं अपने खून पर किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, किसी दूसरे का हक नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं, नहीं होने दूंगी।
2: अरे नीमा बीबी तो बदहवास पड़ी हैं।
1: बीबी जी आप इतनी कमजोर हैं, बताया भी नहीं, डॉक्टर को दिखा देती।
0: आप बैठिए, मैं डॉक्टर के यहाँ हो ही आती हूँ।
1: चलो मैं भी चलती हूँ ना।
0: नहीं नहीं भाभी, आप चिंता ना करिए, उत्सव की तैयारी कीजिए, पड़ोसियों को बुलाकर गाना बजाना कराइए, लड्डू बटवाइए, बंधनवार सजवाइए। मैं डॉक्टर के यहाँ गई और आई।
3: मैं चलूं तुम्हारे साथ?
0: क्यों परेशान होंगे आप भी, मैं होकर आती हूँ ना अभी। तब तक आप भाभी के साथ जश्न का प्रबंध करें, डॉक्टर के पास सिर्फ मुझे जाना भर है।

0: डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गई? कथा परी लगता है आसमान के तारे नहीं तोड़ सकी। हाँ, नहीं तोड़ सकी। डॉक्टर के यहाँ क्यों नहीं गई? कोई जरूरत नहीं समझी। मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा ठीक है। फिर गलत क्या है? क्यों बतलाऊं? तुम हो कौन? नहीं पहचाना? मैं तो सुहाग रात के दिन भी तुम्हारे साथ थी, मगर सामने तो नहीं आई। कौन हो तुम? मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज ही क्यों सुनाई पड़ती है? अब भी नहीं पहचाना? मैं तो तुम्हारा ही प्रतिरूप हूँ। फिर तुम ही बोलो, मैं क्या करूं? वहां तो लोग जश्न मनाने की तैयारी कर रहे होंगे। जश्न? तुम्हारा बच्चा छीनने का जश्न? तुम अपना बच्चा नहीं देना चाहती ना?
1: नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं।
0: तब अपने बैग से कागज निकालो और लिखो।
1: क्या लिखना होगा? किसे लिखना होगा?
0: उन्हें ही, जिन्हें तुम छोड़ आई हो। लिखो, मुझे अफसोस है कि मैं तुम लोगों के उत्सव में शामिल नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर का कहना है मेरे पेट में कोई जीव नहीं, ट्यूमर पनप रहा है। इसका खर्च कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपनी नौकरी पर वापस जा रही हूँ।
2: झूठ क्यों लिखवा रही हो? ये सवाल मत करो। बचने का यही, सिर्फ यही एक रास्ता है। इस संसार में तुम्हें कोई नहीं चाहता। जाओ, जल्दी करो, गाड़ी पर बैठ जाओ। इस पत्र का क्या होगा?
0: वो
2: सामने लेटर बॉक्स में डाल दो।
1: फिर क्या होगा?
0: कितनों के बीच फंसी मासूम चिड़िया की मुक्ति।
1: मुक्ति?
0: हाँ, मुक्ति श्वास के लिए, मुक्ति आकाश के लिए, अपने ही खून से सिंचित पोषित उस परिंदे के लिए जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी कोख में सांस ले रहा है, जो तुम्हारी

0: मुक्ति एक चिड़िया की, यह नाटक अभी आपने सुना। लेखक अजीत पुष्कल, निर्देशक मधुर श्रीवास्तव। ये हमारे आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
2: एक विलक्षण गायक,
3: अरे ओरे हे,
2: संगीत के साधक,
3: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
2: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
3: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
2: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
4: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
2: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।